सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज बुधवार है। शक संबत 1948 ज्येष्ठ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 जून महीने की 10 तारीख। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर

0: तारन ता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से हॉर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं खेती किसानी कार्यक्रम में जानकारी। खरीफ दलहन फसलों की खेती के बारे में बता रही हैं अनीता तिर्की।
1: खरीफ मौसम में दलहनी फसलों में उड़द, मूंग, अरहर और कुल्थी की खेती की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दलहनी फसल प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है, अतः इसे खाने में अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। जून के आखिरी सप्ताह से पूरे जुलाई तक अरहर, उड़द, मूंग लगा सकते हैं, लेकिन कुल्थी यदि आप लगाना चाहते हैं तो उसकी बुआई का उचित समय अगस्त है। किसान भाई खेत तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे खेत की गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हल चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना दें। अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी हुई खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह बिखेर दें। इनकी खेती ऊपर की जमीन में करना चाहिए, जहां पानी का उचित जल निकास की जो है वो व्यवस्था है। अम्लीय मिट्टी में चूना का प्रयोग 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर नाली में डालकर उपयोग करने से उपज में वृद्धि होती है। अरहर की फसल के लिए 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। अगर आप संकर अरहर ले रहे हैं तो 8 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर काफी होगा। उड़द और मूंग में बीज दर 30 किलो प्रति हेक्टेयर और कुल्थी में 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर का प्रयोग करना उचित रहता है। इन फसलों के उन्नतशील प्रभेदों में अगर हम अरहर की बात करें तो बिरसा अरहर एक है। इसकी बुआई की जो दूरी है कतार से कतार 70 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर है। तैयार होने का समय बिरसा अरहर एक जो है करीब 185 दिनों में पककर तैयार हो जाते हैं और इसकी औसत उपज है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सबसे बड़ी बात है इसके जो विशेष गुण है वह है कि यह उकठा और बांझपन दोनों अवरोधी है और फली छेदक के प्रति सहनशील है। इसीलिए किसान भाइयों को अगर अरहर की खेती करनी है तो वो बिरसा अरहर एक को लगा सकते हैं। इसी तरह बहार भी एक अच्छी किस्म है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके तैयार होने का समय करीब 225 से 30 दिन है। औसत उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह बांझपन रोग से अवरोधी है और फली छेदक के प्रति सहनशील है। इसी तरह ICPH 2671 अगर आप इस किस्म को लगाते हैं तो कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तैयार होने का समय करीब 200 दिन है और इसकी जो उपज क्षमता है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।

0: यह भी उकठा और बांझपन रोग से अवरोधी है। इसी तरह अरहर की एक बढ़िया किस्म है उपास 120। यह करीब 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसमें भी कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। उपज 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और सबसे बड़ी बात है कि यह मिश्रित खेती के लिए अच्छी मानी गई है। इसी तरह उड़द की T9 पंत U19 लगा सकते हैं। मूंग की उन्नत किस्मों में खरीफ K-851, पूसा विशाल, गर्मा SML 668, इसी तरह कुल्थी के लिए बिरसा कुल्थी 1 लगा सकते हैं।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे खरीफ दलहन की खेती के बारे में, बता रही थी अनीता तिर्की। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का।

0: जीवन में उपदेशों की अहम भूमिका होती है, उन्हें लेकर तमाम बहस भी जारी हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि उपदेश सुनने वाले पहले जैसे नहीं रहे, या सुनाने वालों की वाणी में वो ओज नहीं है कि सुनने वालों का मन मस्तिष्क बदल जाए। ग्रंथों में शब्द ब्रह्म कहा गया है, तो वक्ता श्रोता के बीच शब्द ब्रह्म आखिर क्यों निष्प्रभावी है? किसी धार्मिक आयोजन में वक्ता तो एक होता है, जबकि श्रोता अनेक होते हैं। अगर अच्छे उपदेशों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ा, तो मतलब यही निकलता है कि सभी श्रोता अपात्र थे। फिर धार्मिक आयोजन का क्या औचित्य? उपदेशक तो इसी उद्देश्य से निकला है कि वो समाज बदल देगा। यदि वो नहीं बदल पाया, तो उसे भी सार्वजनिक रूप से ये कहना चाहिए था कि वो अपने अभियान में असफल हो गया। लेकिन कोई भी उपदेशक ऐसा कहने को तैयार नहीं। दरअसल सदुपदेशों के बावजूद सदाचार का लगातार चीरहरण बढ़ रहा है, तो सबसे पहले अंगुली उपदेशक पर ही उठेगी। जमाने को दोष देते समय उपदेशक को अपना भी दोष देखना चाहिए। भारी भरकम कार्यक्रमों एवं जलसों का आयोजन प्रसिद्धि पाने के लिए होता जा रहा है। कोई उपदेशक अपना चरण स्पर्श करने वालों से ये नहीं पूछता कि चरण स्पर्श करने वाला अपने माता पिता की सेवा करता है या नहीं। यदि नहीं, तो वो उपदेश सुनने के योग्य नहीं, और वो उपदेश स्थल से तत्काल उठकर चला जाए। हो ये रहा है कि उपदेशों के नाम पर किसी व्यापारी की तरह अपने उपदेश उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई उपदेशक ये कहते नहीं देखा जाता कि उसे पैसा देने के बजाय किसी गरीब के इलाज, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा, किसी वस्त्रहीन को तन ढकने के लिए पैसा खर्च किया जाए। कहते भी हैं तो वो सीधे नहीं, बल्कि उपदेशक के माध्यम से ही किया जाए। अब यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है, धन संग्रह शुरू हो जाता है। अनेक ऐसे लोग हैं जो प्रचार तंत्र और अन्य माध्यमों की मदद से वे सारे काम शुरू करने लगते हैं, जो व्यक्ति को ही कमजोर नहीं करते, बल्कि उसकी वाणी को भी कमजोर बनाते हैं। फिर ऐसे लोगों की बात का समाज पर असर पड़ेगा, ये संभव ही नहीं। उपदेश देने वालों को चाहिए कि वो पहले अपना आचरण सुधारें, फिर किसी को सुधारने के लिए सोचें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं आराधना कार्यक्रम में देशभक्ति गीत। गीत और संगीत कैप्टन राम सिंह का है और संवेद स्वर में इसे आप सुनेंगे।

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे और आराधना में आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ भक्ति रचनाएं। भगवान की भक्ति के लिए हम हर दिन तत्पर होते हैं। सुबह होते ही हमारे मन में भगवान की आराधना शुरू हो जाती है और हम सकारात्मक विचार अपने अंदर भरने लगते हैं, ताकि हमारे जीवन में सही कर्म करने की जो भावना है वो आगे बढ़ते रहे। अक्सर हम यही समझते हैं कि ये काम मैंने किया है, और यही सहज आसक्ति हमारे जीवन में दुख का कारण होती है। इसलिए हमें हर समय ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाला सब कुछ कर रहा है और हमें बस उनके दिए हुए दिशा निर्देश को मानना है और सकारात्मक कदम बढ़ाना है।

भगवान के द्वारा दिया हुआ शांति सभी को समान अधिकार से मिला है, लेकिन शांति धन से नहीं मिलती और नहीं तो ये अमीरों की मिल्कियत बन जाती। जीवन में कोई कितना भी धनवान क्यों न हो, वो शांति को खरीद नहीं सकता और दुखों को बेच नहीं सकता। धन सुख के साधनों को उपलब्ध तो करा देता है, लेकिन शांति के साधनों को नहीं मिला पाता। शांति का संबंध धन से नहीं, हमारे धर्मयुक्त जीवन से है। इसलिए हमेशा भगवान की आराधना जरूर करें।

हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अभाव है और संतोष के अभाव में जीवन के सारे खुशियों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। हमारा जीवन जितना संतोषी होगा हमारी कठिनाइयाँ उतनी ही कम होगी। इसलिए संतुष्ट रहने की आदत डालिए तो भविष्य की चिंता कम हो जाएगी।

भगवान के दिए हुए शरीर से हमें अपने सारे नित्य कर्म जीवन के करने चाहिए, लेकिन ये शरीर सिर्फ इतना ही करने के लिए नहीं मिला। साथ ही भगवत स्मरण करते हुए परिवार का भगवत स्वरूप मानकर उनका पोषण करें, साथ ही प्रभु का नाम जप करते हुए हम अगर अपने कर्म करते हैं तो भगवान को अपने सारे कर्म भी समर्पित कर देते हैं, ताकि हमारा जीवन सर्वदा सुखमय बना रहे।

हमारी जीवन यात्रा जब भगवान के चरणों तक जाकर पूर्ण हो तो इस जन्म को पाने का उद्देश्य पूरा होगा। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए कर्म के प्रति सजगता, पवित्रता और निष्कपटता ही हमें परमात्मा के निकट पहुंचाती है।

0: हम अपने भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हर पल हम स्वस्थ रहें, खुश रहें और औरों को भी खुशियां बांट सकें। और इसी प्रार्थना के साथ आज का आराधना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
1: श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस अवसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल कार्य है, तथापि उचित तो यह था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण, शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत, विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल से भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को चले जाएं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए आपको हम आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अभी से थोड़ी देर यानी 6:55 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत और हिंदी में समाचार। सुबह 7:05 का समय होगा स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत आप जानकारी लेंगे वर्तमान जीवन शैली और बढ़ते मधुमेह के रोगी। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर रंजीत सिंह और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। 7:15 का समय होगा सुबह सुरीली का। 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे खुला आकाश के अंतर्गत वार्ता डिजिटल युग में हिंदी साहित्य। वार्ताकार होंगे रमाकांत तिवारी। सुबह 8:00 आप सुनते हैं समाचार प्रभात और प्रादेशिक समाचार 8:30 से। लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मुंडारी में लोकगीत। कलाकार होंगे सोमा मुंडा और साथी। सुबह 9:00 का समय होगा रसरंजन कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनवाएंगे 9:30 से। हमारी आज की कलाकारा हैं श्रीमती सविता रॉय। इनसे आप सुनेंगे राग नंद में ख्याल गायन। विलंबित रचना 1 ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत देंगे श्यामानंद झा। हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती। बढ़ते कदम कार्यक्रम सुबह 10:00 आप सुनिएगा। भेंट वार्ता होगी सांस्कृतिक कार्य निदेशालय पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद और युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित ऑड्री हाउस में समर कैंप पर आधारित। विषय होगा अलग अलग विधाओं में समर कैंप में शामिल बच्चों से और प्रशिक्षकों से बातचीत। बातचीत करेंगे कमलेश कुमार मिश्रा, प्रस्तुति प्रभु शरण की। जोहार रांची कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 10:30 से। 11:30 पर श्रोता अपने फरमाइशी गीत सुनेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में। गृह लक्ष्मी कार्यक्रम दिन में 12:00 आप सुनते हैं। आज भेंट वार्ता होगी लू लगने पर क्या करें और क्या ना करें। जानकारी होगी नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 12:30 से। और अनुरंजनी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 1:20 पर। इसके अंतर्गत आज कलाकार होंगी श्रीमती अनीता सेन। इनसे आप सुनेंगे टप्पा। सुगम संगीत का समय होगा 1:45। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे गजल आशा भोसले की आवाज़ में। जय भारती कार्यक्रम 2:30 पर आप सुनेंगे। और 3:00 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग रांची मेलोडीज हम लेकर आएंगे 3:30 पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे 4:00 और 4:02 पर बढ़ते कदम कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन पाएंगे। शाम 4:35 पर सांझ सरगम कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा फिल्म संगीत। युववाणी कार्यक्रम शाम 5:02 से। इसके अंतर्गत चर्चा होगी इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग्स अमंग सिविलाइजेशन और कल्चरल डाइवर्सिटी। फिल्म संगीत भी आप इस कार्यक्रम में सुनिएगा। प्रस्तुत करता होंगे गौरव पांडे। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पर हम आपको सुनवाएंगे। इसके अंतर्गत चर्चा होगी एक धारा अनेक संस्कृतियां, आपसी सम्मान और एकजुटता से सुंदर संसार। प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। खेतीबाड़ी कार्यक्रम आप सुनिएगा 6:02 से। प्रश्नोत्तरी होगी मिट्टी की जान हरी खाद। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह। और हमारी दुनिया कार्यक्रम में हिंदी वार्ता होगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्व। वार्ताकार होंगे जयंत कुमार पांडे और समय होगा 6:32। आदिवासी अखाड़ा कार्यक्रम मुंडारी भाषा में आज आप सुनिएगा। चर्चा होगी साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय और प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार। ये थे आज रात तक प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21

0: जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जानकारी वर्तमान जीवन शैली और बढ़ते मधुमेह के रोगी। बताएंगे इसके बारे में डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों, वर्तमान जीवन शैली काफी बिगड़ी हुई है। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान बिल्कुल बदल गया है और ऐसे में बहुत सारी बीमारियां निकल कर सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही बीमारी है मधुमेह, या जिसे हम डायबिटिक कहते हैं, वो हम तक पहुंच चुकी है। तो वर्तमान जीवन शैली किस प्रकार मधुमेह की बीमारी को प्रभावित कर रही है और क्या लक्षण है और अपने आप को किस प्रकार बचाव करें, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ आमंत्रित हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, डिप्टी CMO CCL गांधीनगर हॉस्पिटल रांची। डॉक्टर रंजीत साहब, स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: आज की जिंदगी कितना प्रभावित कर रही है डायबिटिक को?
3: एक्चुअली जो मधुमेह है वो मुख्य रूप से जो एक मेटाबॉलिक डिजीज है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह लीजिए, जिसमें जो पैनक्रियाज ग्लैंड है उससे बीटा सेल से जो इंसुलिन हार्मोन का जो निकलता है, या तो वो एब्सोल्यूट उसकी डेफिशिएंसी रहती है या रिलेटिव डेफिशिएंसी रहती है, या फिर उसका सिक्रीशन प्रॉपर होने के बाद भी सेलुलर लेवल पे रेसिस्टेंस होता है, जिसके कारण ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन या ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, तो हमारे रक्त में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है, मुख्य रूप से जो ब्रेन हैं, किडनी हैं और हार्ट हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स हैं, वो प्रभावित होते हैं। डायबिटीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं दो तरह के होते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं और एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल जो कि हमारे बस में नहीं है, जिनका कंट्रोल, जैसे कि एज मोर देन 45 ईयर्स है, किसी खास रेस और इथनिसिटी में, जैसे कॉकेशियंस में कम होते हैं, ब्लैक अफ्रीकन्स में, एशियंस में ज़्यादा ये डिजीज हो रहा है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मदर फादर को अगर है, तो अगर आपके एक एक सिबलिंग में अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 50% रिस्क होता है डायबिटीज़ का, मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज़ का, और अगर दोनों सिबलिंग में है, मदर फादर दोनों को है, तो 75% तक रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। अब आइए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में। इसमें जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में, इसमें मुख्य रूप से हमारा जो खान पान जो है, जो हम लोग आज का जो खान पान का जो शैली है, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं खाने में, और प्रोटीन और सब्जी और जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो कम यूज करते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा यूज करते हैं, फैट वाले जो मिल्क प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, हाई फैट जो आपके नॉन वेज आइटम्स हैं, जो प्रोसेस्ड मीट होते हैं, मीट प्रोडक्ट्स होते हैं या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, वो यूज करते हैं, तो ये सब मधुमेह के रोग को बहुत बढ़ाने में ये बहुत ही सहायक हैं। अगर हम अच्छी तरह से हरे साग सब्जी, फ्रूट्स, उसके बाद अगर हम लोग होल ग्रेन, जो हम लोग पुराने टाइम में यूज करते थे, तो वो होल ग्रेन्स जो है उस अगर पॉलिश्ड जो ग्रेन्स है उसके जगह पे यूज करें, तो इन सब से जो डायबिटीज़ का प्रीवेलेंस कम होगा। दूसरा रिस्क फैक्टर है आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल और डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। हमारा जो आजकल का ऑफिस कल्चर है उसमें हम लोग बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट आप पूरे वीक में कम से कम 45 मिनट्स से लेकर 1 आवर तक, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक आपकी फिजिकल एक्टिविटी मॉडरेट होनी चाहिए, इससे डायबिटीज़ कम होगा। दूसरा, तीसरा है कि जो हम लोगों का स्ट्रेस फैक्टर है, तनाव, ये अभी युवाओं में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, स्लीपिंग पैटर्न उसके चलते बहुत अल्टर्ड हो जाता है। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए 8 to 9 hours का जो स्लीप है, वो साउंड स्लीप बहुत ही ज़रूरी होता है, वो भी बहुत ही आवश्यक चीज़ है। दूसरा है आपका जो हम लोग स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं, वो भी इसमें सहायक होता है, तो ये भी डायबिटीज़ के प्रिवेंशन में एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है ये। तो कुल मिला जुला के ये जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इन्हीं मॉडिफाइबल इज

0: डॉक्टर्स पे अगर हम ध्यान दें तो अभी का जो मधुमेह का जो जितने पेशेंट्स हैं बढ़ रहे हैं, तो उस पर हम लोग कुछ हद तक उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी ग्लोबल बर्डन जो 8.8% ऑफ द पॉपुलेशन जो ग्लोबली है वो मधुमेह से पीड़ित है, और 2019 का जो डाटा है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का, उसका अगर रेफरेंस लें तो अराउंड 463 मिलियन, मैंने 463 मिलियन पीपल जो है वो डायबिटीज से ग्रस्त हैं, और जो कि प्रोजेक्टेड डेटा है 2045 तक वो 700 मिलियन हो जाएगा। और उसमें से एक अचंभे वाली बात ये है कि 374 मिलियन है, 374 मिलियन पर्सन ऐसे हैं जिनमें अभी प्री डायबिटिक स्टेज में है, जो आने वाले 5-10 साल में 75% चांस है कि वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो डेटा जो है प्रोजेक्टेड है 2045 तक, हो सकता है कि वो 548 मिलियन तक चला जाए। अब आ जाइए हमारे अपने कंट्री इंडिया के बारे में, तो इंडिया का जो है 8.8% पॉपुलेशन जो है अभी डायबिटीज़ से ग्रसित है। उसमें मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज जो है 90-95% जो केसेस हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, 5-10% टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं। करंट जो 2019 का डेटा है IDF का, उसके हिसाब से इंडिया में 77 मिलियन पीपल जो है वो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, जो कि 2045 तक 134.2 मिलियन हो जाएगा। इंडिया में भी जो प्री डायबिटिक स्टेज में हैं वो अभी 25.2 मिलियन पीपल हैं, जो कि 2045 तक 35.7 मिलियन हो जाएंगे। और जितने भी पॉपुलेशन हैं उसमें 57% को ये पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, उनको कोई लक्षण नहीं है डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ होने के बाद भी। तो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उनको अगर स्क्रीन किया जाए तो ये डेटा और बढ़ सकता है।
1: बड़े चौंकाने वाले हैं और बड़े घबराने वाले भी हैं
0: जी
1: डाटा है।
0: और ये सबसे मुख्य रूप से इसमें ये समझिए कि हेल्थ एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा जो भाग है, $92 जो है वो पर ईयर पर पर्सन जो है डायबिटीज़ के मरीज पे खर्च होता है, और 1 मिलियन डेथ, टोटल डेथ पर ईयर अभी डायबिटीज़ के चलते हो रहा है।
1: लक्षण इसके क्या है ताकि हम उपचार शुरू कर दें और अपना बचाव कर लें?
0: देखिए लक्षण मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, और बार बार पेशाब होना, एकाएक आपका वजन गिरने लगना, जो आंखों की रोशनी है वो एकाएक कमज़ोर होने लगना, फिर अगर देखें मुख्य रूप से तो प्यास बहुत लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये सब मुख्यतः जो है डायबिटीज़ के लक्षण हैं जो कि आम आदमी उसको पहचान नहीं पाते हैं।
1: तो इस तरह के लक्षण दिखे तो हमें सावधान हो जाना चाहिए और जांच करवा लेनी चाहिए।
0: जी
1: जी और कितना रेंज क्रॉस कर जाए तो हम ये समझे कि हम मधुमेह से पीड़ित हैं?
0: जो करंट अभी जो डायग्नोसिस का अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, अगर आपका फास्टिंग मतलब अगर आप खाली पेट आपका ब्लड ग्लूकोज अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, और अगर रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है विथ सिम्टम, सिम्टम का मतलब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रहा है, तो डायबिटीज़ के रेंज में आते हैं आप। या फिर 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद 2 आवर्स के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 से ज़्यादा है, और HbA1c जो कि 3 महीने का एक एवरेज ग्लूकोज बताता है वो अगर 6.5% से ज़्यादा है तो आप डायबिटीज के रेंज में आते हैं।
1: अंत में बचाव किस प्रकार करें, सावधानियां किस प्रकार रखें?
0: हाँ, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर
1: जी,
0: और एक मेटाबॉलिक डिजीज है तो इसलिए बचाव बहुत जरूरी है। तो बचाव में 5-6 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका हेल्दी डाइट, तला हुआ भुना हुआ चीज खाते हैं, या फिर बाजार में जो आप ये आलू है, आलू के चिप्स हैं जो रिफाइंड ट्रांस फैट उसमें ज़्यादा होता है, तो इस तरह के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। आपके आपको बहुत अच्छा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन, अभी मल्टीग्रेन का ज़माना है तो मल्टीग्रेन का अगर यूज करें तो, और प्रोसेस्ड फूड का यूज नहीं करें तो ये बहुत ही आपको सहायक होगा कि आपको मधुमेह नहीं हो। दूसरा है आपका फिजिकल एक्टिविटी, आपका लाइफ स्टाइल जो है एटलीस्ट ADA का जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का जो आपका गाइडलाइन है कि 5 डेज अ वीक कम से कम 45 मिनट्स टू वन आवर आपका जो है फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। तीसरा है कि जितना भी स्मोकिंग से उसको स्मोक

0: स्मोकिंग्स, आपका जो बैड हैबिट्स है स्मोकिंग्स और अल्कोहल को अवॉइड करिए, और अपना ब्लड प्रेशर और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा चेक करा कर इसको कंट्रोल करके रखिए। और आपका साउंड स्लीप बहुत आवश्यक है, कम से कम 7 to 9 आवर्स रेगुलर साउंड स्लीप होना चाहिए। अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही डायबिटीज से बचाव के आपके पास हथियार हैं
1: जी। तनाव से मुक्त रहिए, अच्छी नींद लीजिए, और अंत में सबसे अच्छी बात कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आज आप इस कार्यक्रम में। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे, वर्तमान जीवन शैली और बढ़ते मधुमेह के रोगी के बारे में बता रहे थे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं सुबह सुरीली का ये सुरीला प्रोग्राम। इसके पहले ये संदेश।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए हम आपको सुनवाते हैं सुबह सुरीली कार्यक्रम, और आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसी आशा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव संभव है, अपनी सोच बड़ी रखिए। जीवन में समस्या तो हर दिन खड़ी है, वो जीत जाते हैं जिनकी सोच बड़ी है। हल्के फुल्के प्रयास परिणाम नहीं देते, परिणाम के लिए पूरी ताकत लगाइए, और दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है, इसलिए खुशियाँ बिखेरिए।
6: मैंने

भाई इस जिंदगी में जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। किसी के दिल में जगह बना लेना जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पैसों से घर नहीं बनते।

श्रोताओं कहते हैं ना कि जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार करने वाला और कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई आपके साथ गुस्से में भी रहता है, साथ देता है, तो उसका साथ आप भी निभाइए।

कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है और तय भी वही करता है। इसलिए जो मिल गया उसके साथ आप अपनी दोस्ती, अपना प्यार, अपना रिश्ता जरूर निभाइए।

श्रोताओं, सुबह सुरीली में आप सुन रहे हैं कुछ सुरीले गीत और साथ में कुछ ऐसी बातें जो हमारी ज़िंदगी को, अगर हम इसे मान लें तो ज़िंदगी सुरीली हो जाती है। और अंत में हम बस एक और प्यारा सा संदेश आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं कि बस हर किसी की यही तमन्ना हो कि मुझे बड़ी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी नहीं चाहिए, बल्कि जब तक अपने साथी का साथ है तब तक की जिंदगी चाहिए।

0: श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आज का सुबह सुरीली कार्यक्रम अब समाप्त करने की दीजिए इजाजत अपनी दोस्त उषा जायसवाल को। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और अब आइए श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं खुला आकाश कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता डिजिटल युग में हिंदी साहित्य। वार्ताकार हैं रमाकांत तिवारी।
1: नमस्कार श्रोतागण, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है डिजिटल युग में हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य भारत की सबसे समृद्ध और प्राचीन साहित्यिक परंपराओं में से एक है, जिसकी जड़ें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश भाषाओं से जुड़ी हैं। साहित्य शब्द और अर्थ का ऐसा मेल है जो मानव की भावनाओं, विचारों और अनुभवों का कलात्मक रूप से व्यक्त करता है। साहित्य मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि समाज का दर्पण और मानवीय संवेदनाओं को परिष्कृत करने का सशक्त माध्यम है। साहित्य शब्द संस्कृत के सहित शब्द से बना है जिसका अर्थ है साथ या मिलकर। शाब्दिक अर्थ में साहित्य वह रचना है जिसमें सभी का कल्याण समाहित हो। साहित्य किसी भी भाषा में लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों, भावनाओं और अनुभवों का एक कलात्मक संग्रह है जो हमें मानव जीवन, संस्कृति और इतिहास को गहराई से समझने में मदद करता है। डिजिटल शब्द का अर्थ अंकीय या अंकों से संबंधित होता है। इस वर्तमान समय को डिजिटल युग भी कहा जाता है। डिजिटल युग का वह दौर है जिसमें सूचना, संचार और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार डिजिटल डेटा और तकनीक बन गई है। यह युग कंप्यूटर, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यापक उपयोग द्वारा संचालित है। डिजिटल युग में तीव्र सूचना, संपर्क तथा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति से जुड़ने की क्षमता रखता है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं जो मानव इतिहास का एक ऐसा दौर माना जाता है जिसमें औद्योगिक उत्पादन से सूचना और कंप्यूटरीकरण की ओर बदलाव आया है। आज किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी अधिक सूचना का प्रबंध करना संभव नहीं है। डिजिटल युग सशक्त ग्राहकों का युग माना जाता है। वह नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक समस्या समाधान और विभिन्न क्षेत्रों में संबंध स्थापित करने की क्षमता के महत्व पर भी बल देता है। डिजिटल युग में व्यक्तियों को न केवल जानकारी खोजने और उसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आज का समय डिजिटल युग का समय है। इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले लोग किसी भी तरह समाचार प्राप्त करने के लिए किताबों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज अधिकांश जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। इस बदलते परिवेश का बदलाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा है। साहित्य किस समाज का दर्पण होता है। यह समाज की भावनाओं, विचारों, संस्कृति और जीवन मूल्यों को व्यक्त करता है। आज डिजिटल युग में भी हिंदी साहित्य अपनी पहचान बनाए हुए है और नए रूप में लोगों तक पहुंच रहा है। आज डिजिटल युग में अनेक वेबसाइट, ब्लॉग, ई पत्रिकाएं और डिजिटल पुस्तकालय उपलब्ध है जहाँ हिंदी साहित्य आसानी से पढ़ा जा सकता है। लोग अपने मोबाइल पर कविता, कहानी और उपन्यास आदि पढ़ सकते हैं। डिजिटल युग में हिंदी साहित्य सभी के लिए सुलभ हो गया है। पहले किसी पुस्तक को प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय या दुकान जाना पड़ता था, लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही समय में उपलब्ध हो जाती है। पहले साहित्य की दुनिया में लेखक तथा कवि को पहचान बनाना कठिन हो जाता था, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी रचनाएं प्रकाशित कर सकता है। आज हिंदी का प्रचार प्रसार डिजिटल के माध्यम से तेजी से हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से हिंदी साहित्य विश्व के विभिन्न देशों तक पहुंच रहा है, जिससे हिंदी भाषा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हिंदी भाषा में बड़ी संख्या में वेबसाइट, ई पत्रिका आदि ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध है, जिस कारण कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, आलोचना और लेख नियमित रूप से प्रकाशित किए जा रहे हैं। पाठक अब केवल पुस्तकालयों या पुस्तक के दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे घर बैठे मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न रचनाएं पढ़ सकते हैं, जिससे पाठकों की संख्या में वृद्धि हो

गतिविधियों का दायरा काफी विस्तृत हुआ है। डिजिटल संसार के कारण विदेशों में रहने वाले हिंदी भाषी लोग का भी जुड़ाव बढ़ा है। वे अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य से निरंतर जुड़ सकते हैं, जिससे हिंदी साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार और इसकी वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। डिजिटल युग ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा, संसार, व्यापार, मनोरंजन और साहित्य जैसे क्षेत्रों में तकनीक का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी साहित्य भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रहा है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल मंचों के विकास ने हिंदी साहित्य को नए पाठक, नए लेखक और नई अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए हैं। आज हिंदी साहित्य केवल पुस्तकों और पत्रिकाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल माध्यमों के द्वारा विश्व भर के पाठकों तक आसानी से पहुंच रहा है। आज डिजिटल तकनीक के कारण हिंदी साहित्य की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक सशक्त दिखाई देती है। अनेक साहित्यकार अपनी रचनाओं को ब्लॉग, वेबसाइट, ई पत्रिकाओं और सोशल मीडिया मंचों पर प्रकाशित कर रहे हैं। इससे साहित्य का प्रचार प्रसार तेज गति में हो रही है। पहले किसी लेखक को अपनी रचना प्रकाशित कराने के लिए प्रकाशकों पर निर्भर रहना पड़ता था, जबकि आज वह डिजिटल मंचों के माध्यम से पाठकों तक पहुंच सकता है, जिस कारण नए और युवा लेखकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। डिजिटल युग में हिंदी साहित्य ने मुद्रण से स्क्रीन तक एक बड़ा सफर तय किया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और ई पुस्तकों के माध्यम से हिंदी साहित्य की पहुँच दुनिया के कोने कोने तक बढ़ी है। डिजिटल युग ने हिंदी साहित्य की सीमाओं से मुक्त कर वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है। तकनीक, सोशल मीडिया और ऑनलाइन के द्वारा इसके पठन पाठन, लेखन और प्रकाशन के पारंपरिक तरीकों से में भारी बदलाव किया है, जिससे यह युवा पीढ़ी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। डिजिटल युग में हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो लोकतांत्रिकरण और स्व प्रकाशन के माध्यम से रचनाकारों को पारंपरिक प्रकाशकों की लंबी प्रतीक्षा सूची मुक्ति मिल रही है। वे अपनी रचना सीधे पाठकों तक पहुँचा रहे हैं। डिजिटल तकनीक में हिंदी साहित्य स्वर्णकाल बनने की अपार संभावनाएं रखता है, बशर्ते गुणवत्ता, भाषा की गरिमा और साहित्यिक मूल्यों के बीच एक संतुलन बनाकर रखा जाए। डिजिटल युग में हिंदी साहित्य के लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से माध्यम से पुस्तकों और रचनाओं से जोड़ना चाहिए। ई बुक और साहित्यिक मोबाइल एप्लीकेशन का अधिक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि युवा पढ़ी आसानी से गुणवत्तापूर्ण सामग्री तक पहुंच सके। प्रसिद्ध लेखकों की कविता, कहानी तथा उनके विचारों आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाए तो युवाओं में पढ़ने की रुचि बढ़ सकती है। ऑनलाइन पुस्तक, चर्चा, कविता पाठ आयोजन भी इस दिशा में प्रभावी कदम हो सकता है। परिवार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि घर में पढ़ने का अभाव, वातावरण और बच्चों की छोटी उम्र में ही पुस्तकों से परिचित कराया जाए तो उनमें अध्ययन की आदत विकसित होगी। डिजिटल युग हमारे जीवन का एक ऐसा दौर है जिसने लेखन और पठन पाठन की दुनिया को नए अवसर प्रदान किए हैं। इंटरनेट और आधुनिक तकनीक ने ज्ञान को घर घर तक पहुंचाया है तथा नए प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर प्रदान किया है। डिजिटल को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी मानते हुए उसका उपयोग ज्ञान और साहित्य के प्रचार के लिए किया जाना चाहिए, जिसे पढ़ने की संस्कृति मजबूत होगी और नई पीढ़ी हिंदी भाषा से जुड़ी रहेगी। डिजिटल युग में लोगों को साहित्य से जुड़कर पढ़ने की आदत या वाचन व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास का महत्व अंग माना जाता है। साहित्य के माध्यम से लोग नए दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं तथा आलोचनात्मक सोच की क्षमताएं बढ़ाते हैं। हालांकि डिजिटल युग के आगमन के साथ लिखित साहित्य से लोगों के विशेष रूप से युवा पीढ़ी के जुड़ने के तरीके में परिवर्तन आया है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया आदि डिजिटल उपकरण ने पढ़ने की आदतों में गहरे बदलाव किए हैं। पारंपरिक रूप से मुद्रित पुस्तकें वाचन का प्रमुख साधन रही है। हिंदी लेखन में इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल, डिजिटल प्रकाशन तथा वेब पत्रकारिता आदि उपकरणों ने नई दिशा प्रदान की है। पहले जहां हिंदी लेखन का दायरा पुस्तक, पत्रिका और अखबार जैसे परंपरागत माध्यमों तक सीमित था, वहीं आज डिजिटल माध्यमों ने इसे वैश्विक स्तर पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। हिंदी साहित्य का डिजिटल प्रस्तुतिकरण इस नई पीढ़ी के पाठकों तक पहुंचाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल युग में हिंदी साहित्य की कुछ चुनौतियाँ भी दिखलाई पड़ती हैं। आज कोई भी व्यक्ति साधारण सी बात लिखकर इंटरनेट पर प्रकाशित कर सकता है, जिस कारण अच्छी और

0: खराब सामग्री दोनों बड़ी मात्रा में तथा कई बार बिना संपादन और जांच की सामग्री प्रकाशित हो रही है, जिससे साहित्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आज अधिकांश लोग लंबी कहानियां उपन्यास न पढ़कर छोटे छोटे संदेश तथा उन कहानियों पर वीडियो देखना पसंद करते हैं। इससे साहित्य के गहन अध्ययन की परंपरा कमजोर हो सकती है। आज इंटरनेट के माध्यम से किसी भी साहित्यकार की रचना को नाटक नकल करके अपने नाम से प्रकाशित करना आसान हो गया है, जिससे लेखक या कवि के अधिकारों का उल्लंघन होता है। कभी कभी इंटरनेट पर गलत या भ्रामक जानकारी भी उपलब्ध होती है। यदि पाठक सावधानी न बरते तो वे गलत जानकारी को भी सत्य मान लेते हैं। हिंदी साहित्य में कुछ चुनौतियां सामने आती हुई दिखाई देती हैं, जिनका समाधान जागरूकता, अनुशासन और विवेकपूर्ण उपयोग से संभव है। यदि हम तकनीक का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें, पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा दें, तो हमारी साहित्य परंपरा और अधिक समृद्ध होगी। डिजिटल युग तब केवल तकनीकी विकास माध्यम न रहकर बल्कि ज्ञान, संस्कृति और रचनात्मक के विकास का भी सशक्त साधन बनेगा। जहाँ डिजिटल युग में हिंदी साहित्य को अवसर उपलब्ध हुए हैं, वहीं अनेक प्रकार की चुनौतियां भी सामने आई हैं। तकनीकी शब्दावली का अभाव, हिंदी के मानकीकरण की समस्या, शुद्ध भाषा के प्रति उदासीनता, कॉपी पेस्ट संस्कृति, फर्जी समाचार पत्र या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानव लेखन पर संभावित खतरे जैसी चुनौतियां सामने आई हैं। अतः डिजिटल युग ने हिंदी लेखन को नई ऊर्जा, नए अवसर और नए मंच प्रदान किए हैं। भविष्य में हिंदी डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऑनलाइन शिक्षा, सोशल मीडिया और साहित्यिक माध्यमों का प्रमुख स्तंभ बन सकती है। अंततः मैं कहना चाहूंगा कि डिजिटल युग हिंदी साहित्य के लिए एक नया अवसर लेकर आया है, नए लेखकों को मंच दिया है और हिंदी साहित्य को भाषा के रूप में विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। यदि हम तकनीक का सही उपयोग करें और साहित्यिक मूल्यों को बनाए रखें तो हिंदी साहित्य का भविष्य उज्जवल हो सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे खुला आकाश के अंतर्गत वार्ता, डिजिटल युग में हिंदी साहित्य। वार्ताकार थे रमाकांत तिवारी और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनता

0: लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर

0: सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
3: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
2: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi becomes longest serving elected Prime Minister of India. World leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today.

0: चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में केंद्राडीह खदान का परिचालन फिर से किया शुरू। मुसाबनी कंसंट्रेटर संयंत्र की क्षमता वृद्धि परियोजना का भी किया शुभारंभ। राज्य के सरकारी अस्पतालों से हटाए जाएंगे 8 वर्ष पुराने और 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके एम्बुलेंस। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों से 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर कांग्रेस विधायक ने दर्ज कराई आपत्ति। आज आएगा निर्वाचन अधिकारी का अंतिम फैसला। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की रफ्तार तेज, अगले 5 दिनों में राज्य में एंट्री। कल रांची समेत 14 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है झारखंड T20 प्रीमियर लीग का रोमांच। 14 दिनों में खेले जाएंगे कुल 27 मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने लगातार 4,399 दिनों का निरंतर कार्यकाल पूरा कर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,388 दिनों का था। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जमशेदपुर के सिंहभूम ताम्रपट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्राडीह माइंस का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुसाबनी कंसंट्रेटर संयंत्र की क्षमता वृद्धि परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक पहल से क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे और देश का तांबा उत्पादन 2 गुने से अधिक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और दिसंबर 2028 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य दिया है। बैठक के बाद पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विषयवार समीक्षा किए हैं, SBM का अलग किए, JJM का अलग किए हैं, DMFT फंड का अलग किए, राज्य योजना का अलग किए, कई दिशा निर्देश भी, कई सुझाव भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया, कई विषयों पर तत्परता से कार्य करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ है, उस पर हम लोग पालन करेंगे। हर हाल में राज्य के अंतिम व्यक्ति को शुद्ध पेयजल कैसे मिले, इसके लिए सरकार और विभाग निरंतर प्रयास कर रही है।
0: झारखंड के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं जल्द सुदृढ़ होंगी। राज्य सरकार ने 8 वर्ष से अधिक पुराने या 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके एम्बुलेंसों को हटाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को 1 सप्ताह में ऐसे वाहनों की समीक्षा रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पर कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपत्ति के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने अपना फैसला आज सुबह 11 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इधर परिमल नाथवानी की ओर से उनके अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष सभी आपत्तियों का जवाब दाखिल कर दिया है।
3: ये जो भी उनके क्वेरीज थे, ये क्वेरीज नॉमिनल क्वेरीज रहते हैं, जो रिटर्निंग अफसर को पावर भी है और किसी के शिकायत पर भी रिटर्निंग अफसर 36 सेक्शन के तहत वो कर सकते हैं। हम लोगों ने परिमल लखमान जी की तरफ से सारे सूचीबद्ध तरीके से हमने एक एक पॉइंट को रिटर्निंग अफसर को जमा कर दिया है। अब कोई त्रुटि नहीं है, जो शिकायत किया गया उसको हम लोगों ने त्रुटि को दूर कर दिया।
0: नई दिल्ली के वसंत विहार स्थित झारखंड भवन का औचक निरीक्षण रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल ने किया। उन्होंने स्वच्छता, सुरक्षा और अतिथि सुविधाओं

0: की समीक्षा करते हुए बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को तत्काल चालू करने के निर्देश दिए। साथ ही भवन परिसर में लंबे समय से खड़े 6 अनुपयोगी वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जीरामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: राज्य के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने अब तक 59,340 BLA2 नियुक्त किए हैं। इसमें भाजपा ने 21,645, कांग्रेस ने 17,479 और झामुमो ने 14,482 नियुक्तियां की हैं। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पहाड़ी मंदिर में श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले के लिए उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के कर्मियों की 24 घंटे तैनाती की जाएगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून झारखंड की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों के भीतर मॉनसून राज्य में प्रवेश कर सकता है। इस बीच कल राजधानी रांची, दुमका, बोकारो समेत राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड T20 प्रीमियर लीग का आज से रांची के JSES स्टेडियम में आगाज होने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 14 दिनों के भीतर कुल 27 रोमांचक मुकाबले होंगे। खिताब के लिए कुल 6 फ्रेंचाइजी टीमें मैदान में आमने सामने होंगी, जिसे लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है। लीग की पूर्व संध्या पर रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गयी।
2: यंग टैलेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और यंग टैलेंट्स को हम इंस्पायर भी कर सकें, इसके लिए 600 बच्चे स्कूल से आ रहे हैं मैच को लाइव देखने के लिए स्टेडियम में। तो ये एक मुहिम हम लोगों ने चालू किया है, देखते हैं। फर्स्ट मैच के लिए तो अभी हुआ है, आगे भी और कोशिश करेंगे कि और मैचेस में भी छोटे स्कूल के बच्चे आएँ जो अपने प्लेयर्स को, अपने लोकल हीरोज को देखें खेलते हुए और इंस्पायर हों कि एक दिन वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकें।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र होल्ड पर रखे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव पर्चे में त्रुटियों की शिकायत, नाथवानी का नामांकन होल्ड पर। हिंदुस्तान के शब्द हैं, पीएम मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड। प्रभात खबर ने झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, सरकार दुष्कर्म की घटनाओं से जन्मे बच्चों को दिलाए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। दैनिक जागरण लिखता है, आज से 444 बालू घाटों से उठाव पर रोक, निर्माण कार्यों पर संकट। और अब अंत में मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में केंदाडी खदान का परिचालन फिर से किया शुरू। मुसाबनी कंसंट्रेटर संयंत्र की क्षमता वृद्धि परियोजना का भी किया शुभारंभ। राज्य के सरकारी अस्पतालों से हटाए जाएंगे 8 वर्ष पुराने और 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके एम्बुलेंस। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन

से एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर कांग्रेस विधायक ने दर्ज कराई आपत्ति। आज आएगा निर्वाचन अधिकारी का अंतिम फैसला। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की रफ्तार तेज, अगले 5 दिनों में राज्य में एंट्री। कल रांची समेत 14 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है झारखंड T20 प्रीमियर लीग का रोमांच। 14 दिनों में खेले जाएंगे कुल 27 मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं मुंडारी भाषा में लोक रंग कार्यक्रम में लोकगीत। कलाकार हैं सोवा मुंडा और साथी।
1: मुनु रे ना देवासी मुंडा को।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रसरंजन। लीजिए, इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए कन्हैया फिल्म का ये प्यारा सा नगमा। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

0: पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: संदेश के बाद रसरंजन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। आइए हम आपको अगला गीत सुनवाते हैं मिलन फिल्म का। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार हैं आनंद बख्शी। आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

रसरंजन कार्यक्रम का अगला गीत मदारी फिल्म से हमने लिया है। संगीत से सजाया है इस गीत को कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखा है फारूक कासर ने। आवाज़ मुकेश और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, आइए अब अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं सिलसिला फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं। गीत के बोल हैं हसल कमाल के और संगीत शिव हरि का।

श्रोताओं, अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं सिलसिला फिल्म का ही। संगीत दिया है शिव हरि ने, गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के और आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

सिलसिला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। और इसी के साथ आज का रसरंजन कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर। आप हमारे कार्यक्रम एफएम रेनबो 100.5 मेगा हर्ट्स पर भी सुन रहे हैं। और श्रोताओं, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं श्रीमती सबिता रॉय। इनसे आप सुनेंगे राग नट भैरव में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है। बोल है पार ना पायो तेरी। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल है सुजान करिए गुण की चर्चा। तबले पर संकेत दे रहे हैं श्यामानंद झा और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती। इस गीत से पहले आप सुनेंगे ये संदेश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रीमती सबिता रॉय से राग नंद में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। तबले पर संगत दे रहे थे श्यामानंद झा और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती। और ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे बढ़ते कदम कार्यक्रम। ये भेंट वार्ता सांस्कृतिक कार्य निदेशालय पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद और युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित ऑड्रे हाउस में समर कैंप पर आधारित है। विषय है अलग अलग विधाओं में समर कैंप में शामिल बच्चों से बातचीत तथा प्रशिक्षकों से भी बातचीत। बातचीत करेंगे कमलेश कुमार मिश्रा, प्रस्तुति प्रभु शरण की होगी। जोहार रांची कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 10:30 से और 11:30 का समय होता है आपकी पसंद कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में श्रोता अपने फरमाइशी गीत सुनते हैं। बहनों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम होता है गृहलक्ष्मी दिन में 12 बजे से। आज चर्चा होगी गर्मी, बदलता मौसम और सावधानियां। एक भेंट वार्ता भी सुनवाएंगे, लू लगने पर क्या करें और क्या ना करें। रसीली रसोई में आम पन्ना के बारे में आज जानकारी दी जाएगी और नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको मिलेगी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। फिल्म संगीत का आनंद आप उठाएंगे दिन में 12:30 से।

श्रोताओं, एक अच्छी सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं दिल के बारे में, क्योंकि दिल ही हमारा है जो हर दिन करीब 1,15,000 बार धड़कता है और हर रोज लगभग 2,000 गैलन खून पंप करता है। ये शरीर की सबसे मेहनत करने वाली मांसपेशी है, ऐसे में इसका खास ख्याल रखना भी ज़रूरी है। दिल की सेहत से जुड़े बहुत सारे पैमाने होते हैं जो हमें खास करके 40 की उम्र के बाद रखना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन 40 प्लस में एक शुरुआत होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को देखने के लिए, कि हम हमेशा 40 प्लस के बाद दिल की सेहत पर नज़र रखें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करवाना, कोलेस्ट्रॉल पर नज़र रखना। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक खतरे की घंटी बजने लगती है और ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या सही में अच्छा है या बुरा है। तो इसमें दो

0: तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एलडीएल और एक एचडीएल। तो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अगर बढ़ जाए तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, और इसे बढ़ने पर दिल को खून पंप करने में भारी मशक्क़त करनी पड़ती है जो हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। इसलिए इस छोटे से दिल को स्वस्थ रखने के लिए अपने टोटल कोलेस्ट्रॉल का स्कोर 200 mg या DL या उससे कम होना चाहिए। इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी अपने डॉक्टर से मिल सकती है, और डॉक्टर से ख़ास ख्याल रखने के लिए बहुत से बातों का जानकारी भी रखना है, जैसे BMI संतुलन बहुत ज़रूरी है। ये BMI क्या होता है? ये जितना ऊपर जाता है उतना ही हमारा शरीर भारी होता है, यानी इसको बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और ये दिल की बीमारियों की निशानी हो जाती है, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और कई बीमारियों को न्योता भी देता है। इसलिए एक फिट और तंदुरुस्त शरीर के लिए BMI स्कोर 18.5 से 24.9 के बीच होना चाहिए, और अगर 25 से ऊपर निकल जाता है तो आप अधिक वजन की श्रेणी में आ जाते हैं, और दिल के लिए ये पहली चेतावनी होती है। इसलिए अपने वजन पर भी ध्यान रखना है, अपने पोषण पर भी ध्यान रखना है कि आप संतुलित भोजन करें और स्वस्थ रहने की कोशिश करें। और एक बात, दिल दुरुस्त रखने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन कहें तो आप कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इन सभी चीज़ों को संतुलित रखें, अपने जीवन शैली को संतुलित रखें, तो फिर कोई भी बड़े जोखिम हमारे सामने नहीं आ सकते हैं। आजकल की जो जीवन शैली है उसमें देर रात भोजन करना, खाने के बाद शारीरिक गतिविधियों का कम होना और बहुत ज़्यादा तनाव लेना, ख़राब नींद यानी कम नींद होती है, और साथ ही साथ आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का अधिक सेवन करते हैं, तो ये दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है ना कि ज़्यादा चीनी, नमक, धूम्रपान ना करें, गतिहीन जीवन शैली ना रखें, तनाव पर नियंत्रण रखें, पर्याप्त नींद लें। ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो हम अपने दिल को बचाने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए और उसे खुश रखने के लिए हम कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल की धड़कनों को खुद सुनिए, और वो कितनी तेज़ी से धड़कता है या फिर देरी से धड़कता है इसके बारे में भी आप उसका ख्याल रखिए। अगर आप दिल का ख्याल रखेंगे तो दिल हमारा ख्याल रखेगा। इसीलिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी हम छोटी छोटी जानकारी आपको हमेशा देते रहते हैं। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं बढ़ते कदम कार्यक्रम। इसमें भेंट वार्ता आप सुनेंगे सांस्कृतिक कार्य निदेशालय पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित ऑड्री हाउस में समर कैंप पर आधारित। आज का विषय है अलग अलग विधाओं में समर कैंप में शामिल बच्चों से बातचीत और प्रशिक्षकों से भी बातचीत। इनसे बातें करेंगे कमलेश कुमार मिश्रा, प्रस्तुति प्रभु शरण की।
1: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्रा। श्रोताओं, बढ़ते कदम कार्यक्रम की कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपके बीच उन तमाम जानकारियों को लेकर आएं जिससे हम और आप अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़े। आज कार्यक्रम में हम बच्चों की बात करने वाले हैं, आज हम कार्यक्रम में बच्चों की क्रिएटिविटी की बात करने वाले हैं। आज हम कार्यक्रम में झारखंड सरकार द्वारा विभाग है सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष एक समर कैंप लगाया जाता है जहां पे बच्चों को एक मंच दिया जाता है। और इस बार की बात करें तो रांची के ऑड्री हाउस में 26 मई से लेकर 11 जून तक ये आयोजित किया गया है समर कैंप, और विधाएं अलग अलग हैं। चाहे बात आप नृत्य की करें, चाहे बात आप संगीत की करें, बात आप चित्रकला की करें, आप आर्ट एंड क्राफ्ट की करें, बहुत सारे विधाएं, योग की बात करें, तो बच्चे आ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, रहे हैं उनको एक अनुभव मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए प्रत्येक विधा से अनुभवी शिक्षक यहाँ पे उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हमारे साथ पेंटिंग में बहुत सारे बच्चे, मैंने देखा कि जब मैं आड्रे हाउस घूमा और देखा कि समर कैप में किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, तो बहुत ही एक जब नज़ारा आप देखेंगे कि छोटे बच्चे योग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, आकर्षक वो आकृतियाँ उकेर रहे हैं पन्नों पे, तो शुरुआत पेंटिंग से ही करते हैं। हमारे साथ में सर, आपका नाम क्या हुआ?
2: मेरा नाम है गौतम बख्शी।
1: गौतम सर, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है समर कैप में आप?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। इतना बच्चों लोग का प्यार मिलता है, बच्चा को अच्छा अच्छा सिखाया जाते हैं, बच्चा का जो जो प्रॉब्लम है, कोई इंटरेस्ट है पेंटिंग ड्राइंग करने का, इच्छा होता है, उसको हेल्प कर देते हैं, उसको बताते हैं कैसे कैसे तुम बनाओगे, किस तरह का कलर होगा।
1: आप पेंटिंग शिक्षक हैं, मैंने देखा कि आप बस पेंसिल उठा रहे हैं और ड्रॉ करते जा रहे हैं। एक पेंटिंग की जब बात करते हैं, भी के समय में कितना जरूरी है ये बच्चों के लिए?
2: बच्चों का मेमोरी कल्पना जो इमेजिन होता है वो बच्चा का थोड़ा सा डाउन है, उसको पता रहता है हम कैसे बनाते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ तक पूरा हो जाता है, तो बच्चा का ऐसा हाँ सर हम कभी बता दीजिए तो उसको हम बता देते हैं कैसे कैसे करना चाहिए।
1: आपकी ज़िंदगी में जब पेंटिंग की बात करते हैं क्या महत्व रखता है? आप कितने वर्षों से ये कर रहे हैं?
2: हम तो ऐसे 1982 से लेकर के आज 2026 तक कर रहे हैं। रांची में ही है, रांची में मैंने कॉलेज किया है पढ़ाई अपना, ड्रोइंग कॉलेज का ये वीर के बाद हम कोलकाता में फाइन आर्ट का ये सब किए अपना आगे का। हम अपना क्लास का पहले हम स्कूल में टीचर थे, गुरु नानक स्कूल में आर्ट टीचर थे, 2019 में हमारा रिटायर हो गए। अब हम उनको इस तरह का अपना बच्चों को जो जो गरीब लोग है वो नहीं कर पाता, उसको हम सामान भी देते हैं, बढ़ाओ बच्चा का भी मन भी फील होता है, जो गरीब लोग हैं उनको भी मदद करते हैं।
1: बहुत बहुत बधाई सर, और आप बच्चों को समर कैंप में इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी हमने देखा कि आपके साथ सीख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
1: और अभी हमारे साथ अब पेंटिंग ही यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही है, सीख रही है, क्या नाम है आपका?
3: संजना कुमारी।
1: संजना, पहले तो कैंप में आके कैसा लग रहा है, क्या कुछ अब तक सीखी आप?
3: पहले तो मैं पेंटिंग सीख रही थी, फिर अभी शेडिंग कर रही हूँ।
1: कैसा लग रहा है यहाँ पे आके?
3: अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। तो
1: कैसा लगता है कि जब सरकार इस तरह की इनिशिएटिव लेती है जहाँ पे बच्चों को कोई पैसे नहीं देने हैं, और इतना अच्छा समर कैंप जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्या कहना चाहती हैं?
3: सरकार मतलब अपने हिसाब से एक अच्छा प्रयास कर रही है ताकि जो हम लोग अपना क्रिएटिविटी और निकाल के ला सके, ऐसे सर लोग को अपॉइंट करती है, जिस वजह से हम लोग को भी हेल्प होता है कि हम अपना जो स्किल्स है उसको और अच्छे से सुधार सके।
1: तो इंटरेक्ट भी करती है, टीचर से मिलती है, बात करती हैं, आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं आप लोगों को?
3: हाँ, अच्छे से गाइड करते हैं, बताते हैं कि कैसे करना है।
1: और अभी एक और स्टूडेंट हमारे साथ में, क्या नाम है बेटा आपका?
4: मेरा नाम श्रेष्ठ राय है।
1: किस क्लास में हो?
4: मैं 8 डी में हूँ।
1: तो तुम पहले दिन से आ रहे हो जब से यहाँ पे समर कैंप की शुरुआत हुई?
4: हाँ।
1: क्या कुछ सीखे यहाँ पे आके?
4: मैंने चित्रकला सीखा, खूब सारे स्टेट के फोक आर्ट को बनाया के बारे में सीखा, और मैंने मंडाला आर्ट भी खूब सारे बनाए।
1: मुझे ये बता, तुम कब से पेंटिंग कर रहे हो, क्या इंटरेस्ट रखते हो पेंटिंग में?
4: पेंटिंग मेरी एक फेवरेट हॉबी में आती है। मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट लास्ट 5 ईयर्स से है, मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग करना।
1: जब पेंटिंग बनाते हो क्या कुछ दिमाग में होता है, जैसे जब यहाँ पे तुम बोले मंडाला आर्ट के बारे में सीखे, कल्चर के बारे में सीखे, क्या कुछ दिमाग में चलता है तुम्हारा जब पेंटिंग करते हो, क्या सोचते हो, कैसे क्रिएट करते हो?
4: मुझे, मैं सच बताऊँ तो उनको SST बहुत अच्छा लगता है, उसका हिस्ट्री पार्ट। तो हम सोचते हैं कि कुछ हिस्ट्री के टॉपिक पे पेंटिंग करें, इसलिए हमको मंडाला आर्ट, अलग अलग स्टेट का फोक आर्ट बनाने में अच्छा लगता है।
1: कैसा लग रहा है यहाँ पे, इतने सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं?
4: हमको बहुत अच्छा लगता है कि खूब सारे मेरे फ्लैट से भी आते हैं, फिर खूब सारे नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग करना।
1: मम्मी पापा क्या कहते हैं जब तुम घर पे जाते हो, या फिर जब पेंटिंग का अपना इंटरेस्ट दिखाते हो, क्या कहते हैं?
5: कहते हैं मम्मी पापा?
4: मम्मी पापा कहते हैं कि और अच्छा करो और आगे बढ़ोगे, फिर मेरा ही मन है कि हम आगे जाके आर्टिस्ट बने।
1: बहुत बहुत बधाई बेटा और ऑल द बेस्ट, तुम फ्यूचर में अच्छा पेंटिंग करो।
4: थैंक यू, धन्यवाद।
1: तो आज हम झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित समर कैंप में है और यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चों से, कैंप में शामिल बच्चों से बात कर रहे हैं, अलग अलग विधा के बच्चों से बात करेंगे जो योग में है, जो नृत्य में है। और जो आपका क्या नाम है?
6: मेरा नाम शिवांशी सिंह है।
1: शिवांशी किस क्लास में हो?
6: 7 है।
1: पहले तो बताओ कि समर कैंप में तुम यहाँ पे आए, इतने सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं पेंटिंग सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है इस माहौल में आके?
6: इस माहौल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबके के साथ एक साथ ड्रॉ करने में अपना हॉबी चूज करके अच्छे से सीख सकते हैं।
1: एक कंपटीशन भी आता है कि, क्योंकि इतना तो ऐसा मौका नहीं मिलता कि इतने सारे बच्चे एक साथ हो, कहीं जाते होंगे तो एक होते होंगे, दो होते होंगे, लेकिन एक साथ इतने बच्चे नहीं होते होंगे।
6: दीदी लोग बहुत अच्छा अच्छा वाटर कलर पोस्टर कलर किए हैं उनके साथ, मुझे भी मन करता है कि मैं अच्छे से बनाऊं सर को दिखाऊं।
1: तो आप क्या बेसिकली ड्रॉ करते हो, पेंटिंग में क्या पसंद करते हो?
6: आई मोस्टली ड्रॉ वाटर कलर एंड स्केच।
1: क्या करना चाहते हो पेंटिंग में, किस तरह के ड्रॉ ज्यादा पसंद करते हो, किन चीजों पे ज्यादा ड्रॉ करते हो?
6: लाइक सीनरी, एनिमे कैरेक्टर, फेसेस एंड ऑल।
1: क्या एक बेनिफिट होता है, क्योंकि जब लोगों से बात करते हैं पेंटिंग की तो एक इमेजिनेशन की वो हमेशा बात करते हैं, सो तुमको क्या लगता है कि पेंटिंग करने से क्या एक फायदा मिलता है एज अ स्टूडेंट?
6: उसे सीख सकते हैं बायोलॉजी में आगे चल के, बहुत डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ता है तो उसमें सीख सकते हैं।
1: यहाँ पे जब तुम आए समर कैंप में और गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है, अच्छा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट बच्चों के लिए भी इस तरीके से सोचती है, इस तरह का समर कैंप आयोजित करती है?
6: ये तो बहुत अच्छा तरीका है, जो लोग फीस नहीं भर पाते हैं ड्राइंग के लिए वो लोग इधर आके बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उनका भी आगे चल के कुछ करियर बन सकता है।
1: ओके, थैंक यू बात करने के लिए।
6: वेलकम।
1: आप जब इस समर कैंप को देखेंगे तो यहाँ पे हमारी संस्कृति की हर वो झलक देखने को मिलेगी, एक तरफ बच्चे योगा कर रहे हैं तो एक तरफ बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे एक्टिंग भी सीख रहे हैं, नाटक मंचन भी सीख रहे हैं। और अब नाटक के ही प्रशिक्षक हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका?
7: मेरा नाम ऋषिकेश लाल हुआ।
1: ऋषि, पहले तो कैसा लग रहा है जब यहाँ पे कैंप में आप लोग प्रशिक्षक के तौर पे आए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है?
7: बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार की यह जो पहल है, बच्चे घर घर में मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, और कम से कम यहाँ 4 घंटा वो बच्चे उनकी जो कला है, उनके अंदर जो चीज़ है वो निखर के आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे प्रशिक्षक को इतने अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं जो हमारे साथ हमें सहयोग कर रहे हैं ताकि हम अच्छी प्रस्तुति दे सकें, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: एकदम अपने अंतिम पड़ाव में आपका ये समर कैंप है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब नाटक की बात करते हैं तो एक समय में पहले लगता था कि लोग नाटक से दूर हो रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, सो एक नज़र आ रहा है उनके माता पिता में भी इंटरेस्ट है, बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं।
7: बच्चों में वो एनर्जी है, उस एनर्जी का बच्चे उसका उपयोग करना चाहते हैं पर उन्हें स्थान नहीं मिल पाता है। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जो छोटे बच्चे जो इच्छुक हैं, आप देखिएगा यहाँ 500 बच्चे हैं इस समर कैंप में, और 500 बच्चे के माता पिता को ही इच्छा है कि हमारे बच्चे इस फील्ड में जाए, पेंटिंग में है, योगा है, फैशन शो है, डांस है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि देखिए माता पिता को लगता है ना कि जो काम हम नहीं किए
1: वो हमारे बच्चे करें,
7: वो हमारे बच्चे करें।
1: और सरकार इतना अच्छा मंच भी दे रही है,
7: इतना अच्छा मंच दे रही है। 11 तारीख समापन है, उसी दिन उन लोगों की प्रस्तुति होगी। अब पेंटिंग में देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाए, जिन्होंने कभी नहीं बनाया है वो कार्टून बना रहे हैं, डांस में जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है और वो अच्छा भी कर रहे हैं। और जैसे हमारे विधा को ले लीजिए, नाट्य कला को ले लीजिए, हमारे यहाँ भी जो बच्चे जिन्होंने कभी नाटक नहीं किया है और जब हम उनके साथ काम कर रहे हैं हमें भी अच्छा लग रहा है, क्या कि वो इमोशन को वो फील कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे उस फीलिंग्स को ला रहे हैं, तो उनका जो बचपन है वो भी दिख रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो युवा हो वो भी दिख रहा है, उसका मिश्रण दिख रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उतने छोटे छोटे बच्चों को जो भी स्क्रिप्ट, और सबसे बड़ी बात है कि उनको स्क्रिप्ट बहुत जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि हम लोग कभी कभी चूक जाते हैं किसी डायलॉग में, वो खुद डिस्कस करते हैं, नहीं नहीं नहीं ये डायलॉग के बाद इसका डायलॉग है, देखिए ना सर वो डायलॉग बोला ही नहीं, मेरा डायलॉग खा गया, तो ये
1: हाँ बहुत बहुत बधाई ऋषि हमसे बात करने के लिए और बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए,
7: धन्यवाद।
1: आइए, ये तो ऋषि थे प्रशिक्षक, अब हम कुछ बच्चों से बात करते हैं जो इस विधा में सीख रहे हैं। और एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, मैंने देखा कि मंच पे वो कुछ नाटक मंचन कर रही है। बेटा क्या नाम है आपका?
5: श्री।
1: किस क्लास में हो?
5: फोर।
1: फोर में। पहले तो ये बताओ समर कैंप में आके कैसा लग रहा है?
5: सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे आके एकदम स्ट्रेसलेस हो जा रही हूँ, और हॉलीडे होमवर्क्स की भी उतनी ज्यादा चिंता नहीं रहती है यहाँ पे आने के बाद।
1: तो आप क्या तैयारी कर रहे हो, क्या क्या

0: को सिखाया गया अभी तक?
1: हम लोग एक नाटक कर रहे हैं जिसका विषय है मृदंगिया, और उसमें मेरा कैरेक्टर है, मेरा नाम उसमें बुचिया है। मैं, मेरी जल्दी से बाल विवाह हो जाती है, लेकिन मुझे बाल विवाह करने का मन नहीं था। उसके बाद कुछ ही सालों बाद मेरे पति मर जाता है। उसके बाद मेरे पास सिर्फ मेरा, मैं और मेरा बच्चा बचता है। फिर मैं एक बार एक मृदंगिया को देखती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। मैं उसके बाद विधवा बन जाती हूँ, लेकिन एक समाज का डर जो अंदर बैठा हुआ था उसे मैं मिटा नहीं पा रही थी, और उसी डर ने एक दिन मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया।
0: इसका मतलब है कि एक सोशल मैसेज आप नाटक के माध्यम से दे रही है। कितना अच्छा लगता है आपको ये एक्टिंग करना, इस तरह के मंच पे आना, कितना अच्छा लगता है?
1: हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगता है कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास।
0: थैंक यू बेटा हमसे बात करने के लिए।
1: वेलकम।
0: समर कैंप की बात कर रहे हैं तो अलग अलग रंग हमें देखने को मिल रहे हैं अपनी ही संस्कृति के। अब हमारे साथ शुभम है और ये कथक पे सिखा रही है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे है। पहले तो मैम ये बताएं कि कैसा लग रहा है जब से समर कैंप की शुरुआत हुई, आप लोग प्रशिक्षक के तौर पर आई और इतने सारे बच्चे आ रहे हैं?
2: बहुत खुशी हो रही है कि लोग क्लासिकल डांस फॉर्म को वैल्यू कर रहे हैं और आ रहे हैं, इतनी सुबह सुबह आते हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं ये कैंप अटेंड करने के लिए, सीखने के लिए, तो हमें बहुत खुशी हो रही है।
0: सो ये एक इनिशिएटिव जो झारखंड गवर्नमेंट का है, जो हर साल होता है और इस बार भी इतना बेहतरीन ढंग से हुआ, ये इसको आप लोग कैसे देखती हैं?
2: ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट इतना अच्छा स्टेप लेकर के आगे बढ़ रही है और ना सिर्फ सोचा है बल्कि प्रैक्टिकली इसको कर रहे हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट कि ये बहुत अच्छी कोशिश है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, रियली अप्रिशिएट।
0: सो लाइफ में अगर मैं एक डांस टीचर के तौर पे आपको देखूं, सो डांस किस तरीके से हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है, या आप इसे कैसे देखती हैं, क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए?
2: एक तो बच्चों का व्यक्तित्व पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत काम करता है, दूसरा कॉन्फिडेंस देता है। जो भी बच्चे डांस से रिलेटेड है, आप स्टेज फियर उनका ख़त्म होता है, स्टेज फियर ख़त्म होगा परफॉर्मेंसेस करके, तो वो कहीं पे भी वो हेजिटेट नहीं करेंगे, अपनी बात रख सकेंगे, एक कॉन्फिडेंस उनमें आता है। और दूसरी बात कि पढ़ाई में भी जो उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बहुत इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ भी कथक में भी हम लोग बहुत सारी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, उसमें बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ के साथ साथ इनकी बाकी एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई हो या और भी एक्टिविटीज़ जो ये लोग करेंगे उसमें भी इनको काफ़ी हेल्प होगा। एंड प्लस फिजिकल एक्टिविटी है तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, उनका पॉस्चर्स, वो सब ठीक तो होगा ही।
0: चलिए बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे बात किया, मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने का, थैंक यू सो मच।
0: और अब समर कैंप की इसी विधा की एक स्टूडेंट हमारे साथ में, क्या नाम है आपका?
3: रश्मिता।
0: रश्मिता किस क्लास में हो?
3: मैं तो अभी 10th में हूँ।
0: 10th में हो, पहले तो बताओ समर कैंप ज्वाइन जब से किए आ रहे हो कैसा लग रहा है?
3: फर्स्ट डे से बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, जैसे कि मुझे सबसे पहले पता चला मैं कथक में गई हूँ, मुझे पता नहीं था ये बात, मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था मैं कहाँ जाऊँगी। उसके बाद मैम से मिली, मैम बहुत अच्छी है, हम लोग से पहले बात की, उसके बाद फिर हम लोग को एक एक करके स्टेप सिखाया, और फिर धीरे धीरे पता चला कि कथक होता क्या है। कथक एक्चुअली होता है एक कहानी होता है जिसको डांस की तरह हम लोग परफॉर्म करते हैं।
0: पहले आप नहीं सीख रहे थे, अभी समर कैंप में आके ही कथक की शुरुआत की हो?
3: हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा।
0: तो अच्छा सा एक्सपीरियंस रह रहा है, लोगों से इंटरेक्शन भी होता है?
3: हाँ, बहुत होता है।
0: दोस्त बने आप?
3: बहुत बने, जितने लोग हैं सब मेरे दोस्त हैं, सब आके बात करते, बहुत अच्छा है सब।
0: सो आप जब यहाँ पे आए कैंप में पहली बार, आप डांस में आए, क्या एक फर्क पड़ रहा है आपकी पर्सनैलिटी पे, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या कुछ सीखने को मिला?
3: सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि हमें 15 दिन में सीखना है और स्टेज में जाके उसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, उसके बाद फिर एक अलग सा अंदाज मिल रहा है कि कैसे एक्सप्रेशंस आता है, हाथ का पोस्चर कैसा जाता है, फिर एक होता है तत्कार, उसको किस तरह से हम लोग को करना है। करना है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला।
0: तो एंजॉय कर रहे हो समर कैंप को?
3: हाँ, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, 15 दिन मतलब बहुत सही रहा हम लोग।
0: बहुत बहुत शुक्रिया रश्मिका। और हमारे साथ अब अंजलि चक्रवर्ती है और ये प्रशिक्षण दे रही है आर्ट एंड क्राफ्ट में। यहाँ भी बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। पहले तो आप बताए कि आप भी एक आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक के तौर पे क्या कुछ एक्सपीरियंस आ रहा है इस समर कैंप का?
4: ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ बच्चों के साथ करके। मेरा एक्चुअली मोटो है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है जो हम लोग थ्रो कर देते हैं, जिसका उसको रिसाइकलिंग करे, रीयूज करे और उसी से होम डेकोर बना दे, कुछ जो यूज करने वाले चीज है, यूजफुल थिंग्स उसमें बना दे। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग प्लास्टिक के बॉटल से नेस्ट, अभी बर्ड्स के लिए क्योंकि पेड़ कट जा रहा तो नेस्ट है नहीं, तो अब हम लोग नेस्ट बनाना सिखा रहे हैं। न्यूज़पेपर जो हम लोग थ्रो कर देते हैं रद्दी में, हम लोग उससे सारा सामान होम डेकोर बना रहे हैं। आपका डिफरेंट बड़े बड़े श्वान्स बना रहे हैं, देन आपका बॉटल आर्ट करवा रहे हैं, पेपर बैग्स से नो टू प्लास्टिक्स, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द पेपर बैग्स। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग आइए और देखिए।
0: बच्चों में क्या इंटरेस्ट नजर आ रहा है? और ये जो एक 26 तारीख से शुरू हुआ और अब अंतिम चरण में कल परफॉर्मेंस होने वाला है, सो कितना चेंजेस देखे बच्चों में, किस तरह का इंटरेस्ट देखे?
4: बहुत चेंजेस है, बहुत चेंजेस। बच्चे बहुत एक्साइटेड है क्योंकि एक वेस्ट चीज जिसको डस्टबिन में हम लोग फेंक देते हैं, उससे वो लोग एक अच्छे अच्छे चीजें बना दे रहे हैं, जिससे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर लोग देखने आ रहे हैं। ये एक अलग ही स्पॉटलाइट का जगह है जहाँ शो स्टॉपर बोल सकते हैं कि सभी लोग आकर एक बार जरूर रुकते हैं यहाँ पे।
0: ये जो इनिशिएटिव है झारखंड गवर्नमेंट का, सो इस इनिशिएटिव को आप लोग कैसे देखते हैं?
4: ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर वर्ग के बच्चे यहाँ आकर के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे आ रहे हैं या फिर नीचे लेवल वाले बच्चे नहीं आ पा रहे, मिडिल क्लास के फैमिली, सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको इतना अच्छा से ध्यान दिया जा रहा है। इवन टीचर्स लोग को भी बहुत अच्छे से केयर, बहुत रिस्पेक्टफुली यहाँ पे आकर हम लोग करवा रहे हैं। बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड है, सब लोग एक ही स्तर पे आकर के कर रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट यही है क्योंकि सब इक्वली लर्न कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अंजलि जी। एंड एक शिक्षक के तौर पे आखिरी सवाल, आपके लिए भी एक बहुत अच्छा ये अनुभव है?
4: बहुत अच्छा अनुभव है क्योंकि जब बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं एक बिल्कुल फेंका हुआ चीज से अगर कुछ बना पाते हैं, कुछ एक लोग उसके आकर तारीफ कर रहे हैं, देखने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। अभी एग्जीबिशन शुरू नहीं हुआ बट भीड़ लगने शुरू हो गई है, तो इससे ज्यादा गर्व की बात कुछ और हो नहीं सकती है। मेरे लिए तो यही है,
0: यानी कि ये जो 26 से लेके 11 तारीख तक ये बच्चे सीखे, अब उसका एग्जीबिशन भी होगा और लोग इसे देखेंगे भी।
4: बिल्कुल बिल्कुल, लोग आ के देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, इससे बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा, आगे फ्यूचर में वो लोग करेंगे। हम लोग का ये है कि मोटो की सिर्फ ये 15 दिन के लिए नहीं, ये लोग साल भर इसको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अपने कोर्स वाले बुक का भी बना सकते हैं। ये लोग को बेसिक पूरा नॉलेज मैंने इनपुट कर दिया जितना मिस से हो पाया।
0: एक जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं, आपको क्या लगता है आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे जिंदगी में क्या चेंजेस लाता है?
4: ये क्रिएटिविटी है, सबसे पहले तो बच्चों को स्मार्ट, ये जो आजकल फोन के लत है इससे दूर करता है। बच्चे अपना हॉबीज इसको अगर इंटरेस्ट में ले लेते हैं तो जो भी खाली टाइम रहता है उसमें स्ट्रेस फ्री लाइफ करते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई का प्रेशर और ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ये आपका आर्ट एंड क्राफ्ट जो है क्रिएटिविटी, कितना हम लोग क्रिएटिव वर्क्स कर सकते हैं उसमें, अपने आप को उसमें डाल सकते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे जो भी बच्चे हैं इतने इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं कि आई होप कि वो लोग थ्रू आउट द ईयर इसको कंटिन्यू रखेंगे, इतना वो लोग के अंदर में आ गया है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
4: थैंक यू सो मच।
0: अब कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट से हमारे साथ में, क्या नाम है तुम्हारा?
5: इशिका कुमारी।
0: इशिका, आपका?
5: श्रेया।
0: और आपका?
6: तनुश्री देव।
0: क्या कुछ सीखने को मिला जब समर कैंप में आए, क्या कुछ सीखने को मिला?
6: वी लर्नड अ लॉट ऑफ टेक्निक्स दैट वी डोंट नो, ऑल्सो मैम इज वेरी स्वीट, शी टॉक वेरी, शी इज वेरी फ्रेंडली टाइप्स।
0: क्या कुछ सीखे?
6: मतलब ऐसा चीज सीखे जो कि हम लोग को पहले पता भी नहीं था, ऐसा टेक्निक और ये सब, और मैम इतना अच्छे से सिखाई और इतना अच्छे से बताई इन मतलब सारे दिनों में, मतलब इतना कुछ सीखने को मिला जो कि मतलब अभी तक नहीं जानता।
0: क्या बनाए प्रैक्टिकली यहाँ पे?
6: प्रैक्टिकली हम लोग मतलब रूम डेकोर एंड ये सब के लिए बहुत सारा चीज बनाए हैं, और हम लोग न्यूज़पेपर और वेस्ट मटेरियल का बहुत अच्छा यूज करके हम लोग बहुत सारा चीज बनाए।
0: एंजॉय किए यहाँ पे?
6: इतना मतलब बहुत एंजॉय किया, लेकिन इतना मजा आया
7: दोस्तों के साथ मिलकर बनाने में,
6: यहाँ पे हमारे दोस्त बने हैं ना, बहुत मजा आया।
0: किस तरह का एक्सपीरियंस रहा समर कैंप जब आए, क्या एक फर्क पड़ा?
5: बहुत मज़ा आया. वी आर वेरी प्रिविलेज दैट हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिला, हम लोग यहाँ पे आए, न्यू फ्रेंड्स बनाए, ये अपॉर्चुनिटी मिला हम लोग को, बहुत खुशी होता है अंदर से. एंड
0: ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है झारखंड गवर्नमेंट का कि सभी बच्चों के लिए बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगना है, इक्वली आके सब कुछ सीख रहे हैं.
5: यस ऑफ कोर्स, ये इतना अच्छा मौका है, हम लोग सब एकदम साथ में बैठ के कुछ नया बनाते हैं, वो भी वेस्ट आइटम से. और ज़्यादा हम लोग का मोटिव यही रहता है कि हम लोग वेस्ट आइटम को यूज़ करें, ज़्यादातर उसी को यूज़ करके हम लोग कुछ नया बनाए. स्पेशली हम लोग 3D बनाते हैं, हम लोग एक 3D स्वान बनाए हैं, वो हम लोगों को सबसे सुंदर लगता है.
0: चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू हमसे बात करने के लिए.
5: थैंक यू, वेलकम.
0: क्या नाम है आपका?
8: मेरा नाम शाम्भवी है.
0: शाम्भवी, क्या कुछ सीखे यहाँ पे आके?
8: हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ सीखे हैं. हम लोग जो पहले हम लोग को नहीं आता था वो हम लोग यहाँ आकर बहुत कुछ सीखे, जैसे कि क्ले कैसे बनाते हैं. जो इंसान बहुत गरीब है वो जाके खरीद तो नहीं ना सकता बाहर से, तो हम लोग वही पेपर मैशेस से क्ले बनाना सीखे हैं यहाँ पे.
0: समर कैंप में आए, मजा आया क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे आए?
8: हाँ, हम लोग को बहुत मजा आया, अलग अलग फ्रेंड्स बनाने में बहुत मजा आया.
0: तो समर एंजॉय किए समर हॉलीडे को?
8: हाँ, हम लोग बहुत एंजॉय किए.
0: उनका क्या नाम है?
9: निष्ठा से.
0: निष्ठा, आप यहाँ पे क्या सीखे?
9: मैंने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक सीखे जिससे हम लोग अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, और हम लोग इससे बहुत सारी चीजों को
0: घर को डेकोर कर सकते हैं.
9: हम डेकोर कर.
0: किस क्लास में हो? 5 में. एंजॉय किए यहाँ पे आके? हॉलीडे अच्छे से मनाए अपना? क्या इंटरेस्ट क्या रखते हो आगे के आर्ट एंड क्राफ्ट में? और भी बहुत कुछ सीखना है?
9: हाँ, और भी बहुत कुछ सीखना है. मेरा पैशन है आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना.
0: वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा बात करने के लिए.
9: थैंक यू.
0: और अब क्योंकि हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं, और बिना योग साधना मेडिटेशन के कैसे हमारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं? मैम, आपका नाम क्या है?
10: पूजा तिवारी.
0: तो पूजा मैम, पहले तो आप भी बताएं कि एज अ योगा टीचर कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे समर कैंप का?
10: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आजकल घर घर तक योगा पहुँच गया है और सभी लोग योगा करना चाहते हैं और योगा के फायदे को भी समझ रहे हैं.
0: कितना जरूरी आप मानती हैं, जिस तरह से आज लाइफ में हम लोग स्ट्रेस देख रहे हैं उसमें योगा कितना बड़ा रोल निभा रहा है?
10: बहुत जरूरी है. योगा अभ्यास के बिना अब जीवन संभव नहीं है. बीमारियां बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं, खासकर मानसिक बीमारियां. इससे बचाव के लिए योगा अभ्यास से जुड़े रहें, मेडिटेशन करते रहें, योगा अभ्यास में लगे रहें.
0: कितना एक इंटरेस्ट देखिए बच्चों का समर कैंप में, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आके यहाँ पे आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं. और पेरेंट्स क्या कहते हैं जब बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो? और बच्चों का इंटरेस्ट कैसा आपने देखा?
10: बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, इन लोगों को मजा आता है, बॉडी फिटनेस होता है, सबको फिटनेस के लिए अवेयरनेस है, इसलिए बच्चे भी करना चाहते हैं और साथ में पेरेंट्स भी करना चाहते हैं.
0: बहुत बहुत शुक्रिया आप पूजा मैम हमसे बात करने के लिए.
10: ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी को.
0: क्या नाम है बेटा आपका?
11: सर सूर्यांश.
0: तो सूर्यांश, योग करके पहले तो बताओ कैसा लग रहा है?
11: अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है.
0: तो समर कैंप में शुरू से आ रहे हो?
11: नहीं, 2 दिन बाद से आए.
0: 2 दिन बाद से आए. कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखने को मिला?
11: सीखने को तो बहुत, मतलब अच्छा सा योगा आसन सीखने को मिला, फिटनेस मेरा सही रहेगा इसके कारण.
0: क्या नाम है बेटा आपका?
12: समीक्षा.
0: समीक्षा, आप भी योग में हो?
12: यस.
0: हाँ, मजा आ रहा है यहाँ पे?
12: हाँ.
0: क्या मजा आ रहा है? सुबह आ जाते हो?
12: हाँ, आ जाते.
0: क्या क्या सीखने को मिला यहाँ पे बताओ, क्या क्या सीखे?
12: यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे.
0: दोस्त बनाए यहाँ पे?
12: हाँ, मैंने बनाया.
0: कैसा रहा समर हॉलीडे?
12: अच्छा रहा,
0: बहुत अच्छा रहा.
12: हाँ.
0: चलो थैंक यू बेटा. तो बढ़ते कदम कार्यक्रम में आज हमने समर कैंप के सारे एक्टिविटीज को शामिल किया. जब झारखंड सरकार की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष ये समर कैंप लगाया जाता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है बच्चों के लिए. और एक समर कैंप की बात करते हैं, कोई पैसे नहीं लगने हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं, चाहे डांस की बात करें, चाहे पेंटिंग की बात करें, चाहे योग की बात करें, अलग चाहे नाटक की बात करें, तमाम विधाओं में बच्चों को इस 15 दिन की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है. और ये जो समर हॉलीडे बच्चों का होता है वो क्रिएटिविटी के साथ बढ़ता है. कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे नए मेहमान नए विषय के साथ. कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की. अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत. नमस्कार.
13: श्रोताओं, अभी आप बढ़ते कदम कार्यक्रम में सुन रहे थे. हमारी सांस्कृतिक कार्य निदेशालय पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद और युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित ऑड्री हाउस में समर कैंप पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे. विषय था अलग अलग विधाओं में समर कैंप में शामिल बच्चों से बातचीत और प्रशिक्षकों से भी बातचीत. और बातचीत कर रहे थे कमलेश कुमार मिश्रा, प्रस्तुति प्रभु शरण की थी. और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है. आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम जोहार रांची आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची। सभी दोस्तों को रेणु
1: और उषा जायसवाल का
0: नमस्कार जोहार। और उषा जी आपको भी नमस्कार जोहार।
1: आपको भी नमस्कार रेणु जी। और हम अपने सभी श्रोताओं को उनके इंतजार को खत्म करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं।
0: हाँ, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छा सुविचार से।
1: बिल्कुल।
0: संस्कृत में सुविचार है, पदे पदे च रत्नानी योजने रस कूपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात ये वसुंधरा कदम कदम पर अमूल्य रत्नों से भरी हुई है, लेकिन भाग्यहीन मनुष्य ये देख नहीं सकता।
1: और मनुष्य अपने आँख नाक कान और दिमाग खुला रखे तो हमारे चारों ओर बिखरे जीवन के अमूल्य रहस्य को पा सकता है, जान सकता है उसके बारे में। और ये ऐसा जीवन मंत्र है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के नए नए सोपान तक पहुंचाने का मार्ग खोलने में समर्थ है।
0: सच में जीवन की दिशा और दशा दोनों में ही सकारात्मक बदलाव और नजरिए की दरकार है। जीवन में आनंद का अमूल्य खजाना खुला हुआ है, तब भी हमारी नजर नहीं पड़ती।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: और रेणु जी, संदेश के बाद तो बस बहुत सारी बातें अब निकलने लगती हैं ना, क्योंकि ये कार्यक्रम ही है जोहार रांची, जो जानकारियों से भरा है और बहुत सारी बातें हम अपने श्रोताओं से करते भी हैं। और अभी मन कर रहा है कि थोड़े से मौसम के बारे में।
3: हाँ, तो सुबह से मौसम ऐसा था ना उषा जी कि काफ़ी बादल छाए हुए थे, लगता है अब बारिश होगी।
2: काले बादल छाए हुए थे सुबह सुबह, तो
3: अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं, बस बादल छाए रहे।
2: तो बस इसको कहते हैं ना, आंधी का असर है कि बहुत तेज आंधी, अगर हवा की रफ्तार तेज होगी तो वो सभी भाग ले गया बादल को, और जहां पर ले गए हैं वहां पर बारिश होगी, उन्हें आनंद आएगा बारिश का। चलिए, हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं। वैसे रांची समेत पूरे राज्य में बुधवार से मौसम में बदलाव संभव है, वो जो आज सुबह से ही दिखाई दे रहा है। और 15 से 17 जून तक झारखंड में संताल परगना के रास्ते मानसून के प्रवेश करने की संभावना है।
3: और मौसम विभाग के अनुसार ना, आज से कोडरमा, हजारीबाग को छोड़कर अन्य जिलों में बादल छाए रहने और वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है।
2: और जब इसी संभावना की ही हम बातें करते हैं तो इन जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है रेणु जी, और वहीं 11 को रांची, खूंटी, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी, बादल, वज्रपात और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसे ही देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 12 जून को भी बादल छाए रहेंगे और वज्रपात की तो बात ही ना कहें। जब बादल छाते हैं और इस महीने में वज्रपात होती है, आंधी तूफान आते ही हैं। कहने का मतलब ये है रेणु जी कि हम सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए, येलो अलर्ट नहीं, एवरी टाइम अलर्ट। कि जब भी बारिश की और तूफान की जब संभावनाएं नजर आए तो आकाश देखते ही पता चल जाता है। तो आप जब आंधी तूफान तेज हो तो पेड़ के नीचे न रहें, किसी पुराने घर के नीचे न रहें, अपने पशुधन को बचाए रखें और छोटे छोटे बच्चों को भी संभालें कि आंधी तूफान का समय है, बाहर नहीं निकलो।
3: हाँ, ऐसे भी अब प्री मानसून का आगाज
2: हो ही गया है,
3: हो ही गया है।
2: तो ये मानसून आते ही आते बहुत सारी सावधानियां हम सबको रखनी पड़ती है कि अपने को बच के रहना, अपने स्वास्थ्य को बचा के चलना है, खान पान पे ध्यान।
3: ऐसे में होता है ना कि घर से निकल रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो लगता है क्या ढोने के चक्कर में छाता नहीं ले जाएं,
2: लेकिन पानी क्यों ले जाएं। लेकिन बाहर जाएं तो आप छाता अपने साथ, बरसाती कुछ भी लेकर जाएं, और साथ ही साथ जब बारिश होने लगे ना तो हमेशा कहा जा रहा है ना कि पेड़ के नीचे ना रहे, जब वज्रपात की संभावना होती है तो गीले स्थानों पर ना रहे, अपने पशुधन को भी बचा कर रखे ताकि जान माल की हानि ना हो।
3: बस सावधानी के साथ,
2: बस सावधानी ही सतर्कता है, और इससे ही हम बचे तो इस मौसम का आनंद लेंगे। तो लेते हैं इस गीत के साथ आनंद।

0: सारी चीजें इस मौसम में मिलती है उसकी भी याद आ जाती है।
1: हाँ, अभी तो ये आम का दौर चल रहा है ना, ये मिठास,
0: लीची और इसकी मिठास है ना, और जामुन की। और ये हमारे शरीर के लिए भी कितना फायदेमंद है, क्योंकि भगवान ने समय समय पर, मौसम मौसम पर नए नए फलों को भी दिया है, ताकि इसका उपयोग कर हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन आम खाने से स्वस्थ थोड़ा थोड़ा बिगड़ भी जाता है ना, कि थोड़ा वजन बढ़ जाते हैं, जिन्हें शुगर है उन्हें इसे खाने पर रोक लग जाती है। और लेकिन आम की जो बात है ना, आम देखते ही मन को बस लुभाने लगता है कि ये कौन सा आम है जिसे हम खाएं। वैसे तो केसर की बात करें ना, तो केसर आम अभी भी देशों में भी काफी प्रचलित है। हाँ, और उसके बाद नंबर आ गया है अब आम्रपाली का।
1: हाँ,
0: ये भी विदेश में अपने परचम को लहराएगा। और इसके लिए हमारे सिमडेगा के जो किसान भाई हैं, उनकी जो मेहनत है और ग्रामीण परिवारों की जो तकदीर है, दोनों चमक रही है ना। और इस सीजन में सिमडेगा ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुल 81 टन आम विक्रय करके महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रखा है। और इसी सप्ताह आम की एक और खेप यूके के लिए और दूसरी खेप यूरोप के लिए भेजी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि घरेलू कारपोरेट बाजार को इस मतलब इस आम को पहुंचाने में हमारा जो मार्केटिंग है, सिस्टम है, वो कितना सफल साथ दे रहा है
1: और कितना ये मेहनत कर रहे हैं वो। हाँ, सिमडेगा के जो परिवार
0: किसान भाई हैं। तो देखो, मेहनत करने का जो फल है ना, वो हमें जरूर मिलता है। और जब विदेश में हमारे देश के और खास करके गांव के आम जाएंगे,
1: वो भी झारखंड सिमडेगा से,
0: हाँ, तो फिर ये सुनकर ही हमें बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसा लगता है कि हर एक चीज के लिए हमारे देश की पहचान बाहर में बन रही है और बनती भी रहे, ऐसा हम चाहेंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है मेहनत की। तो ये रही आम्रपाली का स्वाद, वहाँ भी मिलेगा और यहाँ के लोग तो इसके स्वाद पाते ही
1: पाते है,
0: है।
1: यहाँ तो कई तरह के और भी आम,
0: हाँ,
1: आते
0: और भी आम है, मालदा आम है, गुलाब केसर है, दशहरी है ना, लंगड़ा आम है, ये सब यहाँ की खूबसूरती है आम की और उसके स्वाद की। तो समय आने पर सभी लोग इसका आनंद तो उठाते ही है, अब विदेशों में भी इसका आनंद सभी लोग उठाएंगे। और इतना अच्छा लगता है ना, कि जो लोग मेहनत करते हैं और बाहर में इसका नाम होता है। और इसी मेहनत में एक और मतलब
1: 3 दिन का जो कृषि व्यापार मेला जो चल रहा है ना, वो 16 से शायद शुरू होने वाला है।
0: 16 से शुरू होंगे। लेकिन उसकी तैयारी भी अभी से होने लगती है ना, क्योंकि इसमें दूसरे राज्यों से भी करीब 50-60 के करीब डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। लोग अपने अपने राज्य के बारे में बताएंगे कि कैसे किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि भी आम की बात हुई, तो इसमें भी बहुत सारी परिचर्चा हुई होगी, बहुत सारी जानकारी लेकर बैठक हुई होगी, आगे बढ़े होंगे, तब इतना खूबसूरत आम मिल गए हैं और बाहर जा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से ये कृषि व्यापार मेला भी जब लगेगा, तो कोने कोने से नई नई तकनीक, नई नई जानकारी, कृषि उपकरण और इससे संबंधित कई तरह की बातें लोगों के बीच में आएंगी। और इसे अपना कर हमारे किसान भाई फिर से अपने किस्मत को आजमा के आगे बढ़ेंगे,
1: और कृषि वैज्ञानिक भी इसमें हिस्सा लेंगे
0: जानकारी देने के लिए।
1: और झारखंड के किसानों को नई तकनीकी की जानकारी और कृषि उपकरण के इससे संबंधित क्षेत्र में बहुत सारी जानकारी इसे मिलेगी, काम करने की बात काफी होगी।
0: हाँ, तो इसी के स्टॉल भी लगेंगे मेला परिसर में, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। और आपको पता है रेणु जी, कि जब कृषि व्यापार का जब मेला लगता है ना, तो मैं भी जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे भी खेतीबाड़ी नहीं, लेकिन कुछ फूलों की खेती, कुछ किचन गार्डन की खेती का बहुत शौक है। तो वहाँ पर ऐसा लगता है ना कि हमने भी एक ही पेड़ लगाया है आम का, और वो भी आम्रपाली की, तो उसमें क्या खासियत और हो सकती है जिससे आम ज़्यादा आए। तो थोड़ी जानकारी लेने के लिए मैं भी जरूर जाती हूँ मेले, और आप भी जाएं।
1: ये तो होता ही है ना कि मेले में तरह तरह की
0: वैरायटी मिलती है, और जो आपको हर समय नहीं मिलती है वो मेले में मिलती है, क्योंकि कुछ समय के लिए ही वहाँ पर लोग आते हैं और अपने अपने विचार साझा करते हैं, जानकारी देते हैं। तो इससे अछूता कभी नहीं होना चाहिए,
1: मेला का अलग ही आनंद ही है।
0: हाँ हाँ, और जब इस तरह के कुछ गीत जो आप सुनवाने वाली है ना, अगर वो हो जाए ना, तो लगता है कि बस कल ही मेला जाना चाहिए।

0: रेणु जी, बहुत सारी जानकारी मिलती है मेले में जाने से, लेकिन पता है कि अगर पन्ने पलटते हैं तो उससे भी बहुत जानकारी हमें मिलती है।
1: हाँ।
0: तो अपनी यादों के पन्ने पलटिए तो आपको जानकारी मिलेगी, और कुछ किताबों के पन्ने पलटिए तो इतिहास में भी बहुत कुछ लिखा है।
1: हाँ।
0: तो आज हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं आज क्या विशेष है। आज के दिन इतिहास में क्रिकेट से लेकर विज्ञान तक की कई घटनाएं दर्ज हैं। 1972 ईस्वी में मुंबई के मडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ था, यानी इसे समुद्र में उतारा गया था। 1983 ईस्वी में ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर पुनः प्रधानमंत्री बनी थी। 2002 में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य सम्मेलन रोम में संपन्न हुआ था।
1: और 2005 में भारत और श्रीलंका में शिक्षा का सामुदायिक विकास में संबंध 2

0: समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और 2008 में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत स्पेस सेल की घोषणा की थी और 2008 में ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से लगे रहो मुन्ना भाई का सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था।
1: और जन्म की बात करते हैं तो 1931 में M.S. गोपाल कृष्णन का जन्म हुआ था जो प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। 1955 में भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का जन्म हुआ था और 1958 में आज ही के दिन साहित्यकार अनूप सेठी का जन्म हुआ था
0: और 1981 ईस्वी में देवेंद्र झाझरिया का जन्म हुआ जो भारत के एथलीट हैं। 1921 ईस्वी में शिवदीन राम जोशी का जन्म हुआ जो अपने समय के जाने माने कवि थे और 1888 ईस्वी में क्रांतिकारी बलराज भल्ला का जन्म हुआ
1: और 1890 में गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म हुआ जो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक दामोदर मेनन का भी जन्म हुआ था आज ही के दिन 1906 ईस्वी में।
0: और आज ही के दिन रूप कुमार राठौर का जन्म 1959 ईस्वी में हुआ। आज ही के दिन वे गायक और संगीतकार हैं। उन्हें बॉर्डर फिल्म के संदेशे आते हैं, रब ने बना दी जोड़ी के में तुझसे रब दिखता है और अनवर मौला मेरे मौला जैसे गानों के लिए जाना जाता है।
1: और उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमिया, उड़िया, नेपाली, भोजपुरी और कन्नड़ फिल्मों में कई गाने गाए हैं। तो हमें लगता है कि एक प्रचलित गाना जो बॉर्डर फिल्म का है वो हम अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं।

0: रेणु जी, ये तो थे जन्म की बातें और हम नमन करते हैं उन्हें जो आज के दिन अलविदा हुए थे। 1957 में भाई वीर सिंह का निधन हुआ था, जो पंजाबी काव्य और गद्य के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। 1987 ईस्वी में जीवन का निधन हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के अभिनेता थे। उनका असली नाम ओंकार नाथ धर था।
1: उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक की भूमिका के लिए काफी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 1950 के दशक की फिल्मों में देवर्षि नारद मुनि की भूमिका 49 बार निभाई थी। अपने चेहरे की बनावट को हीरो के अनुकूल न मानकर उन्होंने खलनायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। जॉन मेरा नाम, धर्मवीर, अमर अकबर एंथोनी, लवारिस जैसी फिल्मों में उनके खलनायक के किरदार

0: बहुत प्रसिद्ध हुए।
1: और आप हैं 2019 में आरवी जानकी रमन का निधन आज ही के दिन हुआ था। 2019 में गिरीश कर्नाड का निधन हुआ था, जो कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता थे। नाटक नागमंडल, हे वदन, तुगलक और ययाति उनके प्रसिद्ध नाटक थे। कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में दोनों इनकी लेखनी समानाधिकार से चलती थी।
0: और एक अभिनेता और कथा के लेखक के रूप में उनकी शुरुआत कन्नड़ फिल्म संस्कारा से हुई, जिसे पहला राष्ट्रपति स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला था। निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म वंशवृक्ष, जो 1971 में आई थी, इसके अलावा उन्होंने निशांत और मंथन जैसी क्लासिक हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया। भारतीय टेलीविजन पर मार्गुडी डेज में स्वामी के पिता की उनकी भूमिका विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। साहित्य और कला जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1988 ईस्वी में मिला था और उन्हें कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
1: और गिरीश कर्नाड द्वारा जो निर्देशित फिल्में थीं, स्वामी, उत्सव, अग्निवर्षा, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, इकबाल, सुर संगम और मेरी जंग, और भी ऐसी कई फिल्में हैं, शिवाय, हे राम, पिपली लाइव, चाइना गेट और पुकार। मेरी जंग फिल्म से चलिए हम अपने श्रोताओं को ये प्यारा सा गाना सुनवाते हैं।

0: रेनू जी, जब हम बातें करते हैं ना कि ज़िंदगी की, तो ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ क्या है हमारी ज़िंदगी में पता है?
1: हाँ, आँखें।
0: और ये आँखों की जब बात करते हैं ना, तो कितने सारे गीत, कितनी सारी बातें आँखों से जुड़ी होती है। और हर साल इन्हीं आँखों को लेकर 10 जून यानी आज के दिन विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आँखें यानी कॉर्निया दान करने के लिए प्रोत्साहित करना और दृष्टिहीनता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सबसे पहले बताते हैं नेत्रदान क्या है। ये नेत्रदान में पूरी आँख नहीं बल्कि केवल कॉर्निया यानी पुतली का जो पारदर्शी हिस्सा होता है ना, उसका दान होता है और उसे ही प्रत्यारोपित किया जाता है दूसरे के आँखों में। और दान की गई कॉर्निया से किसी कॉर्नियल दृष्टिहीन व्यक्ति यदि अपनी पुतली खराब हो गई है उसकी, तो उसे नई रोशनी मिलती है। और लोगों को मन में ख्याल आते हैं कि नेत्रदान कैसे करें, कोई जीवित व्यक्ति कैसे दान करे, लेकिन इसके लिए जीवित में दान करने की कोई जरूरत नहीं है।
1: बस कोई भी व्यक्ति जीवित रहते हुए किसी भी पंजीकृत आई बैंक में भरकर नेत्रदान का संकल्प ले सकता है और दाता की मृत्यु के बाद ना 4 से 6 घंटे के भीतर नजदीकी नेत्र बैंक को सूचित करना आवश्यक है।
0: तो इसके लिए ना रेणु जी, पहले अपने घर परिवार को जरूर इसकी जानकारी दे देनी चाहिए कि कभी अकस्मात अगर जिंदगी खत्म हो गई तो उनके नेत्रदान किए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है
1: वहाँ हॉस्पिटल में जाके खबर कर दें।
0: हाँ, मृत्यु के 1-2 घंटे के अंदर ही तुरंत करें ताकि वो भी आके दूसरे को प्रत्यारोपित कर सकते हैं।
1: हाँ, ताकि वो मतलब घर आके 1-2 घंटे भी नहीं, उषा जी, डॉक्टर तो घर आके अस्पताल में मात्र 15 से 20 मिनट में आँख का कॉर्निया निकाल लेते हैं। हाँ, जिससे चेहरे की सुंदरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग डरते हैं कि हम दान करेंगे
0: विकृत हो जाएंगे,
1: लेकिन वैसा कुछ नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति।
0: मुझे तो ऐसा लगता है ना रेणु जी कि मरने के बाद हमारे चेहरे की खूबसूरती जाए या ना जाए, हमारे जो कर्म है ना उसकी खूबसूरती बची रहे है ना।
1: हाँ, और ये नेत्रदान जो है ना कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में किसी भी ब्लड ग्रुप का कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ना कि अपने परिवार के सदस्य को, जैसा आप बताएं भी, कि इच्छा के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।
0: और इच्छा भी है और रजिस्ट्रेशन हमने करवा लिया है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए
1: ताकि आई बैंक को सूचित कर सके,
0: तुरंत सूचित कर सके।
1: और ये मधुमेह है, जो उच्च रक्तचाप है, मोतियाबिंद का इलाज करा चुके लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं।
0: और नेत्रदान पता है ये महान और निस्वार्थ कार्य है जो मरने के बाद किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के जीवन में प्रकाश भर सकता है और एक सुरक्षित प्रक्रिया है। और पता है जब आप नेत्रदान करते हैं तो आपके बाद भी आप जिंदा रहते हैं अपनी आँखों के द्वारा।
1: हाँ, दूसरा कोई देख सकता है। ये जो जिंदगी है ना, उसको संभाल कर रखना है क्योंकि बहुत अनमोल है।
0: हाँ,
1: अपनी आंखों के द्वारा, किसी अंग के प्रत्यारोपण के द्वारा
0: छोटी सी जिंदगी को बचा कर रखिए। और एक प्यारा सा गीत भी सुनते चलिए।

0: उषा जी आज तो और भी दिवस है।
1: हाँ हाँ, तो चलिए चलते चलते जल्दी जल्दी हाँ। इन दिवस के बारे में भी जानकारी हाँ। अपने श्रोताओं को दें कि आज यानी 10 जून को राष्ट्रीय बॉल पॉइंट पेन दिवस हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। यह दिन लेखन में क्रांति लाने वाले इस उपकरण और 10 जून 1943 को बिटो बंधुओं द्वारा इसके पेटेंट दाखिल किए जाने की याद दिलाता है।
0: ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता वो याद है ना, कलम की ताकत को जो वो बताते हुए जो लिखते हैं दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव के तन में शक्ति क्या विजय अपार, कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाले वाली।
1: और दिल की ये दिल में ही नहीं सिर्फ दिमाग में भी आग लगाने वाली आज मैसेज का ज़माना है। और ये पेन पता नहीं कहाँ गुम होता जा रहा है, लेकिन पहले खत कलम से लिखकर ही भेजा जाता था, अपनी भाषाओं में अपने दिल की भावनाओं को उसमें उकेरा जाता था और ये उसी में समाहित होती थी। लेकिन पता है ना रेणु जी कि कलम जो है ना उसकी ताकत हर दिन रहेगी और हमेशा रहेगी, क्योंकि जो बोलते हैं ना जो काम तलवार ना करे वो कलम कर देता है
0: एकदम।
1: तो कलम में वो शक्ति है, बस वो कलम ही नहीं है, वो समझ जाइए तो उससे सब कुछ विनाश भी हो सकता है और उससे सब कुछ बच भी सकता है ना। तो इसलिए कलम की ताकत को पीछा और कमजोर मत समझिएगा।
0: आप बचाने की बात बोली तो एक और ख्याल आया कि भाई आज देखिए हम लोग को पानी बचाने की जरूरत है।
1: भाई वो तो जिंदगी बचाने की बात आप कर रही हैं, वो पानी नहीं है वो जिंदगी है, क्योंकि आज जल का जो जितनी जल संकट हो रहा

0: हैं। और जैसा कि आज हमने भी पेपर में भी पढ़ा कि 200 फीट नीचे पानी चला गया है भूगर्भ जल का स्तर, तो समझ जाइए कि अगर ऐसे तेजी से पानी अगर नीचे चला जाएगा तो आने वाले समय में गर्मी तो क्या, हम जाड़े में भी पानी की तकलीफ को झेलने के लिए हमें पड़ सकता है। इसीलिए हमें जल को बचाना है। जल है तो कल है और जल है तो जीवन है, इसीलिए आज बचाएंगे तो कल पाएंगे, आज बहाएंगे तो कल पछताएंगे। वाह, कितनी अच्छी बात है। तो जल संरक्षण ही बस एक विकल्प है। और भूगर्भ जल के अत्यधिक दोहन के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। और आज ही के दिन विश्व भूगर्भ जल दिवस भी हम सभी मना रहे हैं। तो इसे मनाना नहीं है, इसे संकल्प लेना है कि इस धरा को, इस जीवन को और इस मानव जीवन को बचाने के लिए हमें जल संरक्षण करना होगा। अगर हम जो बहते पानी का अगर फिर से जमीन पर उसको मतलब बचाने के लिए उपाय करें, सोकपिट बनाएं, या फिर जल को बरसात के पानी को जो अगर हम बचा लेते हैं तो वो जमीन में सोख लेगा और नीचे का जो जल स्तर है जो गिर रहा है वो फिर से आ जाएगा और हमें पानी की कमी नहीं होगी।
1: और लोगों को ये समझना भी होगा कि पृथ्वी के नीचे का अदृश्य जल जो है हमारी पारिस्थितिकी और कृषि का आधार वही है। हम सब जागरूक होंगे, भूमिगत जल के महत्व और उसके दोहन को संरक्षण के प्रति सबको जागरूक भी करना होगा। हम तो खुद जागरूक हैं, दूसरे को भी करें। तो कहते भी है ना, जल है तो कल है, जल बचाओ
0: तो जीवन बचाओ।
1: बूंद बूंद से सागर बनता है, पानी बचाना हमारा कर्तव्य है।
0: भाई देखिए, जल की जितनी भी बातें करें हम कम है, क्योंकि जल हमारी प्रकृति की अमूल्य देन है और वो जल स्तर के रूप में धरोहर में है, उसे हमें बचाना है किसी भी परिस्थिति में।
1: क्योंकि पीने योग्य पानी भी तो मुख्य स्रोत भूगर्भ जल ही है, पृथ्वी के उसके मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हर संभव योगदान हम लोग को देना है। और आज हम लोग को संकल्प लेना है कि पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे
0: और पेड़ पौधे भी लगाएं, क्योंकि जितना पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो पानी को लेकर जमीन में अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करेंगे।
1: जैसे बारिश के महीने में लगाएंगे तो पौधों को प्राकृतिक रूप से जो पानी मिलेगी
0: और जल स्तर भी बढ़ेगा उससे। और ऐसा भी है ना कि वर्षा का जल को भी हम चाहे तो बचा कर रख सकते हैं और उसका भी उपयोग आप बहुत सारे अपने मतलब की दिनचर्या के काम में उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ
1: इतिहास
0: जल है तो कल
1: इतिहास का पन्ना यही पलट देते हैं बंद करते हैं।
0: और आज के बहुत दिन सारी जानकारी भी रेणु जी ऐसी है। तो फिर जब कल से, कल की बात आप कर रहे हैं तो हम ये भी बता दें कि कल से शुरू होने वाला है फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ और अर्जेंटीना खिताब बचाने के लिए उतरेगा फीफा विश्व कप स्पेशल में। और कल से जब शुरू होगा 39 दिन के लिए दुनिया की रफ्तार थमने वाली है, दिल की धड़कन बढ़ने वाली है, फुटबॉल की हर किक के साथ ये धड़केगी। खेल के इतिहास में सबसे बड़े भव्य और सबसे रोमांचक फीफा विश्व कप का कल से आगाज होने वाला है। और कल की बात छोड़िए, पहले आज
1: की बात भाई कि ये तो बहुत ही तो गौरव की बात है।
0: गौरव की बात है कि हमारे झारखंड क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय आज से शुरू होने जा रहा है। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित पहली झारखंड T20 क्रिकेट लीग का भव्य आगाज आज JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा।
1: और इसका माही करेंगे झारखंड T20 लीग का आगाज और कनिका कपूर के लाइव कॉन्सर्ट से गुलजार होगी ओपनिंग सेरेमनी। दर्शकों का प्रवेश इसमें निशुल्क है।
0: और तो फिर जाकर इसका आप मतलब आनंद उठाइए। 2 सप्ताह तक क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच, चौके, छक्के और कड़े मुकाबलों का भरपूर मनोरंजन मिलेगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर आकर अपने मुकाबलों को देखकर अपने खेल के जो प्यास है उसे आप बुझा सकते हैं।
1: और हर दिन खेले जाएंगे 2 मुकाबले। मतलब लीग चरण में प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर 12 बजे से, दूसरा शाम 7:30 बजे से। और 22 जून को दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि 23 जून को रात 7:30 बजे फाइनल के साथ चैंपियन टीम का फैसला होगा। तो इसी तरह खुलेंगे
0: अपने खेल के द्वार खुलेंगे, खेल प्रेमियों के आशाओं के द्वार खुलेंगे और हम चाहते हैं कि एक प्यारा सा गीत का द्वार आप खोल दें।

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ आज का जो हरा जी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत उषा जायसवाल और
1: रेणु को। नमस्कार जोहार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आपकी पसंद बस थोड़ी ही देर में।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए, देश पर मिटे।

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म अभिमान के इस गीत से। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किए एचटी परवन ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सीसीएल बड़काकाना से रविंद्र वर्मा, रेणु वर्मा, रिया, उर्वशी, अमन, बेबी, सोना बाबू, आर के वर्मा। कोडू से आप हैं मोहम्मद ब्यास, भाई इरशाद, सरफाज बाबू, जुनाब आलम और रोशिनी रामा। बड़का काना से भानु पासवान, अशोक पासवान, सुधा, मंजू, रेखा, सुनीता और पूनम। आइए आप सबके पसंद से सुनते हैं फिल्म अभिमान से ये गाना।

कार्यक्रम का अगला नगमा आप श्रोताओं के नाम जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शमाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज। ग्राम ओहद से योगेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, रामेंद्र कुमार सिन्हा, सुभाष चंद्र कुमार, डॉक्टर ब्रजकिशोर महतो, सावित्री देवी, गायत्री देवी, सरोज देवी, अक्षय, अभिजीत, रुवि, निधि, नेहा और उनके सारे दोस्त। सिदरौल से आप हैं दीप, संदीप, मधु, मालती, संजय, सुमित, समीर, सुमन, अलका, मनीष, अनीमा, अनीता, पूनम, ज्योति, संध्या, आरती, नीलिमा, अंजलि, पारुल, संगीता, पीयूष, अतुल, दीपक और ढेरों साथी। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके से ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शब्दों में पिरोया आनंद बख्शी ने, संगीतवत किया एसटी परवन ने।

अगला गाना सुनते हैं फिल्म मिली से। आवाज लता मंगेशकर और साथियों की है। शब्द रचना योगेश के, धुन बनाई है एसटी बर्मन ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बड़का काना से अंजुम जमाल, टिंकू, मोहम्मद इकबाल, सहनाज इब्राहिमी, इकबाल राज, आसिफ बाबू, आसिफ इकबाल, मोहम्मद इकबाल मलिक, लोहाडी नामकुम से कृष्ण कुमार, राजकुमार, भुवनेश्वर, सुमित, बजरंगी, अरविंद, नकुल, अनिल, संतोष और सभी सदस्य, ग्राम और मांझी से ललित ठाकुर, अशोक पांडे, अनिल कुमार, ललन ठाकुर, मोहन वर्मा, सीताराम गोपी और जगेश्वर सिंह। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म मिली का ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा आप श्रोताओं के नाम। नरकोपी बाजार से फैजुल आलम, नौशाद आलम, खुर्शीद आलम, गुड़िया और पप्पू। ग्राम किरेगरी से पुवन कुमार गुप्ता, मुकेश गुप्ता, प्रवीण, बबली, जयंती, अजय कुमार गुप्ता, संध्या कुमारी, रमजान मियां सेठ, अली खान, मोकी कुमार, निक्की, प्रिंस, मौसमी और घर के सभी सदस्य। ग्राम मुरुबंदा से कृष्ण कुमार, मनोज कुमार, रीना देवी, पिंकी कुमारी, संजू कुमारी, मंजू कुमारी, सोनी सिंह, रीता, गीता, सीता और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम चटक से संदीप कुमार और परिवार के सभी सदस्य। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म मुस्कान से ये गाना। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है। शब्दों में पिरोया है समीर ने, संगीत पथ किया निखिल विनय ने।

इसी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं बहनों के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: बहनों, किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार मिटा देती है। तो आशा का दामन हमेशा थामे रहिए और रोज मिलते रहिए हमसे अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी के माध्यम से।
1: हाँ सखियो, आज के जो मुलाकात है इस सफर में, हम मुखातिब हैं आपसे दो सखियाँ, मैं महजबीन और हमारे संग है सुभाषिनी। तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: बहनों, कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, चाहे वो हमारे जीवन में हो या फिर मौसम में। जून का महीना है और गर्मी अपने चरम पर है ना
1: हाँ, सुभाषिनी, लेकिन साथ ही मानसून यानी बारिश की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। यानी कि हम कहें तो ऐसा लगता है ना कि अब बारिश होगी, अब गर्मी पड़ रही है, अब आंधी चल रही है। यह दोहरे मौसम का बदलाव शरीर के लिए और भी संवेदनशील होता है।
0: बिल्कुल सही। एक तरफ जहाँ चिलचिलाती धूप और उमस से शरीर को थकावट पहुंचती है, वहीं दूसरी तरफ अचानक होने वाली बारिश तापमान गिरा देती है। मौसम का ये उतार चढ़ाव हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है।
1: बहनों, बदलते मौसम और भीषण गर्मी के दौरान स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आप हाइड्रेट रहें और सही खान पान अपनाएं और धूप से अपना बचाव जरूर करें।
0: दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी तो जरूर पिए बहनों। सादे पानी के अलावा आप नींबू पानी या फिर ORS, छाछ, लस्सी या फिर नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं।
1: और अपने आहार में तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी जैसे यानी कि मौसमी फल या मौसमी सब्जी जरूर ले। पानी से भरपूर फलों का वो भी शामिल करें।
0: हाँ।
1: तला भुना मसालेदार जो सब ये होते हैं ना, चटपटे चीज।
0: हाँ।
1: और बासी खाना खाने से बचे। और यहाँ पे एक बात बताना जरूरी, हम समझते हैं कि ये आहार है आपके जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर गर्मी के मौसम के लिए।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और बाहर के जो कटे हुए फल या खुला हुआ पानी जो रहता है ना, उसको पीने से बचें, क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपड़े ही पहने ताकि शरीर को पर्याप्त हवा मिल सके।
1: हाँ बहनों, साथ में ये भी ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। और यदि अगर बहुत ज़रूरी काम है, बाहर जाना ज़रूरी है, तो छाता, धूप का चश्मा और टोपी का उपयोग ज़रूर करें। यानी कि आप अच्छी तरह से अपने आप को ढक लें, चाहे तो सनस्क्रीन का भी उपयोग कर सकते हैं। और ये भी बात ज़रूरी हम आपको बता देते हैं कि ये बीच में जो दोपहर की जो धूप पड़ती है ना, ये बहुत ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक होते हैं।
0: बिल्कुल, बदलते मौसम में वायरल और फ्लू का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए नियमित रूप से साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। AC से निकलकर अचानक धूप में ना निकले, क्योंकि अचानक तापमान में बदलाव से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है।
1: और बहनों, ये हम जो सारी बातें बता रहे हैं, गर्मी में आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से आपको पानी पीना है, इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। बच्चों और बुजुर्गों के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है ना, इसलिए उनका खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम में बदलाव से शरीर में वैसे ही थकान और कमज़ोरी महसूस होने लगती है। बहनों, मौसम का असर तो शरीर पर दिखता है, और इस पर अगर आप ध्यान नहीं दें तो आपको खुद से लगेगा कि हम बीमार से लग रहे हैं। ज़्यादा व्यायाम से बचें और सुबह शाम टहलिए ज़रूर, यानी कि आप अपनी बॉडी को अपने मौसम के अनुकूल बनाने की कोशिश जरूर करें।
0: और बहनों, गर्मी बहुत है, साथ ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। वर्तमान में सूर्य देव के तीखे तेवर ने आम जनजीवन को बेहाल कर रखा है, लेकिन इसी तपन के बीच राहत की उम्मीद भी छिपी है। बस कुछ ही दिनों में मानसून की पहली फुहारें इस तपती धरती को शांत करने आ रही है बहनों, तो आशा का दामन थामे रखिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बहनों आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और सुभाषिनी अब हम ये बताएंगे कि आगे प्रोग्राम में क्या है।
4: आगे बहनें जानती ही हैं कि अब वक्त है भेंट वार्ता का, तो बहनों आज का विषय है लू लगने पर क्या करें और क्या ना करें। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर अर्चना पाठक, और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी रेडियो सखी मैजबीन।
3: बहनों स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और आज हम जानकारी देंगे लू पर। गर्मी इतनी शिद्दत से पड़ रही है और जाहिर सी बात है कि लू भी लोगों को लू भी लग रही है, तो हम आपको जानकारी देंगे कि लू से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में हम जानेंगे। मिलिए आज की मेहमान से। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर अर्चना पाठक। मैम आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
5: नमस्कार
3: मैम। हमारी सभी बहनों को ये जानकारी दें कि लू कौन से महीने में सबसे ज्यादा चलती है, यानी कि हम कहें कि गर्मी की शुरुआत तो देखा जाए तो मई या अप्रैल के लास्ट या मई से शुरू हो जाती है
5: जी।
3: तो आप इसे किस तरह से समझाएंगे कि ये लू का चलना कब से शुरू होता है?
5: अगर देखा जाए तो भारत में जैसे सामान्यतः अप्रैल से जून के बीच में लू सबसे ज्यादा चलती है, और मई और जून में इसका प्रभाव काफी अधिक होता है। ये भी साथ में ध्यान रखना चाहिए कि जैसे दोपहर का जो समय होता है 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, तो इसमें विशेषकर अगर कोई जरूरी काम नहीं हो तो बाहर ना निकले, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत तेज रहती है और लू लगने की संभावना भी ज्यादा रहती है। खासकर गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को लू लगने का खतरा अधिक होता है इसमें।
3: लू इतनी अगर सावधानी के बाद भी लू लग जाती है तो हमें क्या प्राथमिक उपचार करनी चाहिए?
5: सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि मरीज को तुरंत कुछ ठंडा, हम अगर मरीज पीने की अवस्था में है तो उसे हम ORS का पानी दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं या फिर नारियल का पानी दे सकते हैं। पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर देना चाहिए, या फिर ठंडे पानी से पानी जो ठंडा पानी होता है उसकी पट्टी माथे पे जरूर रखनी चाहिए। शरीर में बहुत टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, शरीर में ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए। मरीज जो रहता है उसको तुरंत किसी ठंडी जगह पे ले जाएं और उसे पंखे या कूलर की हवा जरूर दे सकते हैं, और जो शरीर का तापमान है उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि और ये भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उन्हें जल्दी से ORS का पानी दे या नींबू पानी दे, इसका ध्यान रखना चाहिए।
3: मैम इससे बुखार बहुत तरह के होते हैं, और इसे हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये कोई दूसरा बुखार है या फिर ये लू ही है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं?
5: अगर मरीज में ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं कि मरीज को तेज बुखार है या फिर वो बेहोशी की हालत में हो रहा है, उसे बार बार उल्टियां हो आ रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है या चक्कर आ रहा है, तो ये समझ सकते हैं कि उसे लू लगा हुआ है। और जैसे फीवर तो अलग अलग टाइप का होता है, तो वो तो फिर

0: टेस्ट करेंगे तब उस पर हम समझ सकते हैं कि ये टाइफाइड का फीवर है या मलेरिया है या डेंगू है, जिस तरह का भी है। लेकिन आजकल गर्मी का जो सीजन है उसमें ये खासकर ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो बहुत हद तक ये लू की संभावना हो सकती है। तो इसमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और बहुत हद तक अगर इसमें आईवी फ्लूइड लगाया जाए, ऑक्सीजन दिया जाए मरीज को, या कोई इमरजेंसी उपचार की जरूरत है तो वो डॉक्टर फिर डिसाइड करते हैं। गर्भवती महिलाओं में मैं अलग से ये बात बोलना चाहूंगी कि उनमें ये देखा जा सकता है कि महिलाएं अगर कंप्लेन करें कि उन्हें पेट में दर्द हो रहा है या फिर चक्कर आ रहा है बार बार, या फिर बच्चे का जो चलने का जो मूवमेंट होता है वो अगर वो महसूस थोड़ा उनको लगता है कि बच्चा कम घूम रहा है पेट में, तो उनको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए।
1: प्राथमिक उपचार में अगर मरीज को आराम नहीं मिलता है, क्योंकि लोग लू लगने से प्राथमिक उपचार को ज्यादा तरजीह देते हैं, उसमें अगर आराम नहीं मिलता है तो मरीज को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या उपाय है?
0: हाँ, अगर उसको प्राथमिक उपचार से अपने ही जैसे घर में इलाज कर रहे हैं और अगर उनको उनको उसमें कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है तो वो उनको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर ही फिर डिसाइड करेंगे कि वो किस तरह का है या कितनी गंभीर अवस्था में वो मरीज है। तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर डिसीजन लेते हैं कि अगर शरीर का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, मरीज को अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं।
1: जी, और लू कितनी हद तक खतरनाक हो सकता है कि लोग इसे कभी कभी मामूली भी समझ लेते हैं और इसका घरेलू इलाज करते हैं, तो आप ये समझाएं कि ये कितना हद तक खतरनाक हो सकता है?
0: हाँ, ये अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो ये आगे जाके बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मरीज को बार बार बेहोशी की हालत में मरीज चला जाता है, या फिर उसे डिहाइड्रेशन बार बार होता है, या उसका जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, जैसे कि उसकी किडनी पे असर पड़ता है, लीवर पे असर पड़ता है, मरीज मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में जा सकता है, इवन कोमा में भी जा सकता है और शरीर का तापमान बहुत बढ़ सकता है, यहाँ तक कि उसके जान जाने का भी खतरा होता है।
1: जी मैम, और मैम चलते चलते आप हमारी सभी बहनों को, हमारे कार्यक्रम जो सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगी?
0: मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि अगर बहुत जरूरी कोई काम अगर उनका ना हो तो दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक वो ना निकले, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज धूप होती है, पर्याप्त पानी जरूर लें क्योंकि हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, साथ में ओआरएस का घोल हो गया, जैसे कोई भी फॉर्म ऑफ वाटर ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, कपड़े हल्के, मतलब हल्के कपड़े जो सूती के कपड़े होते हैं वो खासकर पहने और खाली पेट में बाहर ना जाएं, और जब भी बहुत तेज धूप में निकले तो अपने सिर को ढककर निकले और ज्यादा देर तक किसी बंद जगह पे या गर्म जगह पे ना रहे, अपने आप का हाइड्रेशन जो है वो अच्छे से मेंटेन करें।
1: जी बहनों, अभी हम जानकारी दे रहे थे कि लू कितना खतरनाक हो सकता है, घरेलू उपचार के अलावा आप अस्पताल भी ले जाने की कोशिश करें। बहुत सारी जानकारी दे रही थी आज की हमारी मेहमान। आज की हमारी मेहमान थी डॉक्टर अर्चना पाठक। मैम, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: लू लगने पर क्या करें और क्या ना करें, बहनों आप इसी विषय पर भेंटवार्ता सुन रही थी। भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर अर्चना पाठक और उनसे बातचीत कर रही थी मैं जबीन।
3: और सुभाषनी, हम अपने कार्यक्रम में अपनी बहनों को ये जानकारी दें कि नशा मुक्त भारत हम किस तरह से इस अभियान से जुड़ सकते हैं और नशा को हम अपने देश से किस तरह से खत्म कर सकते हैं। नशा हमारे आधुनिक समाज को अंदर से खोखला करने वाली एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी बुराई है। ये ऐसी बुराई है ना कि अगर इससे नहीं दूरी बनाई जाए तो ये अंदर अंदर खोखला कर देता है, यानी न केवल किसी एक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट करता बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। भारत में युवाओं के बीच बढ़ती नशीली पदार्थों की लत को देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को देशव्यापी और नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश के युवाओं समाज को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाना और भारत को पूरी तरह नशा मुक्त बनाना है। शुरुआत में यह अभियान भारत के और 272 हाँ, जैसे कि हमने
2: ज्यादा सबसे संवेदनशील
3: जिलों में है शुरू किया गया था, जिसका विस्तार अब देश के सभी जिलों में कर दिया गया है। सरकार इसके माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहती है जहां युवा स्वयं मादक पदार्थों से दूरी बनाने का संकल्प लें।
2: बिल्कुल सही कह रही हो। नशा मुक्त भारत अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम ही नहीं है बहनों, बल्कि यह एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है। किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के स्वास्थ्य और उनकी सोच पर निर्भर करता है। यदि हमें भारत को एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है तो हमें अपने समाज को हर प्रकार के नशे से मुक्त करना ही होगा बहनों।
3: अगर आप भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो नशा मुक्त मित्र या स्वयं सेवक के रूप में इस अभियान से जुड़कर समाज को जागरूक कर सकते हैं, या फिर नशा मुक्त भारत अभियान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नशा मुक्ति की शपथ भी ले सकते हैं। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म पर जाकर अभियान से जुड़ी गतिविधियों और इवेंट्स में भाग ले सकते हैं। यदि आप या आपका कोई परिचित नशे की समस्या से जूझ रहा है, उपचार परामर्श चाहता है, तो आप राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर आपको निकटतम पुनर्वास केंद्रों की से जो मदद है वो दिला सकती है। यानी कि अगर हम कहें तो सरकार इस ओर पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि हमारे देश को नशा मुक्त किया जा सके।
2: तो बहनों, इस अभियान को पूरी तरह से सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी है और इसे सफल बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को नशे को ना और जिंदगी को हाँ कहने का संकल्प लेना होगा। और हम सभी श्रोताओं से यही कहेंगे कि नशे की लत है एक अभिशाप, यह मिटा देती है सुख और साख। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, भारत को हम नशा मुक्त बनाएं।
3: बहनों, अब हम आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।
4: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: बहनों, फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और अब हम आपको लिए चलते हैं रसोई की ओर। आज हम आपको बताएंगे आम पन्ना, और इसके लिए जो सामग्री चाहिए हम आपको ये बता ही देते हैं कि उसको आप ले लें। आम पन्ना गर्मियों का एक पारंपरिक और बेहद स्वास्थ्यवर्धक पेय है, जो शरीर को तुरंत ठंडक प्रदान करता है और लू से भी बचाता है। कच्चे आम से बनने वाला यह शरबत न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि भीषण गर्मी में शरीर के तापमान को संतुलित रखने में एक अचूक प्राकृतिक उपाय भी है। इसे आप आसानी से घर पर सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकती हैं और इंजॉय कर सकती हैं।
1: बिल्कुल। तो बहनों, आम पन्ना जो है वो गर्मी के लिए बहुत ही लाभदायक है, जैसे कि हमारी सखी ने बताया। तो आप झटपट कॉपी और कलम निकाल लें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं आवश्यक सामग्री क्या इसके लिए चाहिए। तो जाहिर सी बात है, कच्चे आम तो चाहिए आपको। कच्चे आम चाहिए 2-3 मध्यम आकार के, और स्वाद के लिए पुदीना के पत्ते भी ले सकते हैं, 1 कप फ्रेश पुदीना के पत्ते। फिर स्वाद के अनुसार गुड़ या चीनी, अगर चीनी आप नहीं खाती हैं तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। भुना जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, और काला नमक 1 छोटी चम्मच, और ठंडा पानी ले लें।
0: बनाने की विधि, कच्चे आमों को धोकर कुकर में 2 कप पानी के साथ 1-2 सीटी आने तक उबाल लें। आम ठंडे होने पर उनका छिलका निकाल कर गूदा को एक कटोरी में निकाल लें। मिक्सी के जार में आम का पल्प, पुदीने की पत्तियां और चीनी या गुड़ और डालकर अच्छी तरह से पीस लें। अब इसे गाढ़े पेस्ट में भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक मिलाएं। 1 गिलास पानी में 2-3 चम्मच यह तैयार पेस्ट डालें। ऊपर से ठंडा पानी मिलाकर अच्छी तरह से धो लें। आपका फ्रेश आम पन्ना तैयार है।
1: बिल्कुल। और आप आराम से इसे पी सकती हैं, और अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आते हैं तो आप इसे पिला भी सकती हैं, क्योंकि आम पन्ना जो होता है वो गर्मी के लिए एक कहे तो

0: मृत के समान होता है। इसी तरह से बहुत से हमारे मौसमी फल भी हैं, जैसे तरबूज हो गया जिसमें बहुत सारा पानी भी होता है, और खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, तो ये सब आप ज़रूर लें। लू से बचने में ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, और इसका सेवन करें। और साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उनको भी फल का सेवन करने के लिए दें। अगर और ये ध्यान रखें लेकिन कि जो छोटे बच्चे हैं और घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें फल का सेवन शाम के समय में ना करने दें।
1: तो बहनों, बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब हमें इजाज़त दे, फिर मुलाकात होगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव पांडे की, और अब महजबी
0: और सुभाषिनी को दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संकेत। शुरुआत करते हैं फिल्म बागे के इस गीत से। आवाजें अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की है। शब्द रचना समीर के, संगीत पर किया आनंद मिलिंद ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: भारतीय सेना, भारतीय सेना।
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
2: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आइए सुनते हैं फिल्म यारा दिलदारा से ये गाना। आवाज़ें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की है। शब्द रचना जतिन ललित के, संगीत पटकिया माफ कीजिएगा शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत पटकिया जतिन ललित ने।

आइए सुनते हैं फिल्म कहो ना प्यार है से ये गाना। आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की है। इस गीत को लिखा विजय अकेला ने, इब्राहिम अश्क

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 48 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने दी बधाई। पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन और रक्षा आत्मनिर्भरता की सराहना की। झारखंड राज्यसभा में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर सुनवाई जारी। निर्वाचन आयोग से अंतिम फैसले का इंतजार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर राज्य के सभी 444 बालू घाट आज से 15 अक्टूबर तक के लिए बंद। परिवहन पर पूरी तरह रहेगी रोक। पाकुड़ में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों से भरी बस। दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 33 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की बेटियों का स्वागत। संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझे ने कहा, अब सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है अगला लक्ष्य। स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बधाई मिल रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सेवा और सुशासन का स्वर्ण काल बताया। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस कार्यकाल को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती शक्ति का परिचायक कहा। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को सेवा, सुशासन और अंत्योदय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
2: देश के अंदर उत्पादन करना है, आत्मनिर्भर बनना है। हम सब काफी प्रयास किए यहाँ से लेके दिल्ली तक, और सरकार भी चाहता भी था, और यहाँ और नए माइंस का भी सर्वे करके गया है। कुछ इसको प्रयास करके उसको
1: इधर हजारीबाग में सेवानिवृत्त सैन्य जवानों ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय सेना का मनोबल और मान सम्मान काफी बढ़ा है। उन्होंने आधुनिक हथियारों की उपलब्धता और रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को बेहद गर्व की बात बताया।
3: 12 साल मोदी जी का सेना के लिए तो बहुत लाभदायक है, और उसके आने के पहले सेना में सब कुछ रहते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। 2014 के बाद सेना में बदलाव भी हुआ और हर फौजी का आत्मविश्वास बढ़ा।
4: काम तो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है डिफेंस में। आने वाला समय से बदलाव जिस तरह चाहिए उस तरह हो रहा है, और मोदी जी आने के बाद जो भी हुआ सेना के लिए अच्छा विकास हुआ है। इक्विपमेंट्स, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और जितने गन डिफेंस सर्विसेज में चाहिए थे वो मिल रहे हैं।
1: इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री का सम्मान किया और उन्हें इस ऐतिहासिक कीर्तिमान के लिए बधाई दी। झारखंड विधानसभा परिसर में राज्यसभा चुनाव की स्क्रूटनी को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन को रद्द करने की मांग को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि नामांकन पत्र में कई त्रुटियां हैं और इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए।
5: एक दलित महिला को राहुल गांधी जी ने कैंडिडेट बनाया और 100% सेफ, हमारे पास पर्याप्त बहुमत है। उसके बाद भी आपने मात्र एक त्रुटि के कारण, जबकि 3:30 बजे तक आज समय है क्वेरी करने का, बताने का, आपने एक महिला का नामांकन रद्द कर दिया मध्य प्रदेश में, और यहाँ क्यों नहीं किया आपने? यहाँ पांच पांच चोरी है, भाजपा का

0: समित मत कर रहे थे, इसलिए आपने उनको नमों के रोध नहीं किया, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे।
1: दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विधानसभा गेट के बाहर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नियमों के प्रतिकूल बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
2: भाजपा के कार्यकर्ता के लिए गेट बंद, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए स्थान भी सरकार ने तय किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर घुस के प्रोटेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक है दूसरे दल के लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए।
1: राजधानी रांची में आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए आंदोलनकारियों को मोराबादी क्षेत्र में ही रोक दिया है। मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन पुलिस सहित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के आदेश के तहत आज से नदियों से बालू खनन और उठाव पर पूरी तरह रोक लग गई है। यह प्रतिबंध आगामी 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में मॉनसून के दौरान नदी घाटों के पर्यावरण और जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य के सभी 444 बालू घाट बंद रहेंगे और बालू के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। गिरिडीह जिले में नक्सल प्रभावित पीरटांड़ प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत बंजर जमीन पर आम बागवानी कर किसान अपनी आय बढ़ा रहे हैं। योजना से लाभान्वित किसान शेखर महतो और तूपलाल बेसरा ने बताया कि सरकार की मदद से वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
3: बंजर भूमि था जो कृषि योग्य बिल्कुल नहीं था, उस सब भूमि में हम बागवानी शुरू किए और बागवानी मेरा इतना शानदार रहा कि ये चौथा साल है बागवानी का। अगला साल ही लगभग हम 1 लाख का आम बेच चुके थे और इस साल भी एकदम खेती जो उम्मीद से बढ़िया हुआ है। पेड़ से ही पका हुआ आम को मिल जा रहा है बहुत लोगों को।
4: हम भगवान मिला नरेगा साथ से तब हमने लगाए हैं। अब पूरे प्रखंड का सब आ करके देख रहा है, पूरे प्रखंड में लगा रहा है। इन साल कुछ मौसम के चलते से फल नहीं आया, फिर भी मेरा हो जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपए।
1: पंचायत सचिव सरफराज अहमद ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को उचित बाजार उपलब्ध करा रहा है। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में कल देर रात बारातियों से भरी एक बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बारात सुंदर पहाड़ी क्षेत्र से लौट रही थी, तभी मालीपाड़ा ढलान के निकट यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 597 अंक चढ़कर 74,516 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 157 अंक बढ़कर 23,400 पर पहुंच गया है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 5 दिनों के लिए मॉनसून के राज्य में प्रवेश करने की संभावना व्यक्त की है। कल राजधानी रांची, दुमका, बोकारो सहित राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की दो बेटियों का जिला मुख्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय टीम की सदस्य संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने अपनी सफलता का श्रेय कोच, परिवार और राज्य सरकार के सहयोग को दिया है।
5: मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था जिसमें हम लोग बहुत अच्छा खेले, लेकिन सेमीफाइनल में शूट आउट में लूज हो गए। कोशिश किए थे कि फर्स्ट क्वार्टर में ही गोल मारने का, पर नहीं हो पाया। और थर्ड प्लेस के लिए खेले कोरिया के साथ। हम लोग सीखे कि इंटरनेशनल में हम लोग अपना प्रेशर झेल सके।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने दी बधाई। पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन और रक्षा आत्मनिर्भरता की सराहना की। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर सुनवाई जारी। निर्वाचन आयोग से अंतिम फैसले का इंतजार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर राज्य के सभी 444 बालू घाट आज से 15 अक्टूबर तक के लिए बंद। परिवहन पर पूरी तरह रहेगी रोक। पाकुड़ में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों से भरी बस। दुर्घटना में दो लोगों की दर्दनाक मौत, 33 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की बेटियों का स्वागत। संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने कहा, अब सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है अगला लक्ष्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं अनीता सेन।

टप्पा और कजरी सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं चंद गजलें।

इसी के साथ सुगम संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का

0: उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी तो संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वो सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब, हमारा परिवार की मुख्य धारा के साथ जोड़ के काम करना, देश के विकास में काम करना। आज हमारे युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूँ कि 2013-14 का जो समय था, एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स पे और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ

0: एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वें शासी परिषद करेंगे। वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश

0: कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों से 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल स्थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

दौड़के जवान से भवान से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म गीत से ये गाना। आवाजें महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की है, शब्दों में पिरोया हसरा जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी।

फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आंखें से ये गाना। इस गीत को लिखा साहिल उद्यानवी ने, धुन बनाई है रवि।

0: कभी कभी।
1: फौजी भाइयों, कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं फिल्म क्रांति से। आवाज लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, नितिन मुकेश और साथियों की है। शब्दों में पिरोया है संतोष आनंद ने, संगीत बद के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ये दुश्मन है खुद गर्जी का, मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का।
1: फौजी भाइयों, कार्यक्रम का आखिरी नगवा सुनते हैं फिल्म उपकार से। लता मंगेशकर की आवाज है, गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा, संगीत पाठ किया कल्याण जी आनंद जी ने।

0: इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 4,399 दिन के कार्यकाल में देश के समग्र विकास को रफ्तार दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री के तौर पर श्री मोदी के सेवा करने के खास सम्मान के लिए उन्हें बधाई दी।

0: बड़े निर्णय लिए, ऐसे निर्णय जो आज वर्षों की तपस्या के बाद आज सच्चाई बन चुके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, जीएसटी लागू करना, वन रैंक वन पेंशन लागू करना, गरीबों को 10% आरक्षण देना, परमाणु क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए शांति कानून। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक नया आयाम दिया है, नई बुलंदी दी है। आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का श्रेय उनके नेतृत्व को ही जाता है।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। परिमल नाथवाणी के राज्यसभा नामांकन पर संशय बरकरार है। इंडी गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों का नामांकन जांच के बाद कल जहां वैध पाया गया, वहीं श्री नाथवाणी के नामांकन पर आपत्तियों की वजह से संशय की स्थिति बनी हुई है। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। कांग्रेस ने परिमल नाथवाणी प्रकरण पर आज विधानसभा में प्रदर्शन किया, वहीं भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी विधानसभा के पास पहुंचे और तंत्र की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया है वह अमर्यादित तथा नियमों के विरुद्ध है, जिस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। श्री साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया बाधित करना चाहती है।
2: कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं, आज इस प्रकार के आंदोलन को करके संवैधानिक कानून बाधा डालने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष में आग्रह करना चाहता हूँ कि वैसे लोग जिन लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया पर बाधा डालने का प्रयास किया है तुरंत एफआईआर करके उनको जेल भिजवाने का काम करे। कांग्रेस पार्टी
1: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने आज विभिन्न मांगों को लेकर रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश की। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए आंदोलनकारियों को मोरहाबादी क्षेत्र में ही रोक दिया है। इस दौरान आंदोलनकारी ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी। मोर्चा के आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन पुलिस सहित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम के बदले मिजाज की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आस आ रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलौदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर

0: संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
1: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
1: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
1: जी।
0: तो आज
1: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
0: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
1: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश, अफ्रीका।
1: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
0: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
1: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
1: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
1: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
1: जी।
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
1: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
1: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे है।
1: समारोह
0: शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: हैं। फिर क्या होता है विमलेश?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
1: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे,
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ
1: देखो, झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा,
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए, फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह।

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
1: ओह,
2: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी। और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
1: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यही लॉन में बैठते हैं।
1: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
1: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
0: है। हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
2: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
1: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
1: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
1: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
1: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
1: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
1: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सब का पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीही के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी है, आइए सुनते हैं केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय है महिला सशक्तिकरण। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर नेहा तिवारी, प्राध्यापक पत्रकारिता विभाग करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, और श्री अमरेंद्र कुमार, ब्यूरो प्रमुख दैनिक भास्कर रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम करकट्टा।
7: नमस्कार, मैं पूनम करकट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत परिचर्चा में। परिचर्चा का विषय है केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर महिला सशक्तिकरण पर विशेष परिचर्चा। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर नेहा तिवारी, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, और श्री अमरेंद्र कुमार, ब्यूरो प्रमुख दैनिक भास्कर रांची। डॉक्टर तिवारी और श्री कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
8: जोहार।
7: जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, केंद्र सरकार के 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं, और इस दौरान सरकार ने कई विकास कार्यों को बड़ी प्रमुखता से आगे बढ़ाया है। और इन कार्यों में एक बात बहुत अच्छी है कि महिलाओं के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, कई योजनाएं लाई गई हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एक नारी अगर शिक्षित हो, सशक्त हो, तो पूरा परिवार, पूरा समाज शिक्षित और सशक्त होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की। अमरेंद्र कुमार जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि यह जो योजना है ये वैसी महिलाओं के लिए है जो अपने गर्भावस्था के दिनों में अपने बच्चों के लिए अगर उनको 5,000 रुपए की 3 किस्त दी जाए तो उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। इस योजना का हमारी माताओं पर और खासकर पूरे समाज और देश पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपकी टिप्पणी?
9: अभी तो जो परिणाम आए हैं पिछले 12 वर्षों में, उसमें तो बहुत कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, खास के गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु को लेकर के, जिसका ये असर पड़ा है कि जो MMR है मातृ मृत्यु दर, उस पर सार्थक असर पड़ा है। पहले प्रति 1,130 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी जन्म के समय में, जिस दौरान वो घट करके 87-88 पर अभी एवरेज चल रहा है। तो ये संस्थागत प्रसव के लिए भी एक अच्छी उपलब्धि है और इस दिशा में काम होने से आगे और बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है।
7: जी डॉक्टर तिवारी, आप इस योजना को आप कैसे देखती हैं?
10: मैं समझती हूँ कि किसी भी राष्ट्र में एक माँ का स्वस्थ रहना, क्योंकि माँ का स्वस्थ रहना इसलिए महज ज़रूरी नहीं है कि वो एक महिला है और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, पर हमें ये समझना होगा कि हमारे देश में जो नौनिहाल आएंगे, जो बाद में जाके युवा बनेंगे, जिनके कंधों पर भारत को एक विश्व में नया आयाम दिलाने का कर्णभार होगा, जिम्मेदारी होगी, अगर माएँ कमज़ोर होंगी तो बच्चे यकीनन कमज़ोर होंगे। और कई बार हमने देखा है कि ये मातृत्व में जो मृत्यु दर देखी जाती है, तो केवल माएँ इस दुनिया से नहीं जाती बल्कि वो या तो कमज़ोर बच्चे छोड़कर जाती हैं या उन बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है, तो हमारे लिए वो हर तरह से हानिकारक था। और इस पे जिस प्रकार से पिछले एक दशक में विशेष रूप से काम हुआ है और जो उपलब्धि हासिल हुई है, जिसका जिक्र अभी मेरे साथी अमरेंद्र जी कर रहे थे, मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन आया तो स्वच्छता और उसके बाद लगभग 12 करोड़ जो है वो शौचालय का निर्माण हुआ, तो ये भी महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है।
7: बिल्कुल।
10: और महिलाओं को आप जानती हैं कि महावारी के समय में स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, तो हम केवल ये जो मातृत्व योजना है उसको एकीकृत करके देखने की जरूरत है, इन सारी योजनाओं को, जिसकी वजह से महिलाओं की जो स्थिति है स्वास्थ्य के मामले में उसमें काफी इजाफा हुआ है, और मैं समझती हूँ कि इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए।
7: जी जी, इसी तरह की योजना है जननी सुरक्षा योजना।
10: जी,
7: और इसमें भी महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश असिस्टेंस दिया जा रहा है BPL महिलाओं के लिए, तो ये उनके लिए भी बड़ी का उत्साहवर्धक योजना है, क्योंकि इस दौरान जो काम करने वाली महिलाएं हैं, खास करके मजदूरी या घरेलू काम करने वाली महिलाएं हैं, तो उनका जो लॉस होता था, मजदूरी का लॉस होता था, वो भरपाई होती है, ये बड़ी अच्छी बात है।
10: जी, बहुत अच्छी बात इसलिए भी है कि कई बार जो है उस मातृत्व को बोझ की तरह देखा जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी आर्थिक समस्याएं
7: जी
10: जुड़ जाती हैं, तो उनको जिस भी प्रकार की आर्थिक मदद मिल पा रही है वो मुझे लगता है कि उनको एक अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने में, बेहतर खान पान करने में और स्वस्थ रहने में जो है वो मददगार साबित हो सकती है। इस वजह से इस योजना को मुझे लगता है कि जितना ग्रामीण महिलाओं तक और उन कमजोर तबके की महिलाओं तक, जो खासतौर पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रही हैं और गर्भावस्था में जैसा आपने कहा कि वो काम पर नहीं जा पाती हैं और नुकसान होता है, तो उसमें कैश की व्यवस्था करके सरकार ने खासी मदद की है उनकी। मैं तो समझती हूँ कि इस रकम को और बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हमारी माएँ स्वस्थ रहें और आने वाले समय में फिर बच्चे स्वस्थ रहें और एक अच्छे भविष्य का निर्माण देश के लिए हो सके।
7: जी, बच्चियों के लिए भी उनके सुनिश्चित और सुरक्षित भविष्य के लिए योजना शुरू की गई है, सुकन्या समृद्धि योजना, उनके सतत विकास के लिए। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी अमरेंद्र जी।
9: ये सुकन्या

0: योजना का प्रारंभिक लाभ बच्चे के जन्म लेने के साथ जब उसका उत्थान होने लगता है उसी समय ये सरकार योजना चला दी है, जिससे ये छोटी बच्चियां जो हमारे समाज के लिए आने वाले दिनों में बड़ा दायित्व निभाएगी उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। इसलिए सुकन्या योजना के तहत जो बचत होती है, जो पैसा जमा होता है, उसके लिए जो लाभ दिया जाता है वो प्रोत्साहन की एक अच्छी पहल है और इसे राशि और बढ़ाया जाना चाहिए, उनके फायदे के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया जाना चाहिए। और उसमें जो जो योजनाएं चल रही है, हमारे सुकन्या योजना को बैंक भी अडॉप्ट कर रहा है, पोस्ट ऑफिस से भी चल रहे हैं, कई योजनाएं चल रही हैं, तो इसको और व्यापक करने की जरूरत है। लेकिन अब तक जो परिणाम आ रहे हैं वो भी सार्थक है और इसमें हमारी जन सहभागिता बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। पहले जागरूकता नहीं थी, लोग सोचते नहीं थे, एक बेटा और बेटी का जो नजरिया था देखने का उसमें बहुत बदलाव हुआ है और इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए प्रारंभिक दौर कि ये अच्छी योजना है, इसका मैं सराहना करता हूं।
1: जी जी, डॉक्टर तिवारी, क्या आपको लगता है कि ये जो योजना है बच्चियों के लिए, इससे कई कुरीतियों को हमें दूर करने में मुक्ति मिलेगी? क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि बेटियों की शादी से लेकर जो लोगों के मन में रहता था कि बहुत पैसा खर्च होगा और जो दहेज की कुरीतियां थी, क्या इनसे हम मुक्ति पा सकेंगे?
2: देखिए, दहेज की कुरीति से हम आजाद हो पाएंगे कि नहीं ये एक अलग सवाल है। मुझे लगता है उसके लिए हमें बहुत सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर बदलाव की जरूरत है। लेकिन एक बात जो आपने कही उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जो सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं हैं जहां पर हम बच्चियों के लिए खास इंटरेस्ट में एक बचत को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इससे एक बात तो यकीनन हुई है कि अब बेटियों के जन्म को बोझ की तरह नहीं देखा जा रहा है। और माता पिता अगर थोड़ी सी समझदारी के साथ सही समय पर अगर इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं तो बच्ची को चाहे पढ़ाना हो चाहे विवाह की जिम्मेदारी हो, अब वो उनको थोड़ी आसान लगने लगी है। सरकार की तरफ से ये एक अच्छा काम हुआ है मुझे लगता है और इसका लाभ भी हम देख रहे हैं। और अगर बच्चियों के एजुकेशन में, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में हमने देखा है विश्व स्तर पर भी कई जगह पर है, पर में या विकासशील देश हैं आप कह सकते हैं, तो उस वजह से ग्रामीण परिवारों में बेटा बेटी के बीच भेदभाव और अगर पढ़ाना है तो वो चुनाव करते हैं बेटे का, तो कम से कम इस तरह की योजना से बच्चियों की पढ़ाई के लिए उनको अगर या वो अपना कुछ नया काम करना चाहें तो उसके लिए जो एक राशि मुहैया हो रही है एक खास उम्र में आने के बाद, वो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत काम आएगी और इस योजना के और बेहतर परिणाम जो है वो हम आने वाले समय में देखेंगे
1: देख सकेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर बच्ची पढ़ लिख लेती है इस योजना से, उसको अगर मदद मिलती है, पढ़ी लिखी बच्ची अपना कैरियर बना सकेगी आगे जाके, और अगर अपना कैरियर बनाती है तो उसे दहेज जैसी कुरीति का सामना नहीं करना पड़ेगा।
2: और मैं बहुत उम्मीद रख रही हूँ कि इस तरह के सकारात्मक परिणाम हमें मिलेंगे आने वाले समय में।
1: जी डॉक्टर तिवारी, एक और योजना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसमें जो महिला उद्यम के क्षेत्र में आना चाहती हैं उनको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की जो लोन दे जाने की योजना है,
2: जी जी,
1: उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी।
2: जी मुझे लगता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इससे बेहतर प्रयास कभी नहीं हुए और इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे तमाम जो योजना विभाग है जिसने इस पर काम किया, हमारा जो वित्त विभाग है और विशेष रूप से जो है वो प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहिए। हमेशा से ही इस सरकार का जोर रहा कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, उनके पास जो भी हुनर हो उसका एक किस्म से व्यवसायीकरण हो सके, वो कुछ काम करके कमा सके। उस आत्मनिर्भरता की दिशा में महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े करना बहुत जरूरी था। और अगर आपके पास शिक्षा नहीं है या शिक्षा किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से नहीं है मगर आपके पास स्किल है, आपके पास हुनर है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो है इस योजना ने मदद की है और बहुत सारी महिलाएं अब ऋण लेकर जो है अपना उद्योग खड़ा कर रही हैं, एमएसएमई के तहत लघु उद्योग खड़ा कर रही हैं। और संयोग की बात है कि सोशल मीडिया का भी जमाना है जिसकी वजह से उनको अपने कारोबार को भी फैलाने में मदद मिली है और इस वजह से हम देखेंगे कि हमारे आसपास अब जो महिलाएं हैं वो उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे आ रही हैं।
1: जी अमरेंद्र जी, आप तो इस झारखंड को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इतने समय से जान रहे हैं, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, उद्योग के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में हाल के दिनों में या एक दशक में आप क्या बदलाव देख रहे हैं झारखंड में?
0: देखिए, झारखंड और राष्ट्रीय स्तर दोनों की स्थिति का अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर भी बेहतर काम हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर अगर आप गौर करेंगी तो बड़ी संख्या में महिलाओं का बिना गारंटी का ऋण लेने में आगे आई है। इसका फलाफल ये हो रहा है कि वो

0: स्वरोजगार के क्षेत्र में छोटे छोटे उद्यम अपने लिए करने में उनको बहुत मदद मिली है। स्वयं सहायता समूह का भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है हाल के दिनों में। पहले छोटे मोटे कहीं गांव में सुनते थे या कहीं जगह, लेकिन अभी धड़ल्ले से SHG की नाम आप सुनेंगे, चर्चा करेंगे,
1: जैसे
0: लाखपति दीदी योजना चले, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं, 10 करोड़ से अधिक महिलाएं SHG नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। तो ये बड़ी बात है। जो पिछले हम लोग 50 वर्षों का जो दौर देखेंगे विकास का, खास करके महिलाओं के उत्थान का, महिलाओं के सशक्तिकरण का, तो ये जो 10-12 साल है इसमें ये बड़ी उपलब्धियां आपको मिलेंगी। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं SHG से जुड़ने बड़ी बात है। पिछले अगर 40 वर्ष को अब देखेंगे तो आगे आने वाले दिनों में और प्रगति होगी इसकी अपेक्षा हम रख रहे हैं। जिस हिसाब से बौद्धिक विकास के साथ साथ समाज के विभिन्न स्तरों पर महिला सशक्तिकरण को लोग स्वीकार कर रहे हैं और प्रोत्साहित करने के लिए अपने अपने घर परिवार में भी आप देखिएगा तो 20 साल पहले जो सोच था, खास करके काम करने वाली महिला अगर किसी घर में आती थी उनके प्रति, और आज के दिनों में व्यवहार में अंतर है। ये भी एक महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। इसमें बहुत सी योजनाएं शामिल है, जैसे झारखंड में योजना चल रही है जिसको लोग चुनाव के समय मैंने लॉन्च किया, लेकिन अभी वो योजना जो है अच्छी उपलब्धि है। उससे क्या है कि आत्मनिर्भरता के लोग बढ़ रहे हैं, अपने अपने रोजगार पर हैं और घर के भीतर भी उनको सम्मान मिला है। मैया योजना को अगर देखेंगी तो एक मतलब सोशल चेंज के लिए एक बड़ा उदाहरण हो सकता है अगर इसमें सब कुछ ठीक रहा तो।
1: जी, अपनी बात में आपने मेंशन किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप।
0: जी जी,
1: सुनने में ये बहुत मजबूत नहीं लगता लेकिन इसको इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक मजबूती का स्तंभ है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी।
0: सबसे पहले ये कॉपरेशन है।
1: जी,
0: 4 महिलाएं या 10 पुरुष कहीं भी कोई बैठते हैं तो आपस में कोई निर्णय करते हैं, चर्चा होती है, तो वो बेहतर परिणाम आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये मतलब होता है कि अपने ढंग से हम किसी चीज को आगे कैसे बढ़ाएं, एक दूसरे को मदद लें और सहभागिता के तौर पर, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, और हम लोग मिल करके ये सामूहिक जवाबदेही है, सामूहिक उत्थान के लिए हम आगे करें। तो ये भावना उससे स्वयं सहायता समूह के बीच में जुड़ती है और इसका बहुत परिणाम आ रहा है। कोई भी स्टार्टअप का प्रोग्राम होता है, अगर 10 महिलाएं जुड़े, दीदी योजनाएं देख लीजिए यहाँ, जहां जहां बहुत से प्लस योजनाएं चल रही है, झारखंड सरकार की, झारखंड सरकार भी ग्रामीण विकास से योजना को शुरू की है। तो ये स्वयं सहायता समूह है, एक कॉन्सेप्ट है, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं, ये पुरुषों के लिए भी है, लेकिन इसमें महिलाएं ने जिस ढंग से इसको एडॉप्ट किया और जिस उत्साह से आगे बढ़ी, सरकार ने सहयोग किया, बहुत सी योजना उसको ध्यान में रखा, तो वो आने वाले दिनों में महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा रोल अदा करेगा। और
2: इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी कि कई बार महिलाओं में हिचक होती है, स्पेशली वो जब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, अगर उन्होंने बहुत पारंपरिक जो शिक्षा है वो नहीं ली है तो कई बार उनके अंदर एक हिचक होती है कि वो अकेले किस प्रकार से कर पाएंगी और क्या उनकी सहायता के लिए कोई आ पाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो स्वयं सहायता समूह है इनकी भूमिका आ जाती है कि जहाँ पर कई महिलाएं इकट्ठी हैं, एक दूसरे से सहारा ले रही हैं, एक दूसरे से चीजें सीख रही हैं और एक आर्थिक स्वावलंबन की तरफ वो आगे बढ़ रही हैं, तो इसलिए वो एक आंदोलन की तरह पूरे देश में एक दशक के रूप में हम देख सकते हैं और इसने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया है। अगर आज भी हम पंचायत के लेवल पर जाएं तो देखेंगे कि महिलाओं को बहुत सहारा इससे मिला है।
1: जी, कई बार मुझे गांव जाने का मौका मिला है और ये देखने का मौका मिला है कि SHG की महिलाएं किस तरीके से मीटिंग करती हैं।
2: जी,
1: और वो देखकर इतना अपने आप में भी इतना अच्छा लगता है।
2: जी,
1: उनकी बातें जब वो मीटिंग करती हैं, पुरुष भी होते हैं लेकिन जिस तरीके से वो लीड लेती हैं मुद्दों पर,
2: बिल्कुल
1: वो काबिले तारीफ है।
2: और देखिए, निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं से काफी सालों तक जो है वो उनको वंचित ही रखा गया है, तो ये समूह जिस प्रकार से उनको ये अधिकार दे रहे हैं और जैसा आपने कहा कि वो नेतृत्व कर पा रही हैं, वो एक दूसरे से अपने निर्णय साझा कर पा रही हैं, काम करवा पा रही हैं ना पंचायत के स्तर पर और सारी चीजों पर, तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक सराहनीय कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।
1: जी जी जी, अमरेंद्र जी,
0: अभी आप SHG की जो चर्चा की, इस संदर्भ में मुझे लगता है एक बात और मुझे कहनी चाहिए। पहले के जमाने में, आज 25-30 साल पहले, महिलाओं का जो एक जगह जुटना होता था, मोटे तौर पर जो सम्राट परिवार के लोग होते थे, वो किट्टी पार्टी की तरह से शुरुआत होती थी, वो चलता रहा। आज की डेट में मेरा ये मानना है कि जो SHG जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, महिलाओं ने जितना परचम लहराया है, तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं उसमें भी सीख लेनी चाहिए। जो किट्टी पार्टी कर रहे हैं केवल इंटरटेनमेंट के लिए, पैसा कलेक्शन के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट लेके चलते हैं इन लोग से सीख करके, तो एक भी बड़ा हो सकता है और एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उनका भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया कि वो उसको एक सोशल कॉज पे भी लेके जा सकते हैं।
2: और कई किटी पार्टीज में मैंने देखा है कि वो एटलीस्ट मतलब कुछ फाइनेंशियल ना भी कर रही हो तो सोशल वर्क तो जरूर करने लगती है इकट्ठे होकर, तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है पूनम जी हमें उज्ज्वला योजना की भी चर्चा करनी चाहिए।
1: एस एस जी में मैं एक बात बस ऐड करना चाह रही थी, झारखंड में पालकोट के साइड में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसका नाम है जोहार रागी। रागी को उन्होंने इतने बड़े स्तर पर अभी शुरू किया है, उनकी पैकेजिंग देखिए, उनके फूड का क्वालिटी देखिए, उनका प्रेजेंटेशन देखिए, वो कहीं से भी आपको इंटरनेशनल लेवल से कम का नहीं है।
2: जी जी,
1: और मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे अमरेंद्र जी?
0: देखिए, जोहार रागी की तो चर्चा होनी ही चाहिए, बहुत अच्छा की आपने टॉपिक में इसको शामिल किया। जोहार रागी को भी हाल के दिनों में मुझे बहुत नजदीक से देखने का अच्छा मौका मिला, मैं प्रभावित हुआ। और मैं एक बात बताता हूँ, मैं पिछले दिनों गया था दिल्ली और देहरादून, तो कई बड़े लोगों से मिलना भी होता है, तो अपने हम लोग यहाँ परंपरा है कि किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, तो इस बार मैंने जोहार रागी का पैकेट लेके,
2: बढ़िया
0: मरुआ का लड्डू से लेके नमकीन आइटम थे, चार आइटम था, तो अब मैंने जिन लोगों को दिया वो आइटम की प्रशंसा की, झारखंड का नाम उनके मानस पटल पर रहेगा। और कोई ऐसे लोग थे जो कभी झारखंड नहीं आए थे, ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो जब उन इस पर मैंने चर्चा की, मैंने तो उनको ऑफर किया कि मैं लाया हूं, इसको स्वीकार किया जाए, लेकिन जिन्होंने भी खाया उसका पैकेजिंग से लेकर के क्वालिटी लेकर वो प्रभावित हुआ, और इस बहाने एक झारखंड का ब्रांडिंग हुआ उनका, जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चलाकर जो प्रोडक्ट है जोहार रागी उनका तो ब्रांडिंग हुआ ही, लेकिन इस बहाने झारखंड का भी हुआ और मिलेट प्रोडक्ट जो है उसको लेके हुआ, ये भी एक अच्छी बात मुझे लगी, इसलिए मैं उससे प्रभावित हुआ।
2: देखिए, खेती में हमेशा से महिलाओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन अब ये है कि वो उसे उसकी मार्केटिंग करके और आत्मनिर्भर हो रही है, ये अब बड़ी बात
1: बिल्कुल
2: हो रही है।
1: और वो एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का
0: बिल्कुल,
1: है,
0: बिल्कुल, क्वालिटी भी होता, बिल्कुल
1: कोई दो राय नहीं है। जैसा आप मेंशन कर रही थी डॉक्टर तिवारी, उज्ज्वला योजना की,
2: जी जी,
1: उज्ज्वला योजना जो महिलाओं के लिए एक देन है, उस पर आपकी टिप्पणी।
2: जी, मैं इसलिए कहना चाह रही थी क्योंकि हमारे भी कई विद्यार्थी हैं या युवाओं से मैं मिलती हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र में से आते हैं, तो महिलाओं का खासा समय जो है वो लकड़ी चुनने में और फिर चूल्हे पे खाना बनाने में निकल जाता था, तो उस वजह से मैंने ये महसूस किया कि उज्ज्वला योजना के आने के बाद जब उनके पास गैस की सुविधा आ गई है तो न केवल समय बच रहा है बल्कि बचे हुए समय का वो एक सकारात्मक उपयोग, एक रचनात्मक उपयोग कर पा रही हैं।
1: जी जी, और इस योजना का महिला स्वास्थ्य पे तो बिल्कुल सकारात्मक असर पड़ा है,
2: बिल्कुल
0: बहुत बिल्कुल
1: अच्छा। जो धुआं गर्मी और इनसे उनको राहत,
0: समय भी ज्यादा लगता था।
1: जी जी, जी जी जी, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है खाना बनाने में
2: बिल्कुल
1: वो जाया होते थे,
2: जी
1: अब खाना भी बना रही हैं। हाँ। और दूसरे
2: बल्कि मुझे लगता है वैरायटी ऑफ खाना भी बना सकती हैं क्योंकि समय ज्यादा है और क्विकली वो है बन जाएगा वो।
1: जी जी, महिलाओं के सहायता के लिए एक और काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत की गई देश भर में, वन स्टॉप सेंटर। इसमें उनको मेडिकल सहायता से लेकर लीगल सहायता, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और टेम्पररी शेल्टर भी दी जाती है। महिलाओं के लिए जो इस तरह की एक शुरुआत की गई वन स्टॉप सेंटर की, उसका कैसा सकारात्मक असर होगा अमरेंद्र जी?
0: देखिए, वन स्टॉप सेंटर जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि आप एक जगह पहुंचिए, आपको तमाम तरह की आवश्यक जो जानकारी चाहिए सुविधा चाहिए वो मिलेगी, तो अब दर दर भटकना नहीं पड़ता है। अगर तीन सूचना चाहिए तो तीन जगह जाने के बजाय आप एक सेंटर पर, जैसे इंडस्ट्री के लिए एक कंसेप्ट आया था सिंगल विंडो सिस्टम, एक खिड़की पर जाइए, एक ऑफिस में जाइए, तमाम चीज आपको मिल जाएंगी, तो ये उसी तरह की योजनाएं हैं और कंसेप्ट लगता है वहीं से मिलती जुलती। तो इसमें है कि एक महिला, पहले समय का अभाव रहता है, झिझक होता है, अब जो महिलाएं दहलीज पर से आगे बढ़ रही हैं वो एक जगह अगर जाती हैं तो उनको तीन सुविधाएं मिल जाएंगी, चार सुविधाएं जो वन स्टॉप सेंटर का क्राइटेरिया है या जो जो अवेलेबल है सुविधा है, तो एक ही जगह जाने से सुविधा मिलती है, हिचक टूटती है और उत्साहित होती है कि लगता है कि जाएंगे तो एक ही दिन जाएंगे, एक ही जगह जाएंगे तो तमाम मेरे समस्या का निराकरण हो जाएगा, जो जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी, तो ये बेहतर परिणाम आने वाला है। झारखंड सरकार भी हाल के दिनों में शुरू की है कुछ जिलों में और आगे बढ़ाने की भी योजना है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल है और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए।
2: पूनम जी, इसमें एक चीज जरूर है कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत है, डोमेस्टिक वायलेंस का उनको सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में जो महिलाएं अकेली रह जाती हैं, जो घर से बाहर निकाल दी जाती हैं किन्हीं वजहों से, समाज उनके साथ बहुत न्याय नहीं कर पाता, ऐसे में ये वन स्टॉप सेंटर जो है वो उनके लिए बहुत ही संरक्षण का काम करेंगे और कर रहे हैं। और इसको तो मैं समझती हूँ कि

0: और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एक उनके लिए करियर काउंसलिंग, और जैसा आपने कहा कि लीगल काउंसलिंग तो होती है, लेकिन उनको करियर भी एक देने का कुछ काम वहाँ पर हो सके, और लंबे समय तक जो है वो रहने की व्यवस्था ना करके बल्कि उनको आत्मनिर्भर बनाकर और फिर समाज में वापस अपने पैरों पर खड़े होने की अगर तैयारी की जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो सरकार ने इस दिशा में काम किया है यकीनन, लेकिन और बेहतर काम की गुंजाइश है।
1: जी जी, और सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की है 181, ये 2400 घंटे सातों दिन है, जिसमें जो महिलाएं डिस्ट्रेस में हैं वो अपने रेस्क्यू के लिए, हॉस्पिटल के लिए, पुलिस के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर है, इससे महिलाओं में एक अलग तरह का साहस जगा है। यहाँ उनको असिस्टेंस मिलती है कि हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाएगा, पुलिस उनके पास आएगी, रेस्क्यू वैन्स उनके पास आ जाएंगे, ये भी उसी का एक एक्सटेंडेड हिस्सा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सरकार ने कुछ ऐसे भी कदम उठाए हैं, जैसे सेना में महिलाओं की मौजूदगी हमें दिखती है, और उससे जो बाकी महिलाएं हैं उनका जो एक नजरिया बनता है, एक जो वैचारिक लक्ष्य उनका जो तय होता है, उस पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। आपकी टिप्पणी चाहूंगी
0: पूनम जी। मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं तो सेना में आने लगी थी, मगर बहुत सारी चीजें जो है वो प्रतीकात्मक होती हैं, और किसी भी डेमोक्रेसी में इसका बहुत महत्व होता है। जब आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर डिफरेंट लेयर्स के, डिफरेंट स्तर के लोग हैं, जहाँ चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हो, तो उस समय ऐसे प्रतीकों का या ऐसे प्रतिनिधित्व जो कि अपने अपने जेंडर का वो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, बहुत फर्क पड़ता है। हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमारी दो सेना की महिला अधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की। अब चुनाव उनका महिला होने के नाते नहीं किया गया, लेकिन उसका एक जो इम्पैक्ट पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, विशेष रूप से महिलाओं के,
1: युवा महिलाओं पर,
0: और एक जो एस्पिरेशन जागती है कि हम भी वहां हो सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा रिपब्लिक डे में उनकी एक विशेष टुकड़ी है और एक महिला जो है वो सबका नेतृत्व कर रही है। तो ऐसे कुछ जो चुनाव किए जाते हैं, मैं समझती हूँ कि उससे बहुत असर पड़ता है। हमारी बहुत सारी वाइस चांसलर अभी महिला हो रही हैं। हाल ही में जो खबर आई, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की इस समय 4 राज्यों की महिला हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां ये पता चलता है कि सरकार की मंशा है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, महिलाएं आगे आए, अपने गुणों पर और अपनी काबिलियत पर आए, लेकिन उनको आने में जेंडर जो है वो किसी प्रकार की रुकावट ना बने। और हम इस समय झारखंड में बैठे हैं, और अगर मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात ना करूं तो ये ठीक नहीं होगा। वो तो वो खुद अपने आप में जिस प्रकार से एक स्थानीय स्तर पर संघर्ष करके जिस मकाम पर पहुंची हैं, वो मुझे लगता है कि ना सिर्फ भारत का, भारत की सरकार का, भारत की महिलाओं का, भारत के समस्त लोगों का जो विचार है महिलाओं के उत्थान के प्रति, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी
2: कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं चल रही है, जो कंसेप्ट है, अभी जो घर घर चर्चा हो रही है, समाज में चर्चा हो रही है, डिबेट का विषय तो अभी एक अवसर पर आ गया, लेकिन इसमें जो एम्पावरमेंट के लिए जो काम हो रहा है, अगर इसको कहें एक लाइन में कि महिलाएं अब केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं है विभिन्न योजनाओं को लेकर के, वो भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार और नेतृत्वकर्ता बन रही है, जिसका उदाहरण इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर कई लोगों की चर्चा की। अभी सेना में महिला की बात हो रही थी, हमारी लड़कियां जा रही हैं। आज के डेट में देखेंगे कि आप स्टेट पुलिस में टॉप अप की जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें आपको धड़ल्ले से महिलाएं मिलेंगी, बच्चियां मिलेंगी, और वो बहुत उत्साह के साथ आगे करेंगी। अब ये समाज का जो सकारात्मक दृष्टिकोण बदल हुआ है पहले की तुलना में, उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, और इसका सार्थक परिणाम सामने आ रहा है।
1: जी जी जी, हायर एजुकेशन में महिलाएं आगे आई हैं और उनका जो नामांकन बढ़ा है 61 लाख से भी अधिक हुआ है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर महिला शिक्षित होती है तो वो अकेले नहीं होती, उनके साथ पूरा परिवार शिक्षित होता है, एक नई सोच मिलती है देश को, एक दृष्टिकोण मिलता है। तो हायर एजुकेशन में लड़कियों का आना स्वागत योग्य है, और मुझे लगता है कि सरकार की कई योजनाएं, क्योंकि आपने देखा एक जनधन योजना है जिसमें बच्चियों के बैंक खाते खुल गए हैं और डायरेक्ट उनको
1: स्कॉलरशिप। जनधन योजना की बात नहीं करते तो यह चर्चा अधूरी रह जाती।
0: इसलिए बात करना बिल्कुल
1: बहुत जरूरी
0: है, एम्पावरमेंट जो है वो मिला है और सीधे योजनाओं के लाभ उनको मिल रहे हैं। अगर वो उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाना चाहती हैं तो वो सहयोग राशि उनको मिल रही है, और फिर जैसा मैंने कहा कि करियर में जब वो आना चाह रही हैं तो वो रुकावटें कम हुई हैं जो

0: शिक्षा में आगे बढ़ना, भागीदारी बढ़ना, ये और बड़ी उपलब्धि है। ये जो डेटा बता रहा है, और आप तमाम जगह हमें हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं, कई मामलों में तो लड़के के तुलना में लड़कियां का उपस्थिति ज्यादा है।
1: हाँ,
0: वो पीछे छोड़ दे रही है,
1: चाहे
0: रिजल्ट का मामला हो या कहीं सिलेक्शन का मामला हो।
1: जी, कई परीक्षाओं में ऐसे परिणाम
0: देखने को मिले।
1: हालांकि हम चाहेंगे कि एक समन्वय बना रहे, ये कोई लड़का लड़की वर्सेस ना रहे, लेकिन जिनके पास भी योग्यता है वो आगे।
2: जी,
1: ये जनधन योजना के आने के बाद से वो ना सिर्फ बचत कर रही हैं, बल्कि उनको ये एहसास होने लगा है कि एक खास राशि जो है वो उनके पास है, जिसका वो स्वास्थ्य, शिक्षा या कभी अपने मनोरंजन के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए वो खर्च कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इस योजना से महिलाओं को विशेष तौर पर बहुत लाभ हुआ है।
0: बैंक अकाउंट खोलने का जो कंसेप्ट आया
1: जी,
0: तो उसी के बाद डीबीटी योजना सफल हो पाई। अब डीबीटी योजना से डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है, तो बहुत सी अबला महिलाओं का घर में ही आदर बढ़ गया है।
1: जी, जी।
0: उनके सास का, उनके हस्बैंड का, अगल बगल के पड़ोस का बोलने का लहजा बदल गया है, और उससे वो आत्मनिर्भर भी हो रही हैं, एक सम्मान का जीवन भी जी रही हैं, और अपनी आवश्यकताओं को अपने ढंग से पूरा भी कर रही हैं। तो ये जनधन योजना के साथ साथ ये जो डीबीटी का जो उसका बेनिफिट, उसका सार्थक परिणाम आ रहा है सामने।
2: जी जी, और इन सब योजनाओं का जो एक असर पड़ा है वो है सेक्स रेशियो में, लिंगानुपात में बच्चियों का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। 2014-15 में लिंगानुपात में 1000 लड़कों में बच्चियों की संख्या 918 थी, तो ये 2024-25 में बढ़कर 929 हो गई है।
1: ये सुखद खबर है, और किसी एक योजना को हम लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि मुझे लगता है कि कलेक्टिव प्रयास जो हुआ है सामूहिक रूप से, कि अब बच्चियों का जन्म लेना जो है वो माता पिता को बोझ नहीं लग रहा, अब बच्चियों का जन्म लेना बल्कि एक सुखद अनुभूति लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें समान अवसर मिलेंगे।
2: और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक अभियान शुरू हुआ, बेटियों के जीवन रक्षा, संरक्षण और शिक्षा को लेकर, तो उससे हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव बालिकाओं के नजर से भारत में डेवलप होगा।
1: जी, निश्चित रूप से, क्योंकि बेटियों को बचाना भी जरूरी था और बेटियों को पढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि वो जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, वो परिवर्तन की बयार जिसकी हम कल्पना करते हैं देश में बहने की, वो नहीं बह सकती। तो मुझे लगता है पिछले एक दशक में 12 सालों में सार्थक प्रयास हुए हैं।
2: तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर नेहा तिवारी, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, और श्री अमरेंद्र कुमार, ब्यूरो प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर रांची। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आभार, धन्यवाद। आभार।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय था महिला सशक्तिकरण। परिचर्चा में भाग ले रहे थे डॉक्टर नेहा तिवारी, प्राध्यापक पत्रकारिता विभाग करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, और श्री अमरेंद्र कुमार, ब्यूरो प्रमुख दैनिक भास्कर रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम करकट्टा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 4,399 दिन के कार्यकाल में देश के समग्र विकास को रफ्तार दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के तौर पर श्री मोदी के सेवा करने के खास सम्मान के लिए उन्हें बधाई दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। एनडीए समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार परिमल नाथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस विधायक के आपत्तियों के बाद उनका नामांकन होल्ड पर रखा था। हालांकि दो दिनों तक चले विवाद के बाद आखिरकार परिमल नाथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा बालू उत्खनन पर रोक लगते ही गुमला जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त के आदेश पर आज जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा बालू घाटों और भंडारण स्थलों पर व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नागफेनी नदी

0: घाट पर ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर उसका परिवहन करते हुए पाया गया। इस मामले में खान निरीक्षक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। राज्य में मौसम के बदले मिजाज की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बढ़ते कदम। सूत्रधार कमलेश कुमार मिश्र, प्रस्तुति प्रभु शरण की।
2: कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। श्रोताओं, बढ़ते कदम कार्यक्रम की कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपके बीच उन तमाम जानकारियों को लेकर आएं जिससे हम और आप अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़े। आज कार्यक्रम में हम बच्चों की बात करने वाले हैं। आज हम कार्यक्रम में बच्चों की क्रिएटिविटी की बात करने वाले हैं। आज हम कार्यक्रम में झारखंड सरकार द्वारा विभाग है सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष एक समर कैंप लगाया जाता है जहां पे बच्चों को एक मंच दिया जाता है। और इस बार की बात करें तो रांची के आड्रे हाउस में 26 मई से लेकर 11 जून तक ये आयोजित किया गया है समर कैंप। और विधाएं अलग अलग हैं, चाहे बात आप नृत्य की करें, चाहे बात आप संगीत की करें, बात आप चित्रकला की करें, आप आर्ट एंड क्राफ्ट की करें, बहुत सारे विधाएं, योग की बात करें, तो बच्चे आ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, उनको एक अनुभव मिल रहा है। अच्छी बात ये है कि बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए प्रत्येक विधा से अनुभवी शिक्षक यहाँ पे उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हमारे साथ। पेंटिंग में बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि जब मैं आड्रे हाउस घूमा और देखा कि समर कैंप में किस तरह का रिस्पांस मिलता है, तो बहुत ही एक जब नज़ारा आप देखेंगे कि छोटे बच्चे योग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, आकर्षक वो आकृतियाँ उकेर रहे हैं पन्नों पर, तो शुरुआत पेंटिंग से ही करते हैं। हमारे साथ में सर, आपका नाम क्या हुआ?
3: मेरा नाम है गौतम बख्शी।
2: गौतम सर, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है समर कैंप में आप?
3: बहुत
2: एक
3: अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया। इतना बच्चों लोग का प्यार मिलता है, बच्चा को अच्छा अच्छा सिखाया जाते हैं, बच्चा का जो जो प्रॉब्लम है, कोई इंटरेस्ट है पेंटिंग ड्राइंग करने का इच्छा होता है, उसको हेल्प कर देते हैं, उसको बताते हैं कैसे कैसे तुम बढ़ाओगे, इस तरह का कलर होगा।
2: आप पेंटिंग शिक्षक हैं, मैंने देखा कि आप बस पेंसिल उठा रहे हैं और ड्रॉ करते जा रहे हैं। सो एक पेंटिंग की जब बात करते हैं, भी के समय में कितना जरूरी है ये बच्चों के लिए?
3: बच्चों का मेमोरी कल्पना जो इमेजिन होता है वो बच्चा का थोड़ा सा डाउन है, उसको पता होता है हम कैसे बनाते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ तक पूरा हो जाता है, तो बच्चा का ऐसा हाँ सर हम कभी बता दीजिए तो उसको हम बता देते हैं कैसे कैसे करना चाहिए।
2: आपकी ज़िंदगी में जब पेंटिंग की बात करते हैं क्या महत्व रखता है? आप कितने वर्षों से ये कर रहे हैं?
3: हम तो ऐसे 1982 से लेकर के आज 2026 तक कर रहे हैं। रांची में ही है, रांची में मैंने कॉलेज किया है पढ़ाई अपना, ड्रोंडा कॉलेज का ये वीर के बाद हम कोलकाता में फाइन आर्ट का ये सब किए अपना आगे का। हम अपना क्लास का पहले हम स्कूल में टीचर थे, गुरु नानक स्कूल में आर्ट टीचर थे, 2019 में हमारा रिटायर हो गए। अब हम उनको इस तरह का अपना बच्चों को जो जो गरीब लोग है वो नहीं कर पाता, उसको हम सामान भी देते हैं, बढ़ाओ बच्चा का भी मन भी फील होता है, जो गरीब लोग हैं उनको भी मदद करते हैं।
2: बहुत बहुत बधाई सर, और आप बच्चों को समर कैंप में इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी हमने देखा कि आपके साथ सीख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: थैंक यू सो मच।
2: और अभी हमारे साथ अब पेंटिंग ही यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हैं, सीख रही हैं, क्या नाम है आपका?
4: संजना कुमारी।
2: संजना, पहले तो कैंप में आके कैसा लग रहा है, क्या कुछ अब तक सीखी है आप?
4: पहले तो मैं पेंटिंग सीख रही थी, फिर अभी शेडिंग कर रही हूँ।
2: कैसा लग रहा है यहाँ पे आके?
4: अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। तो
2: कैसा लगता है कि जब सरकार इस तरह की इनिशिएटिव लेती है जहाँ पे बच्चों को कोई पैसे नहीं देने हैं और इतना अच्छा समर कैंप जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्या कहना चाहती हैं?
4: ये सरकार मतलब अपने हिसाब से एक अच्छा प्रयास कर रही है ताकि जो हम लोग अपना क्रिएटिविटी और निकाल के ला सके, ऐसे सर लोग को अपॉइंट करती है जिस वजह से हम लोग को भी हेल्प होता है कि हम अपना जो स्किल्स है उसको और अच्छे से सुधार सकें।
2: तो इंटरेक्ट भी करती है, टीचर से मिलती है, बात करती है, आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं आप लोगों को?
4: हाँ, अच्छे से गाइड करते हैं, बताते हैं कि कैसे करना है।
2: और अभी एक और स्टूडेंट हमारे साथ में, क्या नाम है बेटा आपका?
5: मेरा नाम श्रेष्ठ राय है।
2: किस क्लास में?
5: मैं 8D में हूँ।
2: तो तुम पहले दिन से आ रहे हो जब से यहाँ पे समर कैंप की शुरुआत हुई?
5: हाँ मैम।
2: क्या कुछ सीखे यहाँ पे आके?
5: मैंने चित्रकला सीखा, खूब सारे स्टेट के फोक आर्ट को बनाया के बारे में सीखा, और मैंने मंडाला आर्ट भी खूब सारे बनाया।
2: मुझे ये बता, तुम कब से पेंटिंग कर रहे हो, क्या इंटरेस्ट रखते हो पेंटिंग में?
5: पेंटिंग मेरी एक फेवरेट हॉबी में आती है। मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट लास्ट 5 ईयर्स से है। मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग करना।
2: जब पेंटिंग बनाते हो क्या कुछ दिमाग में होता है, जैसे जब यहाँ पे तुम बोले मंडाला आर्ट के बारे में सीखे, कल्चर के बारे में सीखे, क्या कुछ दिमाग में चलता है तुम्हारा जब पेंटिंग करते हो, क्या सोचते हो, कैसे क्रिएट करते हो?
5: मुझे, मैं सच बताऊँ तो उनको SST बहुत अच्छा लगता है, उसका हिस्ट्री पार्ट। तो हम सोचते हैं कि कुछ हिस्ट्री के टॉपिक पे पेंटिंग करें, इसलिए हमको मंडाला आर्ट, अलग अलग स्टेट का फोक आर्ट बनाने में अच्छा लगता है।
2: कैसा लग रहा है यहाँ पे, इतने सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं?
5: हमको बहुत अच्छा लगता है कि खूब सारे मेरे फ्लैट से भी आते हैं, फिर खूब सारे नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग करना।
2: मम्मी पापा क्या कहते हैं जब तुम घर पे जाते हो या फिर जब पेंटिंग का अपना इंटरेस्ट दिखाते हो, क्या कहते हैं मम्मी पापा?
5: मम्मी पापा कहते हैं कि और अच्छा करो, और आगे बढ़ोगे। फिर मेरा ये मन है कि हम आगे जाके आर्टिस्ट बने।
2: बहुत बहुत बधाई बेटा, और ऑल द बेस्ट, तुम फ्यूचर में अच्छा पेंटिंग करो।
5: थैंक यू, धन्यवाद।
2: तो आज हम झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित समर कैंप में है, और यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे बच्चों से, कैंप में शामिल बच्चों से बात कर रहे हैं, अलग अलग विधा के बच्चों से बात करेंगे, जो योग में है, जो नृत्य में है, और जो, आपका क्या नाम है?
6: मेरा नाम शिवांशी सिंह है।
2: शिवांशी किस क्लास में हो?
6: 7 है।
2: पहले तो बताओ कि समर कैंप में तुम यहाँ पे आए, इतने सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है इस माहौल में आके?
6: इस माहौल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबके के साथ एक साथ ड्रॉ करने में अपना हॉबी चूज करके अच्छे से सीख सकते हैं।
2: एक कॉम्पिटिशन भी आता है कि, क्योंकि इतना तो ऐसा मौका नहीं मिलता कि इतने सारे बच्चे एक साथ हो, कहीं जाते होंगे तो एक होते होंगे, दो होते होंगे, लेकिन एक साथ इतने बच्चे नहीं होते होंगे।
6: दीदी लोग बहुत अच्छा अच्छा वाटर कलर, पोस्टर कलर किए उनके साथ, मुझे भी मन करता है कि मैं अच्छे से बनाऊं, सर को दिखाऊं।
2: तो आप क्या बेसिकली ड्रॉ करते हो, पेंटिंग में क्या पसंद करते हो?
6: आई मोस्टली ड्रॉ वाटर कलर एंड स्केच।
2: क्या करना चाहते हो पेंटिंग में, किस तरह के ड्रॉ ज्यादा पसंद करते हो, किन चीजों पे ज्यादा ड्रॉ करते हो?
6: लाइक सीनरी, एनिमे कैरेक्टर, फेसेस एंड ऑल।
2: क्या एक बेनिफिट होता है, क्योंकि जब लोगों से बात करते हैं पेंटिंग की तो एक इमेजिनेशन की वो हमेशा बात करते हैं, तो तुमको क्या लगता है कि पेंटिंग करने से क्या एक फायदा मिलता है एज अ स्टूडेंट?
6: उसे सीख सकते हैं बायोलॉजी में आगे चल के, बहुत डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ता है तो उसमें सीख सकते हैं।
2: यहाँ पे जब तुम आए समर कैंप में और गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है, अच्छा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट बच्चों के लिए भी इस तरीके से सोचती है, इस तरह का समर कैंप आयोजित करती है?
6: ये तो बहुत अच्छा तरीका है, जो लोग फीस नहीं भर पाते हैं ड्राइंग के लिए, वो लोग इधर आके बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और उनका भी आगे चल के कुछ करियर बन सकता है।
2: ओके, थैंक यू बात करने के लिए।
6: वेलकम।
2: आप जब इस समर कैंप को देखेंगे तो यहाँ पे हमारी संस्कृति की हर वो झलक देखने को मिलेगी। एक तरफ बच्चे योगा कर रहे हैं, तो एक तरफ बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे एक्टिंग भी सीख रहे हैं, नाटक मंचन भी सीख रहे हैं, और अब नाटक के ही प्रशिक्षक हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका?
7: मेरा नाम ऋषिकेश लाल हुआ।
2: ऋषि, पहले तो कैसा लग रहा है जब यहाँ पे कैंप में आप लोग प्रशिक्षक के तौर पे आए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है?
7: बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार की यह जो पहल है, बच्चे घर घर में मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, और कम से कम यहाँ 4 घंटा वो बच्चे उनकी जो कला है, उनके अंदर जो चीज़ है वो निखर के आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे प्रशिक्षक को इतने अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं जो हमारे साथ हमें सहयोग कर रहे हैं ताकि हम अच्छी प्रस्तुति दे सकें, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
2: एकदम अपने अंतिम पड़ाव में आपका ये समर कैंप है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब नाटक की बात करते हैं तो एक समय में पहले लगता था कि लोग नाटक से अब दूर हो रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, सो एक नज़र आ रहा है उनके माता पिता में भी इंटरेस्ट है, बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं अब।
7: बच्चों में वो एनर्जी है, उस एनर्जी का बच्चे उसका उपयोग करना चाहते हैं पर उन्हें स्थान नहीं मिल पाता है। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। जो छोटे बच्चे जो इच्छुक हैं, आप देखिएगा यहाँ 500 बच्चे हैं इस समर कैंप में, और 500 बच्चे के माता पिता को ही इच्छा है कि हमारे बच्चे इस फील्ड में जाए। पेंटिंग में है, योगा है, फैशन शो है, डांस है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि देखिए माता पिता को लगता है ना कि जो काम हम नहीं किए
2: वो हमारे बच्चे करें। और सरकार इतना अच्छा मंच भी दे रही है,
7: इतना अच्छा मंच दे रही है। 11 तारीख समापन है, उसी दिन उन लोगों की प्रस्तुति होगी। अब पेंटिंग में देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाए, जिन्होंने कभी नहीं बनाया है वो कार्टून बना रहे हैं। डांस में जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है और वो अच्छा भी कर रहे हैं। और जैसे हमारे विधा को ले लीजिए, नाट्य कला को ले लीजिए, हमारे यहाँ भी जो बच्चे जिन्होंने कभी नाटक नहीं किया है और जब हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। क्या कि वो इमोशन को वो फील कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे उस फीलिंग्स को ला रहे हैं, तो उनका जो बचपन है वो भी दिख रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो युवा हो वो भी दिख रहा है, उसका मिश्रण दिख रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उतने छोटे छोटे बच्चों को जो भी स्क्रिप्ट, और सबसे बड़ी बात है कि उनको स्क्रिप्ट बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी चूक जाते हैं किसी डायलॉग में। वो खुद डिस्कस करते हैं, नहीं नहीं नहीं ये डायलॉग के बाद इसका डायलॉग है, देखे ना सर वो डायलॉग बोला ही नहीं, मेरा डायलॉग खा गया। तो ये
2: हाँ, बहुत बहुत बधाई ऋषि हमसे बात करने के लिए और बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए,
7: धन्यवाद।
2: आइए, ये तो ऋषि थे प्रशिक्षक है, अब हम कुछ बच्चों से बात करते हैं जो इस विधा में सीख रहे हैं। और एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, मैंने देखा कि मंच पे वो कुछ नाटक मंचन कर रही है। बेटा क्या नाम है आपका?
8: श्री।
2: किस क्लास में हो?
8: फोर।
2: फोर में। पहले तो ये बताओ समर कैंप में आके कैसा लग रहा है?
8: सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे आके एकदम स्ट्रेसलेस हो जा रही हूँ, और हॉलीडे होमवर्क्स की भी उतनी ज्यादा चिंता नहीं रहती है यहाँ पे आने के बाद।
2: तो आप क्या आप तैयारी कर रहे हो, क्या क्या यहाँ पे सिखाया गया अभी तक?
8: हम लोग एक नाटक कर रहे हैं जिसका विषय है मृदंगिया, और उसमें मेरा कैरेक्टर है, मेरा नाम उसमें बुचिया है। मेरी जल्दी से बाल विवाह हो जाती है, लेकिन मुझे बाल विवाह करने का मन नहीं था। उसके बाद कुछ ही सालों बाद मेरे पति मर जाता है, उसके बाद मेरे पास सिर्फ मैं और मेरा बच्चा बचता है। फिर मैं एक बार एक मृदंगिये को देखती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। मैं उसके बाद विधवा बन जाती हूँ, लेकिन एक समाज का डर जो अंदर बैठा हुआ था उसे मैं मिटा नहीं पा रही थी, और उसी डर ने एक दिन मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया।
2: इसका मतलब है कि एक सोशल मैसेज आप नाटक के माध्यम से दे रही है। कितना अच्छा लगता है आपको ये एक्टिंग करना, इस तरह के मंच पे आना, कितना अच्छा लगता है?
8: सर हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगता है कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास।
2: थैंक यू बेटा हमसे बात करने के लिए।
8: वेलकम।
2: समर कैंप की बात कर रहे हैं तो अलग अलग रंग हमें देखने को मिल रहे हैं अपनी ही संस्कृति के। अब हमारे साथ शुभम है और ये कथक पे सिखा रही है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं। पहले तो मैम ये बताएं कि कैसा लग रहा है जब से समर कैंप की शुरुआत हुई, आप लोग प्रशिक्षक के तौर पे आई और इतने सारे बच्चे आ रहे हैं?
9: बहुत खुशी हो रही है कि लोग क्लासिकल डांस फॉर्म को वैल्यू कर रहे हैं और आ रहे हैं, इतनी सुबह सुबह आते हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं ये कैंप अटेंड करने के लिए, सीखने के लिए, तो हमें बहुत खुशी हो रही है।
2: सो ये एक इनिशिएटिव जो झारखंड गवर्नमेंट का है जो हर साल होता है और इस बार भी इतना बेहतरीन ढंग से हुआ, ये इसको आप लोग कैसे देखती हैं?
9: ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतना अच्छा स्टेप लेकर के आगे बढ़ रही है और ना सोचा है बल्कि प्रैक्टिकली इसको कर रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट कि ये बहुत अच्छी कोशिश है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, रियली अप्रिशिएट।
2: सो लाइफ में अगर मैं एक डांस टीचर के तौर पे आपको देखूं, सो डांस किस तरीके से हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है, या आप इसे कैसे देखती हैं, क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए?
9: एक तो बच्चों का व्यक्तित्व पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत काम करता है, दूसरा कॉन्फिडेंस देता है। जो भी बच्चे डांस से रिलेटेड है, आप स्टेज फियर उनका ख़त्म होता है, होता है, स्टेज फियर खत्म होगा परफॉर्मेंसेस करके, तो वो कहीं पे भी वो हेजिटेट नहीं करेंगे, अपनी बात रख सकेंगे, एक कॉन्फिडेंस उनमें आता है। और दूसरी बात की पढ़ाई में भी जो उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बहुत इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ भी कथक में भी हम लोग बहुत सारी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, उसमें बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ के साथ साथ इनकी बाकी एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई हो या और भी एक्टिविटीज़ जो ये लोग करेंगे उसमें भी इनको काफ़ी हेल्प होगा। एंड प्लस फिजिकल एक्टिविटी है तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, उनका पॉस्चर्स, वो सब ठीक तो होगा ही।
2: चलिए बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
9: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे बात किया, मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने का, थैंक यू सो मच।
2: और अब समर कैंप की इसी विधा की एक स्टूडेंट हमारे साथ में, क्या नाम है आपका?
10: रश्मिता।
2: रश्मिता किस क्लास में हो?
10: मैं तो अभी 10th में हूँ।
2: 10th में हो, पहले तो बताओ समर कैंप ज्वाइन जब से किए आ रहे हो कैसा लग रहा है?
10: फर्स्ट डे से बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, जैसे कि मुझे सबसे पहले पता चला मैं कथक में गई हूँ, मुझे पता नहीं था ये बात, मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था मैं कहाँ जाऊँगी। उसके बाद मैम से मिली, मैम बहुत अच्छी है, हम लोग से पहले बात की, उसके बाद फिर हम लोग को एक एक करके स्टेप सिखाया, और फिर धीरे धीरे पता चला कि कथक होता क्या है। कथक एक्चुअली होता है एक कहानी होता है जिसको डांस की तरह हम लोग परफॉर्म करते हैं।
2: तो पहले आप नहीं सीख रहे थे, अभी समर कैंप में आके ही कथक की शुरुआत की हो?
10: हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा।
2: तो अच्छा सा एक्सपीरियंस रह रहा है, लोगों से इंटरेक्शन भी होता है?
10: हाँ, बहुत होता है।
2: दोस्त बने आप?
10: बहुत बने, जितने लोग हैं सब मेरे दोस्त हैं, सब आके बात करते हैं, बहुत अच्छा है सब।
2: सो अब जब यहाँ पे आए कैंप में, पहली बार आप डांस में आए, क्या एक फर्क पड़ रहा है आपकी पर्सनैलिटी पे, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या कुछ सीखने को मिला?
10: सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि हमें 15 दिन में सीखना है और स्टेज में जाके उसे परफॉर्म करना है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। उसके बाद फिर एक अलग सा अंदाज मिल रहा है कि कैसे एक्सप्रेशंस आता है, हाथ का पोस्चर कैसा जाता है, फिर एक होता है तत्कार, उसको किस तरह से हम लोग को करना है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है।
2: एंजॉय कर रहे हो समर कैंप को?
10: हाँ, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, 15 दिन मतलब बहुत सही रहा हम लोग।
2: बहुत बहुत शुक्रिया रश्मिका। और हमारे साथ अब अंजलि चक्रवर्ती है और ये प्रशिक्षण दे रही है आर्ट एंड क्राफ्ट में, यहाँ भी बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। पहले तो आप बताए कि आप भी एक आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक के तौर पे क्या कुछ एक्सपीरियंस आ रहा है इस समर कैंप का?
11: ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ बच्चों के साथ करके। मेरा एक्चुअली मोटो है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है जो हम लोग थ्रो कर देते हैं, जिसका उसको रिसाइकलिंग करें, रीयूज करें, और उसी से होम डेकोर बना दे, कुछ जो यूज़ करने वाले चीज़ है, यूजफुल थिंग्स उसमें बना दे। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग प्लास्टिक के बॉटल से नेस्ट, अभी बर्ड्स के लिए क्योंकि पेड़ कट जा रहा तो नेस्ट है नहीं, तो हम लोग नेस्ट बनाना सिखा रहे हैं। न्यूज़पेपर जो हम लोग थ्रो कर देते हैं रद्दी में, हम लोग उससे सारा सामान होम डेकोर बना रहे हैं, आपका डिफरेंट बड़े बड़े श्वान्स बना रहे हैं, देन आपका बॉटल आर्ट करवा रहे हैं, पेपर बैग्स से नो टू प्लास्टिक्स, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द पेपर बैग्स, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग आइए और देखिए।
2: बच्चों में क्या इंटरेस्ट नजर आ रहा है, और ये जो एक 26 तारीख से शुरू हुआ और अब अंतिम चरण में कल परफॉर्मेंस होने वाला है, सो कितना चेंजेस देखे बच्चों में, किस तरह का इंटरेस्ट देखे?
11: बहुत चेंजेस है, बहुत चेंजेस, बच्चे बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि एक वेस्ट चीज जिसको डस्टबिन में हम लोग फेंक देते हैं उससे वो लोग एक अच्छे अच्छे चीजें बना दे रहे हैं, जिससे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर लोग देखने आ रहे हैं। ये एक अलग ही स्पॉटलाइट का जगह है जहाँ सो स्टॉपर बोल सकते हैं कि सभी लोग आकर एक बार जरूर रुकते हैं यहाँ पे।
2: ये जो इनिशिएटिव है झारखंड गवर्नमेंट का, सो इस इनिशिएटिव को आप लोग कैसे देखते हैं?
11: ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर वर्ग के बच्चे यहाँ आकर के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे आ रहे हैं या फिर नीचे लेवल वाले बच्चे नहीं आ पा रहे, मिडिल क्लास के फैमिली, सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको इतना अच्छा से ध्यान दिया जा रहा है, इवन टीचर्स लोग को भी बहुत अच्छे से केयर, बहुत रिस्पेक्टफुली यहाँ पे आकर हम लोग करवा रहे हैं, बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड, सब लोग एक ही स्तर पे आकर के कर रहे हैं, सबसे बेस्ट पार्ट यही है क्योंकि सब इक्वली लर्न कर रहे हैं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अंजलि जी। एंड एक शिक्षक के तौर पे आखिरी सवाल, आपके लिए भी एक बहुत अच्छा ये अनुभव है?
11: बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि जब बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं एक बिल्कुल फेंका हुआ चीज से अगर कुछ बना पाते हैं, कुछ एक लोग उसके आकर तारीफ कर रहे हैं, देखने के लिए सभी लोग आ रहे हैं, अभी एग्जीबिशन शुरू नहीं हुआ बट भीड़ लगने शुरू हो गई है, तो इससे ज्यादा गर्व की बात कुछ और हो नहीं सकती है, मेरे लिए तो यही है।
2: यानी कि ये जो 26 से लेके 11 तारीख तक ये बच्चे सीखे, अब उसका एग्जीबिशन भी होगा और लोग इसे देखेंगे भी।
11: बिल्कुल बिल्कुल, लोग आ के देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, इससे बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा, आगे फ्यूचर में वो लोग करेंगे। हम लोग का ये है कि मोटो की सिर्फ ये 15 दिन के लिए नहीं, ये लोग साल भर इसको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अपने कोर्स वाले बुक का भी बना सकते हैं। ये लोग को बेसिक पूरा नॉलेज मैंने इनपुट कर दिया जितना मिस से हो पाया।
2: एक जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं, आपको क्या लगता है आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे जिंदगी में क्या चेंजेस लाता है?
11: ये क्रिएटिविटी है सबसे पहले तो, बच्चों को स्मार्ट, ये जो आजकल फोन के लत है इससे दूर करता है। बच्चे अपना हॉबीज इसको अगर इंटरेस्ट में ले लेते हैं तो जो भी खाली टाइम रहता है उसमें स्ट्रेस फ्री लाइफ करते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई का प्रेशर

0: और ये सब इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये आपका आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, क्रिएटिविटी, कितना हम लोग क्रिएटिव वर्क्स कर सकते हैं उसमें, अपने आप को उसमें डाल सकते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे जो भी बच्चे हैं इतने इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं कि आई होप कि वो लोग थ्रू आउट द ईयर इसको कंटिन्यू रखेंगे, इतना वो लोग के अंदर में आ गया है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: अब कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट से हमारे साथ में। क्या नाम है तुम्हारा?
2: इशिका कुमारी।
1: इशिका, आपका?
2: श्रेया।
1: और आपका?
3: तनश्री देव।
1: क्या कुछ सीखने को मिला जब समर कैंप में आए, क्या कुछ सीखने को मिला?
3: वी लर्नड अ लॉट ऑफ टेक्निक्स दैट वी डोंट नो। ऑल्सो मैम इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी फ्रेंडली टाइप्स।
1: क्या कुछ सीखे?
3: मतलब ऐसा चीज सीखे जो कि हम लोग को पहले पता भी नहीं था, ऐसा ऐसा टेक्निक और ये सब। और मैम इतना अच्छे से सिखाई और इतना अच्छे से बताई इन मतलब सारे दिनों में, मतलब इतना कुछ सीखने को मिला जो कि मतलब अभी तक नहीं जानता।
1: क्या बनाए प्रैक्टिकली यहाँ पे?
3: प्रैक्टिकली हम लोग मतलब रूम डेकोर एंड ये सब के लिए बहुत सारा चीज बनाए हैं। और हम लोग न्यूज़पेपर और वेस्ट मटेरियल का बहुत अच्छा यूज करके हम लोग बहुत सारा चीज बनाए।
1: एंजॉय किए यहाँ पे?
3: इतना मतलब बहुत एंजॉय किया, लाइक इतना मजा आया
4: दोस्तों के साथ मिलकर बनाने में।
3: यहाँ पे हमारे दोस्त बने हैं ना, बहुत मजा आया।
1: किस तरह का एक्सपीरियंस रहा समर कैंप जब आए, क्या एक फर्क पड़ा?
4: बहुत मजा आया। वी आर वेरी प्रिविलेज दैट हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिला, हम लोग यहाँ पे आए, न्यू फ्रेंड्स बनाया, ये अपॉर्चुनिटी मिला हम लोग को, बहुत खुशी होता है अंदर से। एंड
1: ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है झारखंड गवर्नमेंट का कि सभी बच्चों के लिए बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगना है, इक्वली आके सब कुछ सीख रहे हैं।
3: यस ऑफ कोर्स, ये इतना अच्छा मौका है, हम लोग सब एकदम साथ में बैठ के कुछ नया बनाते हैं, वो भी वेस्ट आइटम से। और ज़्यादा हम लोग का मोटिव यही रहता है कि हम लोग वेस्ट आइटम को यूज़ करें, ज़्यादातर उसी को यूज़ करके हम लोग कुछ नया बनाए। स्पेशली हम लोग 3D बनाते हैं, हम लोग एक 3D स्वान बनाए हैं, वो हम लोग को सबसे सुंदर लगता है।
1: चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू हमसे बात करने के लिए।
3: थैंक यू, वेलकम।
1: क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम शाम्भवी है।
1: शाम्भवी, क्या कुछ सीखे यहाँ पे आके?
5: हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ सीखे हैं, हम लोग जो पहले हम लोग को नहीं आता था वो हम लोग यहाँ आकर बहुत कुछ सीखे, जैसे कि क्ले कैसे बनाते हैं। जो इंसान बहुत गरीब है वो जाके खरीद तो नहीं ना सकता बाहर से, तो हम लोग वही पेपर मैशेस से क्ले बनाना सीखे हैं यहाँ पे।
1: समर कैंप में आए, मजा आया क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे आए?
5: हाँ, हम लोग को बहुत मजा आया, अलग अलग फ्रेंड्स बनाने में बहुत मजा आया है।
1: तो समर एंजॉय किए समर हॉलीडे को?
5: हाँ, हम लोग बहुत एंजॉय किए।
1: का क्या नाम है?
6: निष्ठा से।
1: निष्ठा, आप यहाँ पे क्या सीखे?
6: मैंने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक सीखे जिससे हम लोग अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, और हम लोग इससे बहुत सारी चीजों को
1: घर को डेकोर कर सकते हैं।
6: हम डेकोर कर।
1: किस क्लास में हो? 5 में। एंजॉय किए यहाँ पे आके, हॉलीडे अच्छे से मनाए अपना। क्या आप इंटरेस्ट क्या रखते हो आगे के आर्ट एंड क्राफ्ट में, और भी बहुत कुछ सीखना है?
6: हाँ, और भी बहुत कुछ सीखना है, मेरा पैशन है आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना।
1: वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा बात करने के लिए।
6: थैंक यू।
1: और अब क्योंकि हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं, और बिना योग साधना मेडिटेशन के कैसे हमारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं? मैम, आपका नाम क्या है?
7: पूजा तिवारी।
1: तो पूजा मैम, पहले तो आप भी बताएं कि एज अ योगा टीचर कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे समर कैंप का?
7: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आजकल घर घर तक योगा पहुंच गया है और सभी लोग योगा करना चाहते हैं और योगा के फायदे को भी समझ रहे हैं।
1: कितना एक जरूरी आप मानती हैं, जिस तरह से आज लाइफ में हम लोग स्ट्रेस देख रहे हैं उसमें योगा कितना बड़ा रोल निभा रहा है?
7: बहुत जरूरी है, योगा अभ्यास के बिना अब जीवन संभव नहीं है। बीमारियां बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं, खासकर मानसिक बीमारियां, इससे बचाव के लिए योगा अभ्यास से जुड़े रहें, मेडिटेशन करते रहें, योगा अभ्यास में लगे रहें।
1: कितना एक इंटरेस्ट देखिए बच्चों का समर कैंप में, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आके यहाँ पे आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पेरेंट्स क्या कहते हैं जब बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो, और बच्चों का इंटरेस्ट कैसा आपने देखा?
7: बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, इन लोगों को मजा आता है, बॉडी फिटनेस होता है, और सबको फिटनेस के लिए अवेयरनेस है, इसलिए बच्चे भी करना चाहते हैं और साथ में पेरेंट्स भी करना चाहते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आप पूजा मैम हमसे बात करने के लिए।
7: ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।
1: क्या नाम है बेटा आपका?
8: सर सूर्यांश।
1: तो सूर्यांश, योग करके पहले तो बताओ कैसा लग रहा है?
8: अच्छा लग रहा है।
1: हाँ,
8: अच्छा लग रहा है।
1: तो समर कैंप में शुरू से आ रहे हो?
8: नहीं, दो दिन बाद से आए।
1: कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखने को मिला?
8: सीखने को तो बहुत मतलब अच्छा सा योगा आसन सीखने को मिला, फिटनेस मेरा सही रहे इस कारण।
1: क्या नाम है बेटा आपका?
9: समीक्षा।
1: समीक्षा, आप भी योग में हो?
9: यस।
1: हाँ?
9: हाँ।
1: मजा आ रहा है यहाँ पे?
9: हाँ।
1: क्या मजा आ रहा है? सुबह आ जाते हो?
9: हाँ, आ जाते।
1: क्या क्या सीखने को मिला यहाँ पे बताओ, क्या क्या सीखे?
9: यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे।
1: दोस्त बनाए यहाँ पे?
9: हाँ, मैंने बनाया।
1: कैसा रहा समर हॉलीडे?
9: अच्छा रहा।
1: बहुत अच्छा रहा।
9: हाँ।
1: चलो थैंक यू बेटा। तो बढ़ते कदम कार्यक्रम में आज हमने समर कैंप के सारे एक्टिविटीज को शामिल किया।

झारखंड सरकार की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष ये समर कैंप लगाया जाता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है बच्चों के लिए। और एक समर कैंप की बात करते हैं, कोई पैसे नहीं लगने हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं, चाहे डांस की बात करें, चाहे पेंटिंग की बात करें, चाहे योग की बात करें, अलग चाहे नाटक की बात करें, तमाम विधाओं में बच्चों को इस 15 दिन की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है। और ये जो समर हॉलीडे बच्चों का होता है वो क्रिएटिविटी के साथ बढ़ता है। कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे नए मेहमान नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

बढ़ते कदम। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे, सूत्रधार थे कमलेश कुमार मिश्र, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चलें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से बस थोड़ी देर बाद 4:35 पे आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुन सकेंगे। युवाणी कार्यक्रम 5:02 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है इतिहास में आज का दिन भारत और विश्व विशेष के संदर्भ में, साथ में समसामयिक की पर आधारित जानकारियां और रोचक तथ्य भी आपसे साझा किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता गौरव पांडे। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पे। इसमें आज चर्चा का विषय है एक धारा अन्य संस्कृतियां आपसी सम्मान और एकजुटता से सुंदर संसार विषय पर। आधुनिक असम के शिल्पकार गोपीनाथ बारदोलोई जयंती पर आधारित एक चर्चा होगी। नशा पान से बिखरते परिवार विषय पर भी कुछ जरूरी सूचना और जानकारियां दी जाएंगी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रशांत गौरव।

खेती बाड़ी कार्यक्रम 6:02 पर और 6:32 पर आप सुनेंगे हमारी दुनिया कार्यक्रम। खेती बाड़ी कार्यक्रम में 6:02 से आप सुनेंगे इस कार्यक्रम को। प्रश्नोत्तरी का विषय है मिट्टी की जान हरी खाद। इस विषय पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति भी संजीव कुमार लाल की ही है। हमारी दुनिया कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। हिंदी वार्ता आप सुनेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्व विषय पर। वार्ताकार हैं जयंत कुमार पांडे, इनसे बातचीत। आप ये वार्ता सुनेंगे जयंत कुमार पांडे से। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की होगी। प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे शाम के 7:00, 7:11 पे जिले में आजकल, और प्रायोजित कार्यक्रम 7:45 पे।

7:15 पे आप सुनेंगे आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम मंडारी भाषा में है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीकंधा आप सुन सकेंगे और रात्रि 8:10 पे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण विषय पर और रात्रि 9:30 पे चर्चा का विषय है। कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे नाटक आप सुन सकेंगे। शास्त्रीय संगीत रात्रि 10:30 पे। इस कार्यक्रम में उस्ताद अली अकबर खां प्रस्तुत करेंगे राग रामदासी मल्हार में एक रचना। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम।

देश परदेश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। रचना अमित खन्ना की थी, संगीत किशोर कुमार, माफ करेंगे, आवाज किशोर कुमार की थी, संगीत राजेश रोशन का था। अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में। फिल्म चोरी चोरी का ये गीत है, रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म तुमसा नहीं देखा से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

समझ लो एक हुदे बेपीर हूँ। अब तो बस पत्थर की एक तस्वीर हूँ, या समझ लो एक

0: फिल्म ससुराल का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का था। और कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये गीत।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है,
2: जरा मैं भी सुनूं।

0: ऐसा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं,

0: फिल्म वक्त का गीत अभी आप सुन रहे हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में, रचना साहिल धानवी की है। इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम बस यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 4,399 दिन के कार्यकाल में देश के समग्र विकास को रफ्तार दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के तौर पर श्री मोदी के सेवा करने के खास सम्मान के लिए उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्री मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं की सराहना की। साथ ही देश की आर्थिक मजबूती, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कामना की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा प्रतिभाएं हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक चेतना तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकास करना भी है। एनडीए समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन मंजूर कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस विधायक के आपत्तियों के बाद उनका नामांकन होल्ड पर रखा था। हालांकि दो दिनों तक चले विवाद के बाद आखिरकार परिमल नाथवानी का नामांकन मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे और साथ ही अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम तो आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी दोस्त सना
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका।
0: हम दोनों की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: तो दोस्तों, अगले आधे घंटे तक हम लेकर आए हैं खूब सारी एनर्जी, इंस्पिरेशन, मस्ती और दिल को छू लेने वाली बातें सिर्फ आपके लिए। तो चाय की चुस्की हो या ट्रैफिक का सफर, पढ़ाई का प्रेशर हो या ऑफिस की थकान, युवानी के साथ हर शाम बनेगी थोड़ी और खास। क्यों सना?
1: बिल्कुल प्रियंका। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो पूरी दुनिया को जोड़ने का संदेश देता है। आज का हमारा पहला विषय है इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन।
0: बिल्कुल सना, दुनिया में अलग अलग देश, भाषाएं, संस्कृति और परंपराएं हैं, लेकिन इन विविधताओं के बावजूद हम सब इंसान हैं और आपसी समझ तथा सम्मान से हम एक दूसरे को और करीब आ सकते हैं।
1: बिल्कुल प्रियंका। और दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि किसी संस्कृति या समुदाय के बारे में अधूरी जानकारी के कारण गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसे में संवाद यानी बातचीत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: सही कहा सना, जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, उनके रीति रिवाजों को समझने की कोशिश करते हैं, तब सम्मान और विश्वास बढ़ता है। यही संवाद की असली उद्देश्य है।
1: बिल्कुल, भारत इसका एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां हैं, फिर भी विविधता में एकता हमारी पहचान है।
0: बिल्कुल, आज के इस डिजिटल युग में हम कुछ सेकंड में दुनिया के किसी कोने के व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। ऐसे में ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम दूसरों की संस्कृति को जानने और समझने की कोशिश करें।
1: सही कहा, किसी संस्कृति के बारे में बिना पूरी जानकारी के राय बना लेना या पूर्वग्रह रखना समाज में दूरी बढ़ा सकती है। इसलिए हमें खुले मन से सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए।
0: और दोस्तों, विशेष रूप से हम युवाओं को इसमें बड़ी भूमिका होनी चाहिए। क्यों, है ना सना?
1: बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि युवा अगर सम्मान, सकारात्मक संवाद को अपनाएं तो वे समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, और संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये दिलों को जोड़ने का एक माध्यम है। ये हमें सिखाता है कि अलग होना गलत नहीं है, बल्कि एक दूसरे से सीखना और आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है।
1: तो आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम हर व्यक्ति और हर संस्कृति का सम्मान करेंगे, मतभेदों को बातचीत से सुलझाएंगे और शांति तथा भाईचारे को बढ़ावा देंगे।
0: क्योंकि दोस्तों, जब संवाद होता है तो समझ बढ़ती है, जब समझ बढ़ती है तब विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बनता है तब एक बेहतर दुनिया का निर्माण होता है।
1: बिल्कुल प्रियंका, बहुत सही कहा है तुमने। दोस्तों, अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग पहचान, लेकिन एक ही संदेश, संवाद, सम्मान और मानवता। दोस्तों, इसी संदेश के साथ चलते हैं हमारे अगले विषय पर। हम बात करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता तक के बारे में। दोस्तों, ये विषय सुनने में भले ही थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब हमारा एक समाज या देश में अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, त्यौहार और जीवन शैली साथ साथ मौजूद हो, तो उसे सांस्कृतिक विविधता कहा जाता है।
1: अगर भारत की बात करें तो शायद कल्चरल डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा ही देश है। क्यों, है ना प्रियंका?
0: बिल्कुल सना,
1: यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, त्यौहार मनाने का तरीका बदल जाता है, लेकिन लोगों के दिलों में अपनापन हमेशा बना रहता है।
0: बिल्कुल, सोचिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कितनी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। कहीं लोग चावल ज़्यादा खाते हैं तो कहीं रोटी, कहीं पारंपरिक नृत्य अलग है तो कहीं संगीत का अंदाज अलग है।
1: बिल्कुल, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये विविधता हमारे लिए इतनी खास क्यों है? क्योंकि यही विविधता हमें एक दूसरे से सीखने का मौका देती है। हम अलग अलग लोगों की परंपरा, कल्चर, भाषा और सोच को जान पाते हैं। इससे हमारा नजरिया और व्यापक बना रहता है।
0: सही कहा, अगर पूरी दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसा सोचता और एक जैसा पहनता और एक जैसा जीवन जीता तो दुनिया कितनी नीरस और बोरिंग लगती। विविधता में दुनिया को रंगों से भरती है, जैसे एक बगीचे में अलग अलग फूल उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे ही अलग अलग संस्कृतियां समाज को खूबसूरत बनाती हैं।
1: वाह, क्या बात कही है तुमने। दोस्तों, आज के समय में ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट की वजह से दुनिया पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हो गई है। हम घर बैठे ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। हमें दूसरों की संस्कृति या सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, है ना? किसी की भाषा हो, पहनावे और रीति रिवाज का मजाक तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए।
0: सही कहा सना। दोस्तों, कल्चरल डाइवर्सिटी हमें टॉलरेंस यानी सहनशीलता और म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी आपसी सम्मान की सीख देती है। दोस्तों, कॉलेज हो, स्कूल हो या कार्यस्थल, ये सब अलग अलग टाइप के यहाँ लोग मिलते हैं। जब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो दोस्ती और सहयोग दोनों बढ़ता है।
1: और यही बात युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नई पीढ़ी अगर विविधता को अपनाएगी तो समाज और अधिक समावेशी और सकारात्मक बनेगा। और एक बात दोस्तों की दिलचस्प ये बात है कि सांस्कृतिक विविधता केवल त्योहारों और खान पान तक सीमित नहीं है, ये हमारे विचारों, अनुभवों और जीवन को देखने के नज़रिए में भी दिखाई देती है।
0: इसीलिए तो सना, कल्चरल डाइवर्सिटी केवल एक सामाजिक विशेषता नहीं बल्कि विकास और प्रगति की भी ताकत है। तो आइए ये संकल्प लें कि हम हर संस्कृति, हर भाषा और हर परंपरा का सम्मान करेंगे, विविधता में कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत मानेंगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, इसी संदेश के साथ लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दोस्तों, अब समय है उस खास सेगमेंट का जिसमें हम जानेंगे कि इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्यों खास है।
5: बिल्कुल सना, यही वो दिन है जब भारतीय टीम को पहली बार लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई। कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने 10 जून 1986 को इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर इतिहास रचा था।
4: बिल्कुल दोस्तों, इसके साथ ही 10 जून 2019 को प्रसिद्ध नाटककार, अभिनेता, निदेशक एवं ज्ञानपति पुरस्कार से सम्मानित गिरीश कर्नाड का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
5: बिल्कुल दोस्तों, ये पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड मौजूद युग के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक थे, जिन्होंने अपनी मातृभाषा कन्नड में अपनी मौलिक कृतियों से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया था।
4: इसी के साथ आज ही के दिन 1946 में राजशाही खत्म होने के बाद इटली गणतांत्रिक राष्ट्र बना।
5: और दोस्तों, 2003 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मंगलयान रोवर लॉन्च हुआ था।
4: साथ ही 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने सौर लपटी की तस्वीर ली।
5: सना, जिंदगी में अगर हैरानी खत्म हो जाए तो सीखने का मजा भी खत्म हो जाता है।
4: बिल्कुल,
5: इसीलिए युवानी में अब वक्त है कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स, रोचक तथ्य का, जो आपके दिमाग को कहने पर मजबूर कर देगा, अरे ऐसा भी होता है।
4: बिल्कुल दोस्तों, और हमें पता है कि आपका सबसे फेवरेट सेगमेंट है ये। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बिजली चमकने के दौरान तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सोचो प्रियंका, तुलना की जाए तो सूरज का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है। यानी एक पल के लिए आसमान में चमकने वाली बिजली सूरज की सतह से भी कई गुना ज़्यादा गर्म हो सकती है। बाप रे बाप।
5: और सना, तुम्हें पता है हमारे फ़ोन की जो बैटरी होती है ना, वो लिथियम और आयन बैटरियाँ होती है।
4: अच्छा,
5: ये बैटरी 20 से 80% के

0: बीच में रहने पर अक्सर बेहतर प्रदर्शन करती है, इसीलिए बार बार दोस्तों 0% तक पहुंचाने और 100% तक ले जाने के बजाय इसके बीच में ही रखे तो ये तरीका ज्यादा अच्छा हो सकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और हम अक्सर ये चीज़ करते हैं।
0: हाँ
1: दोस्तों साथ ही अलार्म स्नूज करना आपको और थका सकता है। जब आप स्नूज दबाकर दोबारा सोते हैं तो शरीर एक नई नींद की प्रक्रिया शुरू कर देता है। कुछ मिनट बाद फिर उठने से आपको और भी ज़्यादा थकान और सुस्ती महसूस होगी।
0: और मुझे लगता है सना ये हम सभी करते
1: हैं। बिल्कुल, और खासकर हम युवा।
0: और दोस्तों पता है आपका पसंदीदा गाना आपको यादों से जुड़ा होता है। कई बार कोई गाना सुनते ही हमें कोई खास पल, व्यक्ति या जगह याद आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संगीत और याददाश्त का संबंध दिमाग से बहुत गहरा होता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, साथ ही धरती पर मौजूद अधिकांश ऑक्सीजन जंगलों से नहीं बल्कि समुद्र में रहने वाले पौधों और शैवालों से आती है।
0: और दोस्तों कंगारू को हम सब जानते होंगे, लेकिन आपको पता है कि कंगारू पीछे की ओर नहीं चल सकता, इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय चिन्ह में कंगारू को शामिल किया गया है, जो हमेशा आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। तो सना अब बाकी की जानकारियां हम एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: दोस्तों, अब आइए जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। वर्ल्ड योगा संघ चैंपियनशिप के पहले संस्करण की मेज़बानी भारत देश ने की और साथ ही भारत ने सर्वाधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप के निकट 1800 वर्ष पुरानी विशाल जीवंत प्रबल कॉलोनी की खोज की है।
1: बिल्कुल दोस्तों, साथ ही आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को टिकाऊ कृषि मंडल के लिए फूड प्लैनेट प्राइज 2026 का पुरस्कार प्रदान किया गया।
0: और दोस्तों, इंडियन आर्मी ऑफिसर अभिलाषा बरीक को यूनियन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मान किया गया है।
1: साथ ही नागालैंड सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तंबाकू रिलेटेड इंटॉक्सिन्स पर प्रतिबंध लगाया।
0: और दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा हेतु तमिलनाडु सरकार ने सिंगम स्पेशल टास्क फोर्स शुरू किया है। तो दोस्तों, बातें आपसे और भी करनी है, पर आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: सना, आज के कार्यक्रम के समापन में अब हम बात करेंगे उस विशेषता की जो भारत को दुनिया के सबसे अनोखे देशों में शामिल करती है, और वो है सांस्कृतिक विविधता, भारत की पहचान।
1: बिल्कुल दोस्तों, भारत को समझना हो तो सिर्फ नक्शा देखना काफ़ी नहीं है। भारत को समझने के लिए इसकी गलतियों, त्यौहार, लोकगीतों, भाषाओं और लोगों के जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है।
0: सच का, भारत केवल एक देश नहीं बल्कि अनेक संस्कृतियों की जीवंत संगम है। यहाँ हर क्षेत्र अपनी अलग कहानी कहता है। कहीं लोक नृत्य की धुनें हैं तो कहीं शास्त्रीय संगीत की मिठास, कहीं हस्तशिल्प की कला तो कहीं सदियों पुरानी परंपराओं की झलक।
1: हाँ बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है कि इतनी विविधताओं के बावजूद भारत ने अपनी पहचान कभी नहीं खोई। समय बदला, जीवन शैली बदली।

0: तकनीक आई, लेकिन हमारी संस्कृति जड़ें अभी भी बहुत बहुत मजबूत है बाकी सारे देशों से।
1: हाँ सना, जब कोई विदेशी भारत आता है तो उसे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इसी बात पर होता है कि यहाँ इतनी अलग अलग परंपराएं होने के बावजूद लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं।
0: और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है। योग, आयुर्वेद, भारतीय संगीत, नृत्य, हमारे जीवन मूल्य आज पूरी दुनिया के सम्मान देखते हैं।
1: और सांस्कृतिक विविधता हमें केवल अलग पहचान नहीं देती, बल्कि हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी हम आधुनिकता को अपने ओर ला सकते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, और शायद यही भारत की सबसे बड़ी पहचान भी है, विविधता को अपनाकर एक साथ आगे बढ़ना। भारत अनेक संस्कृतियों का संगम है और यही विविधता उसकी सबसे बड़ी पहचान है और बड़ी ताकत भी है। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। दीजिए अपनी दोस्त सना
1: और अपनी दोस्त प्रियंका
0: को इजाजत। नमस्कार।

अभ्यासनरते युवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: साथियों नमस्कार, एक बार फिर हम उपस्थित हैं आपके सामने बहुत सारी जानकारियों का खजाना लेकर। मुझे पता है कि आप व्यस्त होंगे लेकिन मस्त होंगे और हमारे कार्यक्रम के लिए समय तो ज़रूर निकालते होंगे। तो आइए इस कार्यक्रम की अब हम शुरुआत करते हैं। मित्रों, सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में स्थापित इस दिवस का उद्देश्य मतभेदों को दूर कर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित कर वैश्विक एकजुटता, पारस्परिक सम्मान और सांस्कृतिक विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देना है। यानी एक धारा अनेक संस्कृतियां, आपसी सम्मान और एकजुटता से सुंदर संसार का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन आज इसी का अभाव हर तरफ देखने को मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि मध्य पूर्व के देशों में पिछले 100 दिनों से चल रहे युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के साथ हमारा देश भी आर्थिक मोर्चे पर संकटग्रस्त होता जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने प्रणव। नमस्कार श्रमिक साथियों, मैं आकांक्षा और आज मैं भी हूँ प्रणव के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, वर्चस्व और अहंकार की लड़ाई से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन मानव सभ्यता पर गौर करें तो जीवन की तरह युद्ध भी एक जैसी सौभाग्यता के साथ हमारे बीच दस्तक देता है।
0: हमारी स्वार्थ लोलुपता इस जीवन को मानवता विहीन और सौंदर्यहीन करने पर हर वक्त तुली रहती है, और इस तरह की मानवीय प्रवृत्ति पर विराम देने के लिए हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः और अतिथि देवो भव जैसे सिद्धांतों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। लेकिन हम ऐसे सिद्धांतों को किनारे कर आपसी वैमनस्यता की बीज बोने में लगे रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को

0: श्रेष्ठ होने देने के बदले श्रेष्ठ साबित करने पर तुले रहते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, कभी देश के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, तो कभी राज्य के नाम पर। और इन सब के बीच सारे पर्दे और परतों से इतर हम एक मनुष्य हैं, हमारा मानवीय कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस पर कभी चिंतन ही नहीं कर पाते। जो चिंतन करते हैं वे पाते हैं कि हम सब कहीं गहरे में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ मनुष्य से ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति के साथ ब्रह्मांड से। एक की भी क्षति दूसरे को प्रभावित करती है। जीवन में एक नहीं रह सके तो मृत्यु सबको एक कर देती है। इसलिए साथियों, विविधता से भरे इस संसार में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को भी प्रभावित परिवर्धित करती रही है। एक समुदाय की दूसरे समुदाय पर निर्भरता रही है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक देश दूसरे देश से भी सहज जीवन, तकनीकी और आर्थिक मजबूती के लिए आयात निर्यात के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसलिए विश्व के किसी कोने में कोई देश या संस्कृति संकटग्रस्त होते हैं तो उसका प्रभाव अनचाहे ही पूरी दुनिया पर एक साथ पड़ता है। इसका परिणाम वर्तमान में हम झेल भी रहे हैं। इसलिए आज के दिन हम संकल्प लें कि मतभेदों को दूर कर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित कर वैश्विक एकजुटता, पारस्परिक सम्मान और सांस्कृतिक विविधता के बीच एकता को बढ़ावा दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: तो बातें आकांक्षा बहुत हो गई। आकांक्षा से हम अपने श्रमिक मित्रों को परिचय भी करवा दें। मैं अपना भी परिचय अभी तक नहीं दे सका हूं। तो साथियों, मैं प्रणव और मेरे साथ आज जुड़ी हुई हैं
1: आकांक्षा।
0: मेरे साथ ही नहीं, आप सभी लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं।
1: सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि अभी हम कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रमिक लोग,
0: तो बातें बहुत सारी हो गई।
1: बिल्कुल।
0: अब एक इसी दिवस की प्रेरणा स्वरूप एक गीत सुनना लाजमी है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाया आपने प्रणव, दिल खुश हो गया और मुझे लगता है कि हमारे साथियों का भी आज दिन बन गया होगा इतना प्यारा सा गीत सुनकर, है ना?
1: आज दिन ही ऐसा है, आज विशेष दिन है। अभी हम चर्चा कर रहे थे गीत से पहले, सविताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इस पर चर्चा हो रही थी और आज ही के दिन ये मनाया जाता है। तो आज के दिन विश्व नेत्रदान दिवस भी मनाया जाता है।
0: अच्छा,
1: तो क्यों नहीं हम इस पर भी कुछ चर्चा करें अपने साथियों के साथ।
0: जरूरी है, क्योंकि हमारे जो भी श्रमिक साथी हैं वो ऐसी ऐसी जगह पर काम करते हैं कि कभी कभी उनकी आंखों में भी कुछ समस्याएं आ सकती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है उनका ये जानकारी होना। और आज बहुत अच्छा दिन भी है कि विश्व नेत्रदान दिवस भी है।
1: बिल्कुल, कहा गया है कि दृष्टि दें जीवन का उपहार दें, एक लोकप्रिय कहावत भी है, आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं।
0: बिल्कुल
1: सच है। और हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इलाज योग्य अंधापन के कारण अपने प्रियजनों को नहीं देख सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज ही के दिन हमें एक ऐसी अनकही आवश्यकता की याद दिलाई जाती है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, यानी कॉर्नियल अंधत्व से पीड़ित लोगों की दृष्टि को बहाल करने के लिए दान की गई आंखों की आज आवश्यकता है।
1: बिल्कुल, कॉर्निया प्रत्यारोपण किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बदल देता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे पहली बार अपने माता पिता को देख पाते हैं, बुजुर्ग आत्मनिर्भर हो पाते हैं, छात्र वापस स्कूल जा पाते हैं। नेत्रदान वास्तव में अमरता का एक कार्य है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। आखिर प्रश्न उठता है कि नेत्रदान क्यों महत्वपूर्ण है, तो एक आंकड़े के अनुसार भारत में दृष्टि बाधित व्यक्तियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इनमें से 1,00,000 से अधिक लोग कॉर्नियल प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक ऐसी सर्जरी है साथियों जो दृष्टि को बहाल कर सकती है। जी हाँ
1: हाँ हाँ, आपने आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति उम्र या चिकित्सीय इतिहास की परवाह के बिना अपनी आंखें दान करने का संकल्प ले सकता है।
0: बिल्कुल,
1: नेत्रदान केवल मृत्यु के बाद ही होता है और इससे चेहरे का आकार नहीं बिगड़ता। इस प्रक्रिया में 20 मिनट से भी कम समय लगता है और इसे मृत्यु के 6 घंटे के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपको यह जानना भी आवश्यक है साथियों कि नेत्रदान की प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो अपनी आंखें दान करने की दिशा में पहला कदम किसी पंजीकृत नेत्र बैंक में नेत्रदान की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करना है। आपको नेत्र बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म में अपनी सभी जानकारी अच्छे से भरें। इसके बाद और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने प्रियजनों को अपने निर्णय के बारे में सूचित करें, ताकि उन्हें पता हो कि आपकी मृत्यु के बाद किससे संपर्क करना है, क्योंकि आंख निकालने की प्रक्रिया मृत्यु के तुरंत बाद ही करनी होती है। साथियों, स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपनी आंखों का ख्याल रखें, ताकि दान करते समय वे अच्छी स्थिति में हों।
1: आप अपने परिजनों को पहले से ही यह जानकारी दे दें कि आपकी मृत्यु के बाद वे निकटतम नेत्र केंद्र को फोन करें। जितनी जल्दी आप फोन करवाएंगे उतना ही अच्छा होगा। मृतक व्यक्ति की दोनों आंखों को बंद रखें और उन्हें नम रुई से ढक दें ताकि वे सूख न जाएं। आप अपने परिजनों को ये जानकारी मृत्यु पूर्व ही देंगे तो ज्यादा लाभकारी होगा। शव को हवा से दूर एक बंद कमरे में रख सकते हैं और सुनिश्चित करें कि पंखा

0: आंखें बंद हो। यदि संभव हो तो शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को लगभग 6 इंच ऊपर उठाएं। जब उपयुक्त कर्मचारी आते हैं तो उन्हें आंखें निकालने में 20 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आंखें निकालने का कोई भी दृश्य चिन्ह न रह जाए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने प्रणव। और जागरूकता के लिए जरूरी है कि एक बार जब आप नेत्रदानकर्ता के रूप में पंजीकरण करा लेते हैं तो इसके बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा करें ताकि लोगों को चले कि वे भी ऐसा कर सकते हैं। अपने सभी परिवार और दोस्तों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के उपहार के बारे में बताएं ताकि इलाज योग्य अंधेपन से पीड़ित लोगों को ठीक होने का मौका मिल सके। साथियों, तो साथियों हम अब बातें करेंगे आगे। एक वार्ता है जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकसित भारत के बारे में है और इसके बारे में हमें बताएंगे ऋषि राज।
2: प्रिय श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार लाने की प्रक्रिया को ग्रामीण विकास कहते हैं। ग्रामीण विकास का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र यानी संपूर्ण विकास लाना है। अंग्रेजी शब्द रूरल डेवलपमेंट का हिंदी रूपांतर ग्रामीण विकास होता है, जिसमें रूरल का तात्पर्य गाँव तथा ग्रामीण इलाकों से है और डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ उन्नति तथा उत्थान होता है। श्रमिक साथियों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत गांवों का देश है तथा भारत की आत्मा गांवों में बसती है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बहुत जरूरी है। अतः ग्रामीण विकास भारतीय आर्थिक जीवन का केंद्र बिंदु बन गया है। ग्रामीण विकास से आशय ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास से है। इसका अर्थ है गांवों में निवास कर रहे जनता का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान करके उसके जीवन स्तर में सुधार लाना। अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं जो इस प्रकार है। इसे कई विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है, जैसे कि ग्रामीण विकास आर्थिक विकास की प्रक्रिया हेतु ग्राम क्षेत्रों में आवश्यक एवं संरचनात्मक विकास करना, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास तथा विपणन यानी मार्केटिंग जैसी द्वितीय एवं तृतीय सेवाओं का विकास सम्मिलित है। प्रिय श्रोताओं, ग्रामीण विकास से प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय स्तर के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं श्रमिक साथियों, जैसे कि पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करके कुल उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा, सभी ग्रामीणों के लिए लाभदायक रोजगार पैदा करना। तीसरा, गांव को आत्मनिर्भर बनाना। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए मानव एवं प्राकृतिक के मध्य पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। पांचवा, भारत के आर्थिक विकास में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाना। श्रमिक साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास का बहुत महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक गांवों का देश है तथा भारत के संपूर्ण विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास होना अनिवार्य है। अतः ग्रामीण विकास का उद्देश्य ही गांवों का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें सभी क्षेत्र का विकास सम्मिलित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास के महत्व को इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, निर्धनता निवारण में सहायक। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के फल स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियां बढ़ी है। इससे ग्रामीण निर्धन लोग भी उत्पादक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे हैं, परिणामतः उनकी निर्धनता का अनुपात गिर रहा है। दूसरा, बेरोजगारी को दूर करने में सहायक। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण व्यापक बेरोजगारी को पाया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। अतः ग्राम विकास कार्यक्रमों में बेरोजगार लोगों को रोजगार सुलभ कराने का प्रावधान है। इसकी अतिरिक्त लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। तीसरा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके ग्राम विकास के फलस्वरूप कृषि कार्यों में सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, मशीन आदि का प्रयोग बढ़ने से कृषि उत्पादकता में

0: गंभीर विकास हुआ है। गत वर्षों में खदान उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, अतः कृषि क्षेत्र के इस विकास में ग्रामीण विकास रणनीति की अहम भूमिका रही है। चौथा, आधुनिक तकनीकी का प्रसारक। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्यों को चलाए जाने के कारण कृषि, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में परंपरागत एवं रूढ़िवादी तकनीकी के स्थान पर नई एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ा है, इससे ग्राम विकास में तेजी आई है। पांचवा, ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों का विदोहन। गांव में परिवहन, संचार, बैंक, विपणन आदि जैसे सुविधाओं का विस्तार होने से प्राकृतिक संसाधनों का उचित विदोहन संभव हुआ है। इससे ग्रामीण जनता को रोजगार के अवसर सुलभ हुए तथा उनके जीवन स्तर में भी अपेक्षित सुधार हुआ है। छठा, शिक्षा प्रशिक्षण एवं तकनीकी का विस्तारक। गत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रशिक्षण एवं तकनीकी सुविधाएं बढ़ी है, जिसके चलते साक्षरता दर भी बढ़ा है। सातवां, राष्ट्र निर्माण में भागीदार। ग्राम विकास के परिणाम स्वरूप ग्रामीण लोगों में राष्ट्र निर्माण के प्रति भागीदारी बढ़ी है तथा आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी उनके नेतृत्व का क्षेत्र बढ़ा है। श्रमिक साथियों, देश की समग्र प्रगति के लिए ग्रामीण विकास आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वे बुनियादी जरूरतों से वंचित है। सभी को अच्छे जीवन जीने के लिए अच्छे संसाधनों की आवश्यकता होती है जो उनके उत्थान में मदद कर सके। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को कपड़े, खाना, दवाइयाँ मिल रही है या नहीं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 75% भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है। तथा ग्रामीण विकास संपूर्ण विकास के लिए है। अब हम ग्रामीण विकास की विशेषताएं को समझते हैं। श्रमिक साथियों, ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। ग्रामीण इलाकों का विकास देश के विकास का मूल आधार है और इसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। यह विकास संस्कृतिकरण, रोजगार, समृद्धि और समानता को बढ़ावा देता है। श्रमिक साथियों, सबसे पहले ग्राम पंचायत का विकास ग्रामीण विकास की मूल मंत्र है। इन पंचायत को सही तरह से सशक्त बनाने से ग्रामीण क्षेत्र में निजी और सरकारी कार्यों के लिए सामर्थ्य बनता है। यह पंचायती प्रगतिशील योजनाओं की व्यवस्था और उनका अनुसरण करते हैं। इससे सभी सामाजिक वर्गों को लाभ मिलता है और ग्रामीण समाज में समन्वय तथा विकास होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ग्रामीण उद्योगों का विकास। ग्रामीण इलाकों में उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके और उनका आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता मिले। उद्योग समाज को नए अवसर प्रदान करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने से समाज में वृद्धि होती है और लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ग्रामीण शिक्षा का विकास हो। श्रमिक साथियों, शिक्षा एक ऐसी माध्यम है जो समाज में जागरूकता के साथ समानता को बढ़ावा देता है और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की उपलब्धि को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को ज्ञान का अधिकार मिल सके, जिससे समाज में लोग सक्षम और प्रगतिशील नागरिक बन सके जो देश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। श्रमिक साथियों, चौथा महत्वपूर्ण पक्ष ग्रामीण स्वास्थ्य का विकास से है। स्वास्थ्य एक ऐसी पक्ष है जिसमें ग्रामीण इलाकों में विकास की जरूरत सबसे अधिक है।
1: आप अभी वार्ता सुन रहे थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकसित भारत। वार्ताकार थे ऋषिराज। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
2: बिल्कुल, जैसा कि आपने प्रणव जानते हैं कि हमारे जो श्रमिक साथी हैं वे उत्पादन की रीढ़ हैं, है ना, और देश के विकास में इनका बहुमूल्य योगदान है। अगर हमारे साथी एक दिन काम पर ना जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इसलिए हमारे सभी साथियों का स्वस्थ और सेहतमंद रहना बेहद ही ज़रूरी है।
1: बिल्कुल आकांक्षा, हमारे साथी स्वस्थ रहेंगे तभी तो स्वस्थ मन से काम करेंगे और काम करने की क्षमता में वृद्धि भी होगी। उत्पादन में वृद्धि यानी देश की प्रगति और साथ ही हमारे साथियों की आय में और साथ ही हमारे साथियों की आय में भी बढ़ोतरी।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो साथियों, सेहतमंद रहने के लिए अपनी जीवन शैली में सुधार करें, नशापान से खुद को दूर रखें।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रणव। हमारे सभी जो साथी हैं वे बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और सिर्फ अपने परिवार की आजीविका के लिए, अपने परिवार

0: और एक मुखिया होने के नाते अपना तनाव और थकान को मिटाने के लिए नशा का सेवन न करें, बल्कि योग को अपने जीवन शैली में समाहित करें।
1: बिल्कुल साथियों, कार्यस्थल पर भी आप योग कर सकते हैं। काम के दौरान होने वाले शारीरिक दर्द को कम करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप अपना सकते हैं। साथियों, लगातार भारी वजन उठाने, झुककर काम करने या एक ही पोजीशन में खड़े रहने से मांसपेशियों में जकड़न और कमर पीठ या घुटनों में दर्द होने लगती है। अगर आप काम के बीच में 5 मिनट निकालकर आसान से स्ट्रेचिंग व्यायाम करते हैं तो आपको बहुत राहत होती
0: ऐसे
1: है।
0: कई सारे व्यायाम हैं जिसे आप कर सकते हैं और अपने कार्य में मन लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो प्रणव, हम बात ही करेंगे या अपने साथियों से विदा भी लेंगे, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: वक्त हो चला है अपने साथियों से इजाजत लेने का। तो अपनी दोस्त आकांक्षा,
0: और प्रणव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रमिक लोक कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली रवाना हुए। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो, शिव पूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। एनडीए समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार परिमल नाथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस विधायक के आपत्तियों के बाद उनका नामांकन होल्ड पर रखा था। हालांकि 2 दिनों तक चले विवाद के बाद आखिरकार परिमल नाथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया। दुमका जिले में युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़ने का अभियान निरंतर जारी है। इसी के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर 113 अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया, जिनमें 14 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। झारखंड T20 प्रीमियर लीग का आज से आगाज हो गया। रांची के JSCA स्टेडियम में आज खेले गए पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रन से पराजित कर दिया। रांची टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम खेती बाड़ी और हमारी दुनिया।

0: गच लगाओ गच बचाओ।
1: खेती बाड़ी सुन भैया सब भाई बहन मन के झलेश्वरी बहन बटले जोहार और मोहसिन दादा और केहो जोहार।
0: जोहार जोहार झलेश्वरी बहन और खेती बाड़ी सुन भाई सब किसान भाई बहन मन के मोहसिन भाई बटले हो जोहार। तो नगदे दिन बाद है उसे भेंट आती तो कहो का हाल चाल है।
1: हाल चाल तो बढ़िया है दादा और बताओ।
0: एकदम नगदे आए खन तो मुदा तनी हमरे मन देखा थी कि खन हमरे मन गर्मी से परेशान ही और गर्मी में गर्म नहीं लागे तो कब लागे मुदा हाँ। तनी कुनी कर से आदमी मन कर हाल बेहाल हो जाए ला।
1: हाँ दादा वो तो है देखो सब मौसम में हमरे मन के ढलक है। अब गर्मी दिन है के तो गर्मी तो लागबे करी लेकिन देखो नी तनी मनी पानी आवत है तनी ठंडे लागे इहे तेर में जीव सब आंग बगड़े कर डर रहेला खन है गर्म खन है ठंड का होनी।
0: और देखो एखन बगरा रौद कर ले का होला कि हमरे मन के खेती बाड़ी सूख जाए तो
1: हाँ।
0: बेरे बेरे हमरे मन के पटवन करे कर जरूरत है और कहूँ कहूँ देखी ला कि किसान मन भाई बहन मन के बहुत परेशानी हो जाए कहूँ कर कुइयाँ सूख जाए तो कहीं बोरिंग से पटवन करते हैं तो आजकल गर्मी में बहुत जगह बोरिंग मन भी सूख जाए चाहे पटाते पटाते पटवन कर व्यवस्था नहीं हो पा रहे तो उतना बढ़िया लगाल खेती बाड़ी भी डूब जाए।
1: लेकिन ऐसा तो आते है दादा से चलते तो उतना नहीं सूख है
0: तो देखो अगर वैसा खेती बाड़ी भी अगर खराब हो जाए तो सरकार बटले भी कर उपाय करल जाए।
1: हाँ हाँ हाँ नगद कहत ही दादा वही देखो हमारे मन डगर चलते कोनो ना कोनो दुर्घटना मन घट जाए ला ओहे तरी हमारे मन के नी फसल के हो ध्यान देख ले प्रधानमंत्री फसल बीमा एगो योजना है दादा तो ओहे नियर मौसम कर भी कोनो ठिकाना नहीं रहेला का कखन सुखार तो कखन बाढ़ जे नियर ई सम समय किसान भाई बहन मन में झेले पड़ेला।
0: देखो रे एकदम बेस कहली और हमरे मन देखी ला कि हमरे मन खुद किसान घरैया से संबंध रखी ला तो देखी ला कि सब काम ले एक बेरा तय करल रहे मुदा किसान भाई बहन मन ले कोई बेरा नहीं रहे रातों काम करे हो दिनों करे हो अगर दवाई देते देते हमरे मन देखी ला कि नहीं सिरा है तो रातों तक दवाई देवी ला पटवन करत थी अगर लाइन और बोरिंग से करत थी लाइन चल जाए तो हमरे मन आधा रात के भी उठ के पटवन करी ला तो किसान मन लागिन कोनो बेरा न खे नहीं तो सब बेरा है और इतना मुश्किल से आदमी मन फसल के लगाए ना और कभी कभी तनी उन गलती की वजह से चाहे कुछ कमी कर वजह से फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार बट लेकर व्यवस्था करल जाए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सब किसान भाई बहन मन के एक फायदा उठाए चाहिए और एक लागिन बेरा बेरा गांव घर में प्रचार प्रसार करके बताल जाए और पेपर कर माध्यम से मीडिया कर माध्यम से रेडियो मन कर माध्यम से हमारे मन जानी ला कि कौन बेर फसल बीमा होवे ला तो हमारे मन के फसल बीमा करा लो चाहिए कहे कि हमारे मन बीमा करा लो तो सरकार बट ले कुछ सहायता राशि मिल जाए जेकर से किसान भाई बहन मन के कुछ मतलब जो नुकसान कर भरपाई हो सके
1: हो सकेला। तो दादा ओहे लखे अगर का दस्तावेज लागेल से के बता थी जैसे फोटो किसान आईडी कार्ड आधार कार्ड बैंक खाता विवरण खतियान नंबर पेपर जैसन ई सब दस्तावेज देवे पड़ेला।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो रावरे बहुत बढ़िया बता लिया और बढ़िया बता के संगे हमरे मन तो किसान मन के अगर हरियर नहीं करब
1: हाँ,
0: तो किसान
1: हाँ।
0: भाई मन कर खेतों हरियर नहीं हो तो आओ एक ठो कृषि विकास गीत नागपुरी में सुनी ला कालिंदी कुमारी और संगी कर गावल के
2: जाने देखू।

0: और हम लोगों का मन हरियर हो गेलक
1: हाँ,
0: गीत के सुन के। और कहो तब इतना बढ़िया रिजरंग कर बाद कार और जुगाड़ कर ही माने जानकारी कर बात किसान मन भाई बहन मन ले बताओ तो।
1: हाँ दादा देखो जानकारी मन होकर एक जरूरी है तो हमरे मन के माटी के हम बढ़िया रखे के लिए देखो माटी कर जांच
0: देखो एकदम जो है ना हमरे मन के हरी खाद मिट्टी कर जान होल माटी कर जान जो होल हरी खाद होल तो इकर बारे हमरे अगर विशेषज्ञ बतावे डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह और इनकर से गोठिया है एस के लाल।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे ताकि आपकी पैदावार अच्छी हो इसके लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, गोबर खादों का हम प्रयोग करते हैं अपने खेतों में ताकि मिट्टी की पोषक तत्व बनी रहे। और यदि मिट्टी की पोषक तत्व स्वस्थ रहेगी, मृदा हमारा स्वस्थ रहेगा, तभी हम अच्छे तरीके से फसल की उम्र ले पाएंगे, अच्छे तरह से हम फसल को बढ़वार कर पाएंगे और बढ़िया मुनाफा कर पाएंगे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मिट्टी की जान है हरी खाद। हरी खाद के द्वारा भी हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को काफ़ी अच्छे तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और बढ़िया फसल का हम चयन कर सकते हैं और बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। तो हरी खाद हम अपने खेतों पर ही कैसे तैयार करें, क्या विधियां हैं और हरी खाद क्या है और हरी खाद की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है और कैसे हम हरी खाद अपने खेतों पर उगाएं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं हमारे साथ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, आप सहायक प्राध्यापक सहकनीय वैज्ञानिक हैं विरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में। डॉक्टर साहब स्वागत है किसान वाणी कार्यक्रम में।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। कहते हैं ना कि मिट्टी की जान हरी खाद है, हरी खाद की क्या उपयोगिता है और ये क्या है और मिट्टी के लिए क्यों ज़रूरी है?
3: देखिए ऐसा है कि आज का जो विषय है हरी खाद, ये बोलने में बड़ा छोटा शब्द है लेकिन हरी खाद वर्तमान समय की मांग है और हमारे देश की किसानों को यदि उनकी इनकम को बढ़ाना है और रसायन से मुक्त करना है तो इसके लिए हरी खाद का प्रयोग करना है। हरी खाद एक ऐसी खाद है जो किसी बाज़ार में नहीं मिलती है और न ही इसे किसी फैक्ट्री में बनाई जाती है। ये किसान के खेत में एक फसल उगाई जाती है।

0: जो दलहनी होती है और जिसे 40 से 45 दिन या 50 दिन के बाद उसी मिट्टी में दबा करके सड़ा करके खाद बना दी जाती है। और हरी खाद के बोलने का मतलब है कि जो हमारा मानसून का समय शुरू होता है उस समय दलहनी फसलों को लगाना है और उसी खेत में उसको मिट्टी में दबा देना है जिससे वो सड़ गल करके नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है और हरी खाद का काम करती है। इसमें हमें सावधानी ये रखना है कि वैसी फसलों का चयन करना है जो दलहनी हो, दूसरा वैसी फसल होनी चाहिए जिसकी बढ़वार ज़्यादा हो तथा वैसी फसल होनी चाहिए जिसकी तना शाखा या पत्ती की संख्या ज़्यादा हो तथा वैसी फसल होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा गांठ बनाए और गांठ जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम या मिट्टी में नाइट्रोजन जमा करने का काम करता है। साथ ही ये फसल सूखा अवरोधी होना चाहिए ताकि यदि बारिश नहीं भी हो तो खेत में सूखे नहीं और उस स्थिति में भी अपने आप को खड़ा करके मिट्टी में ज़्यादा ज़्यादा नाइट्रोजन बचाने का काम करे तथा एक कीट एवं बीमारी प्रतिरोधी भी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो हो ऐसे गुण होने चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे फसल को प्रभावित न करे या हानि नहीं पहुँचाए। इसके साथ ही हरी फसल जो दलहनी फसल होती है इसकी बीज दर ज़्यादा होती है जिसके कारण ये क्या करते हैं कम से कम खरपतवार को जमने देते हैं या मिट्टी खाली नहीं होने के कारण या ढके होने के कारण वहाँ पे खरपतवार या हानिकारक जो होता है घास जर्मिनेट नहीं करते हैं, उगते नहीं हैं, जिससे किसान भाइयों को आगे चल के खरपतवार से भी छुटकारा मिलता है।
1: जी, अब हरी खाद का जब हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं और हरी खाद हम लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार इसके लिए हम फसल का चुनाव करें और बुआई का उपयुक्त समय कौन सा हो जाता है डॉक्टर साहब?
0: जैसा कि पहले भी हमने बताया कि हरी खाद का चयन करते समय मुख्यतः हमको ये ध्यान देना है कि यदि मेरा खेत वर्षा आधारित खेत है यानी कि हमेशा बरसात की खेती पर हम निर्भर करते हैं, बारिश पर निर्भर करते हैं, उस स्थिति में हमें जो है ढैंचा का प्रयोग करना है क्योंकि ढैंचा जो होता है बारिश सहन करने की क्षमता रखता है और साथ में ये हमारे झारखंड राज्य के लिए सबसे अच्छी हरी खाद मानी जाती है। इसके अलावा यदि ढैंचा नहीं करना है तो वहाँ पर मूंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, उड़द का प्रयोग कर सकते हैं या वहाँ पे जो होता है लोबिया का भी फसल का चयन कर सकते हैं। और जहाँ लगाने की बात है तो हरी खाद लगाने का सबसे उपयुक्त समय होता है अप्रैल का महीना और मई का महीना, या ये भी कह सकते हैं कि यदि अप्रैल में किसी कारणवश नमी खेत में नहीं थी तो नहीं लगा पाए हैं हरी खाद तो वहाँ पर आप मई में या मानसून आने के बाद जैसी मानसून आता है उस समय आप हरी खाद को लगा सकते हैं। हरी खाद यानी कि ढैंचा को खेत में आप लगा सकते हैं। इसके लिए क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले जो आपका खेत में नमी होना चाहिए, नमी यदि नहीं है सिंचाई की व्यवस्था है तो आप खेत को पटवन कर लें। पटवन करने के बाद उसमें क्या करना है कि भूमि को यानी मिट्टी को कम से कम 2 से 3 बार जुताई कर लें। जुताई करने के बाद उसमें जो है मिट्टी पट्टा लगा के बराबर कर लें और जो ढैंचा या सनई का जो बीज है उसको जो है खेत में मिला करके कवर्ड कर दें। उसके बाद जमने के बाद इसको जो है आगे हरी खाद के लिए प्रोसेस करनी होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, हरी खाद का हमने फसलों का चयन कर लिया, लगा लिया और जब हम इसको खेत में दें तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? और डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी बात हम आपसे जानना चाहते हैं किसानों के लिए कि हरी खाद से मिट्टी को किस प्रकार फायदा पहुँचता है?
0: देखिए, हरी खाद मिट्टी में देने की 2 विधियाँ हैं। एक विधि होता है कि जिस खेत में हमको हरी खाद का प्रयोग करना है उसमें मूंग, ढैंचा, बरसीम, लोबिया के फसल को लगा देना है। लगाने के लिए क्या करना है कि जो हमारा खेत तैयार हो गया, तैयार होने के बाद जो होता है 60 से 80 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना है। उसके बाद जब जम जाएगा तो वहाँ पे 50 से 60 दिन में उस खड़ी फसल को रोटावेटर लगा करके या ट्रैक्टर लगा के उसी खेत में दबा देना है। दबाने के बाद उसमें मिट्टी जब ऊपर नीचे हो जाएगा या मिट्टी के साथ दब जाएगा वहाँ पर बरसात हुआ पानी या सिंचाई के द्वारा पानी भर देना है। भरने के बाद वो जो होता है सात से दस दिन में सड़ना शुरू हो जाएगा और 20 दिन में पूरा सड़ करके खाद बन जाता है। और खाद जो बनेगा वो प्रकृति खाद है, जिसमें किसी तरह का रसायन का अवशेषण नहीं है या रसायन मिक्सचर नहीं है। और वहाँ पे क्या होता है कि जब वो पूर्ण रूप से सड़ जाएगा तो कम से

0: कम जो होता है कि 60 से 70 टन के बराबर जो होता है डिकम्पोज करने का काम, या 60 से 70 टन जो होता है जीवांश की मात्रा को बढ़ाता है। यानी कि कह सकते हैं कि रसायन की भाषा में कम से कम 5 से 7 बोरा यूरिया की बचत होती है एक हेक्टेयर में। इसके अलावा दूसरी विधि जो है कि यदि हमारा उस खेत में हरी खाद नहीं लगाना है तो जो हमारे हरी खाद के फसल होते हैं, जैसे आप बताए थे मूंग या लोबिया या सनई बताए, उसकी पत्ती को या उसके जो अवशेष हैं दूसरे खेत से ला करके वहाँ पे ढक देना है और मिट्टी के साथ पलट करके उस खेत में जो है इनकॉर्पोरेट करना है या सड़ा गला देना है।
1: जी, तो इसके बहुत आर्थिक लाभ भी है, आपको जो रासायनिक खाद है उसके प्रयोग से भी बच जाते हैं और जो अतिरिक्त रूप से जो आपको आर्थिक भार पड़ता है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अपने खेतों में ही हरी खाद हम बनवा सकते हैं और खेतों में ही उसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई प्रायः रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं और जब रासायनिक खादों का हम उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें कमी आने लगती है।
0: बिल्कुल
1: जी, तो हमारे साथियों को क्या कहेंगे साहब कि हरी खाद का उपयोग करें, मिट्टी को सेहतमंद बनाएं, लागत घटाएं और अपना लाभ बढ़ाइए।
0: किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि हरी खाद एक प्राकृतिक खाद है, तो प्रकृति खाद होने के कारण इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला होता है कि जो हम खाद को मिट्टी में डाल रहे हैं वो सड़ेगा गलेगा तो वहाँ जीवांश की मात्रा बढ़ाएगा, यानी कार्बन की मात्रा बढ़ेगा। जब कार्बन की मात्रा बढ़ेगा उस खेत की उपज क्षमता बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगा, उसमें जो फसल लगाएंगे उसकी क्वालिटी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा उसमें किसी तरह का जो है खरपतवार का प्रकोप नहीं होगा। इसके अलावा मिट्टी की जब स्वास्थ्य सुधर जाएगी तो किसान की स्थिति भी सुधरेगी, क्योंकि मिट्टी से ही जो फसल का उत्पादन बढ़ता है। इसलिए हमारा सुझाव होगा किसान भाइयों, आप अपने खेत में हरी खाद का प्रयोग जरूर करें, इससे फायदे ही फायदे हैं, घाटा बहुत कम है।
1: जी किसान साथियों, हरी खाद के बहुत सारे फायदे हैं और हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि मिट्टी की जान है हरी खाद और मिट्टी को ये सेहतमंद बनाता है। आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी आते हैं और जो पैदावार होती है उसका भी उसमें प्रभाव दिखता है। और आजकल आप जान रहे हैं बीमारियाँ कितनी बढ़ रही हैं रासायनिक खादों का, हम रासायनिक दवाओं का हम उपयोग करते हैं और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो अपने खेतों में ही हरी खाद आप लगाएं। कौन से फसलों का चयन करना है डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया, भूमि की तैयारी कर लीजिए और कम खर्च में आपको वहीं पर एक खाद मिल जाता है और आपको आर्थिक लाभ भी मिलती है, फसल भी बढ़िया आप लगाते हैं और खाद से बाहर की खाद से आपसे उससे आपका बचाव हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि हरी खाद कैसे लगाएं और कैसे अपने खेतों में इसका उपयोग करें। आज आप इस कार्यक्रम में आप बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक वर्षा कृषि विश्वविद्यालय, किसानों से आप रूबरू हैं, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: तो तनी देरी पहले हमरे मन जानकारी करत रही माटी कर जान हरियर खाद होला, बहुत बढ़िया जानकारी देले दादा।
5: और उम्मीद है किसान भाई बहन मन से फायदा उठाब और जे हमरे मन अखन खेत बाड़ी में रासायनिक खाद कर बहुत आयत मात्रा में प्रयोग करी ला ताकि ज्यादा उत्पादन हुई, मुदा अगर एक लंबा समय के लिए देखल जाए तो एक से हमके नुकसान होल।
4: हाँ।
5: और हरी खाद जो होल चाहे हमरे मन कर और जे प्राकृतिक खाद होल से अगर हमरे मन कर खेत भी बढ़िया रहे, उत्पादन कर क्वालिटी भी बढ़िया रहे और अगर दूरदर्शिता हो के सोचल जाए तो हमरे मन कर उत्पादन भी बढ़ेल। काहे कि रासायनिक खाद कर में का होल कि माटी धीरे धीरे धीरे धीरे उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ जाए ला। तो इसलिए हमरे मन कर ज्यादा से ज्यादा हरी खाद और जैसे बर्मी कंपोस्ट है, गोबर खाद है, चाहे वैसा बहुत खाद है से मन के प्रयोग करे चाहिए। और इकरे संगे फिन सेक्टो हमरे मन कृषि विकास गीत नागपुरी में धर्मू नायक और संगीकर गाल के सुनी ला।

0: आर एखन हमारे मन सुनत रही नागपुरी लोकगीत हारमोनियम और गीकर गाल।
1: हाँ दादा, तो
0: और एक संगे देखू किसान भाई बहन मन हमरे के बेरा आगे जाए की इजाजत नहीं देवत है, तो खेती बाड़ी कर बेरा यह ठा हमरे मन खत्म करे चाहती, मुदा एखन हमरे मन कर और कार्यक्रम है तो कहूँ जाए की जरूरत रखे।
1: हाँ,
0: हमरे मन एखन आवी जानी ले हमारी दुनिया में।
1: हाँ, आज घरनी सभा है के दादा, सब बहन मन असरा लगे हो कि आज का सुनवा कह के।

0: तो हमारे मन तो घरनी सभा में बहुत कुछ जोगाड़ कर ही सब सुनवाब,
1: हाँ
0: लेकिन सबले पहले देखू हमारे मन के घरनी जे रहेला, हमारे मन के महिला रहेला, तो घर कर लक्ष्मी हुएला, और घर कर लक्ष्मी हुए के नाते वो मन के पूरा घर के देखभाल करे के हुएला, छुआ पुता के देखभाल करे के हुएला। और देखू हमारे कर मध्यम वर्गीय परिवार में चाहे कम आर्थिक आय वाला परिवार में
1: हाँ
0: बहुत कचकच हुएला, तो ऐसन में हमारे मन कर कचिया अगर व्यवस्था बढ़िया से करे चाहिए, और बढ़िया से खर्चा करे चाहिए, दो पैसा बचा के भी चले के चाहिए, काले कि हमरे मन कर ऐसा करब तो हम कर मन कर जो भविष्य है
1: हाँ
0: जैसे कर में काम हवे।
1: तो हमरे मन के कोनो कोनो योजना वटे हो ध्यान देवे के चाहिए
0: देखू रावरे तो बढ़िया ध्यान देवती, तो इकर लागिन एक ठो बीमा योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
1: हाँ तो इकर लेनी दादा बहुत कम रुपया लागेला जे कि हर साल 12 रुपया करथी में कटेला तो महीना में कहब तो 1 रुपया नहीं जमा करे खाते तो साल में एक धर 12 रुपया कटेला। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कर तहत देखो धारक के 2 लाख रुपया दुर्घटना जीवन बीमा देवल जाए संगे आंशिक नुकसान में 1 लाख कर बीमा देवल जाए। ई बीमा राशि देखो ई योजना 18 से 70 बरिस कर आदमी मन ले है। अगर ई योजना कर अंतर्गत बीमित आदमी कर दुर्घटना में मृत्यु हो जाए चाहे हादसा में दियो आँख चाहे दियो हाथ चाहे दियो गोड़ खराब हो जाल से उके 2 लाख रुपया मिलेला।
0: और एकदम बढ़िया बात के बता ली झलेश्वरी बहन कि हमारे मन के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करा लोग चाहिए, और बैंक में खाता रहले, बैंक में एक फार्म भर ले कट जाए ले, और
1: हाँ
0: बहुत कम कचिया में हमारे मन कर बढ़िया बीमा हो, और से सुरक्षा हमारे मन कर जो हो एक्सीडेंट दुर्घटना से चाहे अस्पताल में हमारे मन अगर कुछ आंशिक हो जाए ला तो ऐसा हम मिले ला नहीं,
1: हाँ
0: तो इकर बारे हमारे मन कर और कराए चाहिए, और आदमी मन कर जानकारी देवे के चाहिए,
1: देख चाहिए हाँ
0: और दो
1: दादा
0: पैसा हमरे मन बचा के चलब बीमा योजना अगर ले के चलब तो हमरे मन कर भविष्य में चाहे कोनो अनहोनी में हमरे के फायदा होए ला, नहीं तो हमरे मन देखी ला कि कोई आदमी मन कर घर में कोई कमाए वाला आदमी मन कर नाश हो जाए ला, तो उकर घर में बहुत परेशानी हो जाए ला, कचकच हो जाए ला, और पैसा नहीं भेटाए ला, तो उकर से छुआ पुता के पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो जाए ला, या कभी बड़ बीमारी होए ला तो जमीन जायदाद के जे तनी मनी बचल खुचल रहे से बेचे के पड़ जाए ला, तो इकर से आर्थिक परेशानी होए ला, और आए वाला दिन में गरीबी और बढ़े ला,
1: और
0: और हमरे
1: बढ़ेला
0: अपने आप
1: दादा
0: के आगे नहीं बढ़ाए पा रही ला, और छुआ पुता के पढ़ाई भी नहीं पा रही ला, तो ऐसा से बहुत कचकच हो जाए ला, सेले हमरे मन कर आवे मने दुर्घटना के आवे पहले चाहे मतलब दूर समय के आवे के पहले बुरा समय के आवे के पहले हमरे बनकर उस समय से निपटे कर व्यवस्था कर लेवे के चाहिए।
1: हाँ बड़ा नगद कहत ही दादा तो ई सब के हमरे मन के ध्यान देवे चाहिए। और कहब कि एखन तो कहब कोनो जगह कुछ भी घटना हो जाएला से ले ई बहुत बढ़िया योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जे कि देखो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कर मुद बाद इसन है कि प्रीमियम राशि 12 रुपया हर साल कटेल कवरेज नियम एक्सीडेंट कवरेज इकर में 2 लाख से आंशिक 1 लाख तक और आयु सीमा है तो 18 बरिस से बगरा।
0: तो रावड़े बहुत
1: और
0: बढ़िया जानकारी दे ली, और कहे के माने हैं कि आदमी जब 18 साल के हो जाए और 7 वर्ष लेके
1: हाँ
0: बुढ़ापा माने 70 बरिस तक के
1: 70 बरिस
0: होएल,
1: तक
0: तो कहे के माने लगभग लगभग सभी आदमी मन के हो सकेल, और इतना बढ़िया जानकारी कर बाद फिर से हमरे मन एक रंग कर जुगाड़ करी, तो आओ सुनी ला यशोदा देवी और संगी कर गावल नागपुरी में लोकगीत के।

0: हम तो एकदम गाने गीते में खो जा रही एकदम और बहुत बढ़िया रसीला गीत रहे रस एकदम जिसे नहीं आवेला कि एकदम गाना में जो रस रहे और संगीत कर जो आनंद रहे तो हम डूब जा रही।
1: अच्छा दादा तो आउरे सुना लेकिन तनिक रिझ रंग करे के चाहिए कहो नी रिझ रंग कर संगे संगे जानकारियों करे के चाहिए
0: एकदम देखू तो... रिझ रंग मिजाज बढ़िया रहे ला, मन बढ़िया रहे तभी हमरे मन कोई बात सुनी ले चाहे बोली ले चाहे पढ़ी लिखी ले तो हमरे कर दिमाग में रहे ला और याद भी रह जाए तो एखन हमरे मन बढ़िया से गाना सुन के मन के फरहर कर ले ली तो अब आओ जानी ला कि देखू आज कल हमरे मन देखा थी एक ठो इंग्लिश में कहे ला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई के मान मतलब का हवेल नहीं हमरे मन कहूँ कहूँ जानबो नहीं करी मुदा ए आई कहले सब समझ जाए ना और सब कुछ में आजकल मोबाइल मन में देखी ले तो ए आई से बनल है कि का है तो ए आई का चीज़ है जे के इंटेलिजेंस

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तीकर का महात्म है से क्या बतात है जय मंगल कुमार पांडे, आओ सुनील।
1: मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करने के लिए हम आपके बीच मुखातिब हुए हैं। यह एक कंप्यूटर का एक ही रूप है। कंप्यूटर में हम जब विकसित करते हैं, कंप्यूटर जब पहले काम करता था, कंप्यूटर दो बिंदुओं पर काम करता था, एक जीरो और वन। तो जीरो और वन में हम लोग अप था और डाउन था। शट डाउन करने का जहाँ बात था, ऑन करने का बात वन हुआ, जो वन का मतलब हुआ कि शट डाउन करने का बात हुआ। तो इसमें हम देते हैं लॉजिक, और लॉजिक देने के बाद लॉजिक में हम बताते हैं कि किस तरह से मांसपेशियां वगैरह को हिलाने वगैरह का हम लोग काम करते हैं। उसी तरह का बात जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मानव की बुद्धिमत्ता को ज़्यादा बढ़ाता है और उसके काम करने के जो क्षमते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। जब यह तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे दौर में लोगों के बीच में बड़ा ही संदेह बना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा तो एक बहुत बड़ा बेरोज़गार का फौज जो है खड़ा कर देगा। लेकिन ये बात नहीं है। ये बात है कि जब हम उसमें काम करेंगे, जब हम उस पर अच्छा काम करेंगे, तो इसके मतलब है कि हम उसके तकनीक का जब हम उपयोग करते हैं, तो तकनीक से जो है उसका यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जो है नुकसान हो सकता है। लेकिन तकनीक को यदि हम सदुपयोग रूप से हम काम करते हैं तो वहाँ हमारे नुकसान का कोई गुंजाइश नहीं होता है। अभी हम लोग इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम लोग तीन देशों का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वो एक अमेरिका है और एक है चाइना और दूसरा हमारा देश स्वदेश है, भारत है। इस तीनों में जब हम तुलना करते हैं तो अमेरिका का जो कार्य क्षमता है सबसे ज़्यादा है। कारण है कि अमेरिका में जो है मार्केल जो है, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, 1956 से वो लगे हुए हैं और वहाँ जो है सबसे ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। सबसे पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने के साथ साथ आविष्कार भी यहाँ ज़्यादा होता है और उसमें उसको जो है रोज़ नया नया आविष्कार के रूप में काम कर रहा है। आज हम जब ईरान और अमेरिका का जब हम युद्ध को देखते हैं तो अमेरिका ने एंट्रोस्पिया जो है एआई को लगाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाया। एंट्रोस्प्रिया जो है, एंट्रोस्प्रिया ने वहाँ जा करके लड़ाई का पूरा जो है कमान को संभाल लिया, जिसको क्लाउड भी कहते हैं। और क्लाउड ने देखा क्या कि वो जो क्लाउड है, वो क्लाउड ने जो रिपोर्ट दिया कि वहाँ जो है ईरान के विभिन्न जगहों पर जो है यहाँ सैन्य का एक दफ्तर है, सैन्य दफ्तर पर यदि हम लोग हमला करते हैं तो उसका सैन्य शक्ति जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस पर जो है एक सबसे बड़ी भूल हो क्या गई कि उसने जो एस्ट्रोपिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट दिया उसका मूल्यांकन जो है मानव के रूप में नहीं किया गया, मानव ने उसका मूल्यांकन नहीं किया। नतीजा क्या था कि उसका जो डेस्कटॉप पर जो उसका एंट्री था, वह एंट्री था 10 साल पहले। 10 साल के अंतराल में वहाँ से सैन्य शिविर को हटा करके वहाँ जो है सिर्फ बच्चों के पढ़ने के लिए काम हो रहा था, जिसका नतीजा हुआ कि 340 बच्चा लड़कियाँ जो है जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही थी उस हमले से मारे गए। तो कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मानव का उसका जो है मानव का जो साथ में काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ता है, लेकिन उस पर आपको कभी कभी कंट्रोल भी हमको करना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमारा विकास का जो दौर है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, ये सारे चीज़ों में हम लोग, चाहे वो मजदूरों के रूप में काम करने का चीज़ हो, ये सारे चीज़ों में हम देखते हैं कि उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। जैसे आप यदि हम चूंकि लॉ के क्षेत्र से आते हैं तो लॉ के क्षेत्र में हम दो चीज़ को सबसे पहले आपके बीच में लाना चाहेंगे। एक है ऐप है प्रोवकील। प्रोवकील जो है, प्रोवकील में एक वकील का साथ में जो उसका ऑफिस है, उसके ऑफिस में जो है मोहरिल होते हैं,

0: पेस्कार होते हैं, पेस्कार मोहरिल होते हैं, तो वो मोहरिल जो है, मोहरिल का काम है कि वकील साहब का रोज का केस का अप टू डेट जो है देना है कि आज जो है किस किस कोर्ट में क्या क्या केस है और उस केस में क्या प्रोसीड हुआ, गवाही में था या ऑर्डर में था या विटनेस में था या नोटिस में था, ये सारा सूचना जो है ऑटोमेटिकली प्रो वकील के माध्यम से आपको मिल जाता है। और लीव लॉ में हम लोग जब पहले हम लोग जब एआर वगैरह देखते थे तो एआर वगैरह देखने में हम लोगों को बहुत टाइम लगता था, लीव लॉ में हम जा करके जैसे ही केस का नेचर को हम बताते हैं कि वो लीव लॉ में सारा बात चला आता है कि इस तरह का जजमेंट इसके जो है लाइव में हुआ है, सेम लाइव में ये जजमेंट हुआ है। ये तो बात हुआ आपका हमारा लॉ के क्षेत्र में। अब जब कृषि के क्षेत्र में हम जब जाते हैं तो कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक वगैरह पहले क्या था कि मिट्टी का शोध करते थे, वहाँ का पानी का शोध करते थे और पानी का शोध करने के बाद उनका एक रिपोर्ट आता था कि इसमें इस तरह से विटामिन कैल्शियम का कमी है, इस कमी को हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं, ये बात करते थे। लेकिन क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जा करके वो बता देता है कि इस मिट्टी में ये पौधा लगाइए, इस मिट्टी में ये फसल लगाइए, तो वो फसल जा करके ज़्यादा रूप से आपको बढ़ेगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में जब हम चर्चा करते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि चिकित्सा में पहले क्या था कि पहले लोगों के बीच में हम लोग जब जाते थे तो हम लोग को आज का जो रिपोर्ट है 3 दिन के बाद आता था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 3 महीना पहले आपका जो है शरीर में शुगर का क्या लेवल था, आपका लीवर फंक्शन क्या था, होल बॉडी का चेक वगैरह का फंक्शन क्या था, एक्सरे क्या था, आपका इकोसिस्टम क्या था, ये सारे सिस्टम को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कम समय में उसको बताता है और खास करके क्या क्या प्रिकॉशन आपको करना है, इन सारे बातों को हम लोग देखते हैं। एक दूसरा पहलू है, ये आपने देखा कि यह जो है इसका जो है एक लाभ का पहलू, इसका हानि का पहलू क्या है कि यह जो है हमारी गोपनीयता को ख़त्म कर देता है। दूसरा क्या है कि फ़ोटो वगैरह जो इसका फोटो फैमरिंग होता है या जो है झूठा फोटो तैयार करता है, नेकेट फोटो तैयार करता है और हमारा जो है छवि को धूमिल करता है, यह भी एक तरह से हमारा इसका दूसरा, इसका जो है यदि हम उपयोग सही ढंग से नहीं करेंगे तो यह जो है विकास के साथ साथ विनाश का हो सकता है। यह जो है सोचने की शक्ति जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है वह उसके अंदर में एक ही सबसे बड़ा दुर्गुण है कि इसमें संवेदना नहीं होती है। डॉक्टर लोग जब चिकित्सा करते थे तो उनको जा करके उनके साथ जो है हम लोग चर्चा करते थे, डॉक्टर साहब आज जो है हमारा शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, आज हमारा जो है, तो डॉक्टर साहब उस हिसाब से हमारा क्या कंपोजिशन है उसको हम लोग देते थे। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं कि माथा दर्द हो रहा है तो माथा दर्द का उसका एक ही रास्ता है और वो जो है कभी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें कभी यदि हम क्वेश्चन यदि हम ढंग से नहीं करते हैं तो वैसे स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है संवेदनाएँ नहीं रहती है। और आपको जब हम लोग अभी हम लोग जब एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में हम लोग को साइंस आर्ट्स कॉमर्स जितने वगैरह तरह के सब्जेक्ट थे उसको पढ़ने के लिए हमको जाकर के कहीं जाना पड़ता था विद्यालय वगैरह में। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव है कि आप जो है वो बताइए, वो सारा कंसेप्ट को आपको सही ढंग से बता देगा। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास के साथ साथ वो विनाश का, यदि उसको सही ढंग से उपयोग करेंगे तो विकास का रास्ता लेके जाएगा, यदि उसको गलत ढंग से उपयोग करेंगे तो विनाश का रास्ता जाएगा।
1: बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे दादा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कर महत्व कर बारे में जेके जानकारी देवत रहे जयंत कुमार पांडे।
2: और हमने में देख ली कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कर आज कर दौर में का महात्म है और हर जगह एक उपयोग होते हैं, AI का उपयोग होते हैं। और हमरे मन कोनो काम के जल्दी करे चाहिए, चाहे कोनो जानकारी हासिल करे चाहिए तो AI का प्रयोग धड़ल्ले से करत ही, और AI का बहुत बढ़िया हमरे मन कर उपयोग के बता रहे हैं।
1: हाँ हाँ,

0: तो एआई के उपयोग छुआ मन के पढ़े लिखे में भी आवेला और सब काम में आवेला। हमारे मन करा जीवन के एक तो हिस्सा बनल है
1: एआई। मन के फिर ना कहू दादा बड़ो मन के आवेल।
0: तो अब इतना बढ़िया जानकारी के संगे आओ एक ठो गीत के सुनी लिया अजीत कुमार और संगीकर गावल के।
1: हाँ चलो तब सुनिए।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर

0: पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: और इगरे संगे आज कर हमरे कर कार्यक्रम कर बेरा सी रात है, तो जाते जाते बता दे चाहिए कि कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे एसके लालकर और इगरे संगे भाई मोहसिन खान
3: और झलसोरी बहन के देव विदा
2: जोहार।

0: सकते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिया जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र। 3 प्रस्ताव स्वीकृत। राज्यपाल ने शर्तों के साथ राज्य सूचना आयोग में 4 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को दी मंजूरी। मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति पर बल। राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी का नामांकन वैध घोषित। नाम वापसी का कल आखिरी दिन। जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान। राज्य में 3-4 दिनों में मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना। कई इलाकों में 16 जून तक बारिश के आसार। और रांची के जेएससीएस स्टेडियम में आयोजित जेपीएल के पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक में विकास और जन कल्याण के 3 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र दिया।
4: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में स्थापित किया है। युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए। बीते 12 वर्षों में वुमेन लेड एम्पावरमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा से जुड़ा है। आपने देखा, करीब करीब हर कैबिनेट मीटिंग में हमारे अन्नदाताओं के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम होता ही होता है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने श्री मोदी को इस ऐतिहासिक कीर्तिमान के लिए बधाई दी है। उन्होंने रांची में प्रेसवार्ता में कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने हर मोर्चे पर सफलता पाई है।
5: मुद्रा लोन योजना के माध्यम से 25 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। एक गरीब माँ बाप का बेटा प्रधानमंत्री बना है जो गरीबों की चिंता करने का काम विगत 12 वर्षों से किया। जो व्यक्ति इलाज के अभाव में तड़प तड़प के काम में मर जाता था, जो भूखा व्यक्ति पेट में गच्चा बांध करके पेट के बल 100 रुपए भूख मिटाता था, आज किसानों से पूछे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है।
3: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक चेतना तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना भी है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 2 दिनों तक चली जांच और आपत्तियों के बाद श्री नाथवानी के नामांकन को वैध मानते हुए उसे मंजूरी दे दी है। इससे राज्यसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके लिए कुल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रत्याशी

0: तक नाम वापस ले सकते हैं, जबकि आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि किसानों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए विभाग कड़े कदम उठा रहा है। केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण पर जोर दे रही है।
1: यूरिया डीएपी जो है और फर्टिलाइजर्स जो है वो केंद्र सरकार से ही हम लोगों को अलॉटमेंट प्राप्त होता है। वैश्विक स्तर पर युद्ध चलने के कारण भी इन चीजों का निर्यात में कमी आया है। राज्य के किसानों को भी अपेक्षाएं हैं, केंद्र सरकार को किसी न किसी रूप से इन अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली रवाना हुए। राज्य भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि राजनीतिक दलों ने विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए 59,340 बूथ लेवल एजेंट BLA-2 की नियुक्ति की है। इधर झामुमो की ओर से बोकारो में BLA के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने एसआईआर से संबंधित जानकारी दी।
2: अगर किसी भी तरह का उनको परेशानी हो तो उनको सहयोग करने के लिए पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी और BLA-2 के साथ में कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगी। पंचायत कमेटी को सहयोग करने के लिए प्रखंड कमेटी को सहयोग करने के लिए जिला कमेटी और जिला कमेटी को सहयोग करने के लिए केंद्रीय समिति के लोग रहेंगे।
0: हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड का आरा गांव आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी कनेक्टिविटी से दूर है। गांव की मुखिया सुनीता देवी का कहना है कि 2 वर्ष पहले पुल निर्माण को लेकर निविदा हुई थी, लेकिन राज्य सरकार की विफलता के कारण काम शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पुल और पक्की सड़क के लिए क्षेत्र के लोग तरस रहे हैं।
3: पोखरिया से आरा जाने के लिए रास्ता बहुत ही खराब है, जिसमें लकड़ी का पुल बनाया गया है, उसी से आवागमन अभी हो रहा है। यहाँ पे टेंडर लगभग 2 साल पहले हो चुकी है, जो अभी तक कार्य स्टार्ट भी नहीं किया गया है। यह कार्य को तो 2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए, जो अभी बहुत विलम्ब हो रहा है और वहाँ के जनता को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है।
0: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून के अगले 3-4 दिनों में राज्य में प्रवेश करने की संभावना है। केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस अवधि में कई जिलों में आंधी और वज्रपात की आशंका है, जिसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड T20 प्रीमियर लीग का आज से आगाज हो गया। रांची के JSCA स्टेडियम में आज खेले गए पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से पराजित कर दिया। रांची टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए। लक्ष्य हासिल करने उतरी छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम 150 रन ही बना सकी। लीग का दूसरा मुकाबला रात 8 बजे से कोयलांचल सुपर किंग्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच होगा। अब से थोड़ी देर में JPL का औपचारिक उद्घाटन होगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मौजूद रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिया जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने

ने का मंत्र, तीन प्रस्ताव स्वीकृत। राज्यपाल ने शर्तों के साथ राज्य सूचना आयोग में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को दी मंजूरी। मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति पर बल। राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी का नामांकन वैध घोषित। नाम वापसी का कल आखिरी दिन, जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान। राज्य में तीन चार दिनों में मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना। कई इलाकों में 16 जून तक बारिश के आसार। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में आयोजित जेपीएल के पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: गिरिडीह जिले में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास जारी है। गिरिडीह के उप विकास आयुक्त अस्मिता कुमारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 1,09,000 से अधिक लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया है।
2: गिरिडीह जिला अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 1,09,410 आवास पूर्ण करा करके उन सभी लाभुकों को गृह प्रवेश करवा दिया गया है। शेष हमारे जिले में 18,150 आवास का कार्य निर्माणाधीन है, जिसे निकट भविष्य में शीघ्र कराते हुए उनको भी गृह प्रवेश कराया जाएगा।
1: गिरिडीह शहर को महानगरीय सुविधा देने के लिए नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कई योजनाओं की स्वीकृति दी है। नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि उसरी नदी में अब शहर का नाली का गंदा पानी नहीं जाएगा, साथ ही उसरी नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनेगा।
3: हमारे नगर विकास विभाग के द्वारा जो था पूर्व में गिरिडीह नगर निगम को उसरी नदी संरक्षण और पर्यावरण का जो उसमें देख रहे होंगे स्वच्छता बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध थी, लेकिन वर्तमान में हमारे मंत्री जी के यहाँ रहने से एक दिन उनका दिशा निर्देश था इसको स्वच्छ बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार करने के लिए, तो उसको लेके हम लोगों ने एक DPR बनवाया एक एजेंसी के माध्यम से, और उसमें जैसे एक है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट उसमें 15 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, और दूसरा है हम लोग को दिया गया है STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे नदी का पानी जो शहर से नदी में पानी जो गंदा जा रहा था उसको हम लोग अब उसका एक तरह से कहिएगा कि STP जो ये निर्माण हो रहा है उसे शुद्ध कर सके उस पानी को और नदी में प्रभावित कर सके। दो योजना झारखंड सरकार का जो हमारे माननीय मंत्री जी के पहल से ये चल रहा है, और ये पाइपलाइन में ये योजना अभी समझ लीजिए कि फाइनल स्टेज पर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरा होने पर गिरिडीह की महिलाएं खुश हैं। डुमरी की लिलुआ देवी का कहना है कि सरकार ने गैस राशन से लेकर के उन्हें कई योजनाओं का लाभ दिया है।
4: हमारा नाम लिलुआ देवी लगो, घर डुमरी, जिला गिरिडीह। हमनी मोदी सरकार गैस दलियो बहुत दिक्कत है बोलो हमनी के, तो हमनी के लकड़ी पत्थर सब मतलब कि भीन जालो, खाना पीना बने ही ना पारो लियो। मोदी सरकार हमनी के गैस दे लियो तो बड़ी सुविधा कर लियो, हमनी खाना भी बना लियो, अपना काम में भी निकल जाए, बच्चा स्कूल भी भेज लियो। अब प्लस में हमनी मोदी सरकार दे लियो राशन दे लो, कम से कम 5-6 साल से बेसी हो गए फ्री फ्री राशन भी हमने खिलाए रहो, पैसा भी दे रहा हमनी के।
1: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय के तहत गिरिडीह जिले के 99 गांवों का समग्र विकास के लिए सर्वे चल रहा है। जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति से आच्छादित गांवों का विकास करना है। जिले के सरिया और डुमरी प्रखंड के एक एक गांव को शामिल किया जा रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
0: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

Rigtigt, men vi meter, yani 549 kHz तथा FM 105.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा आज का ये कार्यक्रम है मुंडारी भाषा में।

0: इनको सोबेन के अपन अपन समाज रा मेनते अपन अपन समाज रा प्रति उड़ू आर विचार सोबेन को उड़ उतना हार यदि काबो उड़ उतना तो उड़ू याबो चिया ची समाज कार्य दो अपन का एना मेनते जिम्मेवारी बो आगुया अपन आ कंधारे भारम बो आगुया गो याबो आर ओकन होड़ो बुगिन विचार बुगिन सेना उदुबा बुआ इनिया तायम थे इनिया साथ रे अबु बढ़ाव न बु आर ने दिसुम के माजले कबु बाईया माजले बु सुतो या बु सांगो में अबु ताकि पूरा विश्व रे अबु भारत दिसुम के पहला स्थान रे आगुर अबु कोशिश या चेची ने दिसुम रे पूरा दुनिया ते अबु अधिसुम रे सबसे ज्यादा पूरा ते पूरा अबु अधिसुम रे धांगड़ा को धांगड़ी को मेन अबुआ युवा को मेन अबुआ एन सोबेन को आ युवा को आ पेड़े मिलावले रे मन पूरा मरंग होबा जैसे बो मेने आ मोयन कटू उरा पेड़े इमिनंग बनो चिमिनंग पांच ठो कटू रे आ पेड़े मिना एना मेनते एल्ले कगे चिमिनंग सांगी बु तैना धांगड़ा आर धांगड़ी को चाहे युवा को इमिनंग अबु पेड़े आर विचार मोदो का आर आयर तेबु बढ़ावन का चियाची हिजुतन समय रे बु लेलेन गया देश आर दुनिया रे अबु काजी ले रे अलग अलग दुनिया रे अलग अलग रा परिस्थिति आर सोबेन लेकान स्थिति को मेना एना मेनते लड़ाई लो साथ रे हो चाहे इनकुलो दपर दाड़ी मेनते अबु के केटेन लगाती हैं सरकार कहीं ना कहीं इना को उड़ उजदा दो सरकार दो अबू के तनबु एना मेनते जाया आ जिताया आ जगर रे आओगे आलो कबू सेनो का अपना विवेक अपना उड़ू और विचार जमा किया थे मौन किया थे अबू आयर थे बु बढ़ाना युवा अवस्था पूरा गे गोनुगन उम्र तना अवस्था तना एना मेनते अबू के ने समय के गलत दिशा रे गलत होरा रे आलो कबू इदी का चिया ची जोनोमन ने जो समय में ना मिसा के नामोगा समय मिसा गया इना उड़ उतन लो अबू के ने गोनुगन समय के अबू समाज अबू जीवन अबू अधिसु मेनते संकल्प अबू के लेखा क्या थे अबू के आयरते बढ़ान रा जरूरत में ना इना मेनते अबू जो युवा अवस्था रेन सोबेन धांगड़ा धांगड़ी को निया संकल्प आगुया ची गलत होरा ते आलो कबू सेने का बुगिन होरा बू सेने का चिया ची ने दिसुम बाई मेनते अबू आ चेतन रे जिम्मेवार में ना इना मेनते निया संकल्प आगू क्या थे ने दिसुम बू संभड़ाए का अबू आजीवन बू यापने का
1: माइनन सुखराम पहान युवा शक्ति होरते दिसुम रे आ बिनेरिद रनकब चा विकास होबा ओरे आ काजी उद्बन बुआ आयुमतन को जा सुकुकन बुआ दुलार संगे तलिंगो ना दो आयरते ओड़ो मिसा जीरासी का मेंते दुरंग बु आयुम किया दुलार संगे को आपे सोबिन को मेंते माइनन दुरंग हरिया कृष्णा बड़ाइक आर संगे को आ दुरंग

अभी आप सुन रहे थे आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम था मुंडारी भाषा में। आकाशवाणी का ये

0: नमस्कार, मैं एना कर्मा कार्यक्रम हमारी बेड़िया में आप सबका स्वागत करती हूं। और हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे समाज में और खास करके हमारे नौजवानों के बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्याएं हैं, करियर को बनाने के लिए और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना उनको करना पड़ रहा है। लेकिन श्रोताओं, एक उससे भी महत्वपूर्ण समस्या है जो अपने व्यक्तिगत जीवन में वो आए दिन महसूस कर रहे हैं। और हमारे कई श्रोता हैं, कई दोस्त हैं जो पूछ रहे हैं हमसे कि हम क्या करें, जी हाँ, जब हमारे जीवन में ऐसा हो। जी हाँ, उनका कहना है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। हमारे शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं जिस पर हम नियंत्रण रखना चाहते हैं, क्योंकि समाज जो है हमारा और हमारी धार्मिक शिक्षाएं हैं वो हमें बताती है कि हमें नियंत्रित रहना चाहिए। लेकिन शारीरिक इच्छाएं जो हैं वो बड़ी ही बलवंत होती जाती है और हम चाह करके भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते। जी हाँ श्रोताओं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं काउंसलर आशिमा बत्रा जी और हमारे सहयोगी, जो इन समस्याओं का हल आपको बताने जा रहे हैं। तो हम आशिमा जी और फिरोज जी के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: सबसे पहले मैं श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। आपसे फिर से हमें बातचीत करने का मौका मिला और आपकी हम प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं। और ये जो समस्या, जैसे आपने भी बोला और मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने ये बात करी, लड़कियों ने, लड़कों ने, उन्होंने ये बोला कि जो हमारी शारीरिक इच्छाएं हैं उनको हम पूरा कैसे करें। तो भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे भारत वर्ष में जो नैतिक शिक्षा सिखाती है और हमारे पूर्वज उसको अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में, वो आज भी स्टैंड करती है, बिल्कुल करेक्ट है। उसमें यह है कि 0 to 25 years चर्य को फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब यह कि वो टाइम है जब बच्चे अपने आप को एडुकेट करते हैं, डिसिप्लिन में आते हैं, हर तरह की चीजें सीखते हैं और उस वक्त उनका अपनी बॉडीली नीड्स को पूरे करने का टाइम नहीं आया होता है। उसके बाद 26 से 50 साल गृहस्थ आश्रम, जब ये टाइम आता है अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम जानते हैं वानप्रस्थ है और उसके बाद संन्यास है, उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगी, लेकिन उसका एक करेक्ट टाइम हमारे देश की नैतिक शिक्षा में बताया गया है।
2: लेकिन आशिमा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि इस तरीके की बातें जो इस उम्र में जबकि लोग अविवाहित हैं, उस वक्त जो है इस तरह की आजमाइशें जो है लोगों की जिंदगी में आती क्यों हैं और किस तरीके से ये विकसित होती जाती हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं और वो अपने शरीर पे, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाते।
1: सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हम एक बायोलॉजिकल प्राणी है। हम जो प्राणी है वो एक प्रोग्राम्ड है, उसका एक एक फेज है। बच्चे का फेज अलग है, जवान होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम हमारी बॉडी चेंज होनी शुरू हो जाती है, लड़कों की आवाज बदल जाती है, जाती है, लड़कियों में भी चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस आते हैं, हम लोग उस टाइम के लिए तैयार हो रहे हैं जब हम अपना परिवार बनाएंगे और हमारे परिवार का नंबर बढ़ेगा, फैमिली विल बी क्रिएटेड। तो ये शरीर की जो अभिलाषाएं हैं ये भी गॉड के द्वारा डेवलप की है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, ये नॉर्मल है। अच्छा, दूसरी वजह ये क्या है, ये क्यों आती है, कुछ ज्यादा ये हो गया कि मीडिया में जो इमेजेस हैं वो इतनी ज्यादा सेडक्टिव हो गई हैं या इतनी ज्यादा माइंड को स्टिमुलेट करने वाली हो गई कि जब जवान देखता है तो उसका, जब वो एक इमेज को देख रहा है, न्यूज़पेपर में देख रहा है या मैगजीन या टीवी में, वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग गाने देख रहा है, तो नेचुरली उनका मन उस तरफ दौड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वो एक, आई मीन दे आर अलाइव विद दैट पैशन, उनके अंदर वो एक डिजायर है। एंड कि हमारे टाइम में इतना प्रॉब्लम नहीं था, जब हम लोग बड़े हो रहे थे इतनी ज्यादा इमेजेस नहीं थी, लेकिन उनके लिए टू मच है ये। और फिर जब वो एक चीज को देखते हैं तो उनका थॉट उस पे भाग जाता है, एंड देन दे फील कि ये मेरे साथ क्यों नहीं है या मैं क्यों नहीं पा सकता, वो हर जगह भागते हैं उसको पूरा करने के लिए कुछ गलत ढंग से, और फिर वो बहुत सारी मुसीबतों में पड़ जाते हैं और वो चीज कभी भी अच्छी नहीं होती। तो जवान लोगों का ये जो संघर्ष है, बहुत रियल संघर्ष है, मैं उनसे कहना चाहूंगी, मैं उनको एनकरेज करना चाहूंगी. एक रिसर्च हुई, सोशल साइंटिस्ट जिनका नाम है टिम एंड बेवरली ला है, उन्होंने एक रिसर्च किया. 1000 मैरिड कपल्स का उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनसे अलग अलग तरह के दो प्रश्न उनसे पूछे गए. क्या शादी में आपने शारीरिक संबंधों को पति पत्नी ने एंजॉय किया, या दूसरा ये कि क्या आपने शादी से पहले इसको किया था. तो आप हैरान हो जाएंगे. तो जो रिसर्च का नतीजा निकला वो ये था कि जितने लोगों ने शादी के बाद इस रिश्ते को एंजॉय किया वो लोग थे जिन्होंने शादी से पहले इसको कभी नहीं किया था. और जिन्होंने शादी के बाद इस रिश्ते को एंजॉय नहीं किया वो लोग थे जिन्होंने शादी से पहले इसको एंजॉय किया था या किया था. ठीक है, इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे इस बच्चे से, इस यंग पर्सन से मेरी बात हो रही है, तो उसने मुझे ये बोला कि कई दफा मेरी जरूरत इतनी ज्यादा लगती है कि मुझे लगता है कि क्या मैं सड़क पे कोई जो पर्सन जाती है, सड़क पे लोग अवेलेबल होते, क्या मैं उनके पास चला जाऊं. फिर मैं सोचता कि क्या मेरा स्टैंडर्ड इतना गिर गया. तो उसके मन में जद्दोजहद है, लेकिन कल हमारी बातचीत के बाद वो जीता, उसका अच्छाई जीता और उसका उसको समझ में आया कि ये अभी नहीं करना है.
2: नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर मनुष्य के अंदर एक मनुष्य बैठा हुआ है और वो उसको ऐसा करने से वो रोकता है. पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे. कि तुम धीरज को अपना काम करने दो, लेकिन हम अपने धीरज को अपना काम नहीं करने देते. हम स्वयं अपना काम कर लेना पहले चाहते हैं.
1: सही बात है.
2: हम उसे अवसर नहीं देते कि धीरज जो है एक अवस्था जो हमारे जिंदगी में दी गई है, जिसे हमारे हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की अवस्था कहते हैं. वो अवस्था जो है हमें अपने आप पे नियंत्रण करने की अवस्था है, हमें सीखने की आवश्यकता है. और आवश्यकता इस बात की है कि धैर्य को हम काम अपने जीवन में करने दें, ताकि हम एक कुशल मनुष्य बन जाएं, एक पक्के पुरुष हम बन जाए या पक्के स्त्री हम बन जाएं, और उसके बाद हम जीवन के आनंद को प्राप्त करें. तो अश्विन जी, ये सारी समस्याएं जो हैं, ये बातें जो हैं, इस तरह की इच्छाएं जो हैं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, तो इन चीजों से मनुष्य किस तरीके से बच सकता है, एक जवान जो है किस तरीके से अपने आप पे नियंत्रण प्राप्त कर सकता है.
1: सबसे जरूरी बात यह है कि जब आपके दिमाग में वो विचार उत्पन्न होता है, ठीक है, वो टाइम है कि जब आप उस विचार को डिसमिस कर दीजिए या हटा दीजिए. ये नहीं है कि उसके बाद आप एक थॉट आ रहा है उसके बाद चार और थॉट आपने बना के सोचने लगे और वो बात बहुत रंग बिरंगी लगने लगी आपको, फिर आपकी अलग अलग भावनाएं उत्पन्न हो गई उसके साथ, और फिर आप कह रहे अब मैं क्या करूं. जैसे जिस बच्चे से मेरी बात हो रही है वो कह रहे मैं उसको कैसे दबाऊं. दबाना नहीं है. जब आपके माइंड में ये थॉट पहली दफा आता है,
2: बड़ी खूबसूरत बात है ये कि अभिलाषाएं जो हैं वो अपनी ओर हमें खींचती हैं, और अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं हमारे जिस्म के अंदर, हमारे आंखों के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे मन के अंदर वो अभिलाषाएं जो हैं वो गर्भवती होती हैं, और वो अभिलाषा जो है पाप बन जाता है. तो हमारा नैतिक पतन हो जाता है, हम अपनी दृष्टि में आप ही गिर जाते हैं, शारीरिक रूप से हम पंगु बन जाते हैं.
1: बहुत अच्छे शब्द आप कह रहे हैं भाई. एक और भी बात है कि व्यभिचार वो नहीं है कि जो हम फिजिकली करते हैं. व्यभिचार भी दिमाग से शुरू होता है. अगर हमने दिमाग में कर लिया तो वो व्यभिचार हो गया.
2: अगर किसी को हमने कुदृष्टि से देख लिया तो हमने व्यभिचार कर लिया.
1: एग्जैक्टली. यानी कि थॉट,
2: जी जी,
1: जो विचार है वहीं पे कंट्रोल करना है. सारे जवान जो आज हमें सुन रहे हैं, हमारी फरीदी जी की और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और तमाम सब जवानों से, बड़ों से भी, कि उस थॉट को उपजने ही मत दीजिए. जब वो आता है उसको डिसमिस कर दीजिए, उसे हटा दीजिए, कुछ और सोचने लगे. दूसरी बात, अपनी आंखों पे कंट्रोल कीजिए. अब कोई भी कहता है हम न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें अजीब अजीब तस्वीरें होती हैं, कपड़े ढंग से नहीं पहने होते, लोग हमारे दिमाग में विचार आते हैं, या हम टेलीविजन देखते हैं, हम मूवीज देखते हैं और हमारे मन में विचार आते हैं. तो ठीक है, ये इमेजेस हमारे दिमाग पे आएंगे. बल्कि आप सड़क पे गाड़ी भी चला रहे हैं, आप एक होर्डिंग देखेंगे उस पे आपको इमेजेस दिख जाएंगी जो कि गलत है. तो वो कहेंगे कि क्या हम अपनी आंखें बंद करके चले. देखिए वो तो संभव नहीं है, लेकिन आप जब उस फोटोग्राफ को, अगर आपकी नजर चली जाती है, तो आप अपने थॉट को वहां से हटा लीजिए, अपनी नजर वहां से हटा के कंटिन्यू ड्राइविंग एंड bring something else to your mind. ये एक practice है. जैसे हम लोग आजकल, लोग खाना खाने पहले हम कुछ भी खा लेते थे, लेकिन आजकल हमारे को lifestyle diseases हो रही हैं, तो हम अपने खाने पे भी नियंत्रण करें, ये सही है ये नहीं है, और diabetes से भी बच रहे हैं, high blood pressure, low blood pressure से बच रहे हैं. तो एक नियंत्रण है. ये नियंत्रण भी आपको दिमाग का, विचार का, आंखों का सीखना पड़ेगा. पहली बात मैंने बोली कि जब आपके दिमाग में थॉट उत्पन्न होता है, उपजता है, आप उसको थॉट को चेंज करिए. दूसरा है कि आंखों पे जो आप देखते हैं उसको कंट्रोल कंट्रोल कीजिए, उस पर नियंत्रण करिए. और अगर आपने कोई चीज देखी भी है, यू डाइग्रेस फ्रॉम इट एंड डोंट पे अटेंशन टू इट. तीसरी बात बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क कीजिए. अगर आप जिस धार्मिक संस्था में काम जाते हैं, चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहां भी जाते हैं, आप अच्छे कर्म कीजिए. अपने वहां पे कितने लोगों को मदद की जरूरत है, कितने सारे काम होते हैं. अगर आप

0: मस्जिद भी जाते हैं,
1: जी,
0: बहुत सारी चीजें करने के लिए गुरुद्वारे में बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, लोग कितनी सेवा करते हैं, आप वहां पे अपनी एनर्जी एक्सपेंड कीजिए। आप अपने घर में काम कीजिए, घर में कुछ बनाइए, अपने पेरेंट्स की मदद कीजिए, किचन में मदर की मदद कर सकते हैं, गार्डन में कर सकते हैं, गेट योर सेल्फ बिजी। कुछ नहीं तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ये नहीं है कि लड़के घर पहुंचे अपना कुछ करने को नहीं, खाना खाया बाहर निकल गए मोटरसाइकिल से, फिर चार लड़कों के साथ यही बातें करते हुए पाए जाएंगे, या तो लड़कियों के बारे में बात करेंगे, इन सब अभिलाषाओं के बारे में बात करेंगे, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इस टाइम को कम स्पेंड कीजिए, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते भी हैं, गेट समथिंग सो इंटरेस्टिंग, आप शुरुआत कीजिए, मैंने ये प्रोजेक्ट किया और मैंने ऐसा किया और मैंने वैसा किया और मैं ये करने जा रहा हूँ। लोग भी अपने टाइम को मैनेज कीजिए, वर्क हार्ड। एक बात और मैं इसमें कहना चाहूंगी कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से बचें, तो ये है कि हमारा जो ग्रुप है दोस्तों का, लड़कियां भी होनी चाहिए, उनसे संग बात कीजिए, अच्छी डिसेंट बातें कीजिए, और मन में उनके लिए कोई गलत विचार मत रखिए। यूथ वर्क करिए, मिलके कोई एक्टिविटी कीजिए, गरीबों की हेल्प कीजिए, बुजुर्ग लोगों के संस्थाएं वहां जाके सेवा करिए, उनसे मिलकर के आइए।
2: बहुत सारे काम है, अच्छा शेर है इस पे कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया में देखिए, दुनिया में लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों को आपकी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है लोगों को,
0: बिल्कुल।
2: हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना समय जो है किस चीज पर व्यतीत कर रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है,
0: बिल्कुल। और जैसे आपने भाई अभी कही था, जवानों को एक एग्जाम्पल होना चाहिए, ऐसा बढ़िया एग्जाम्पल कि पेरेंट्स भी देखें कि कमाल है मेरा बच्चा। हो सकता है आपके एकेडमिकली रिकॉर्ड 90% मार्क्स ना आ रहे हो सकता है, नंबर्स कम हो, लेकिन आपका जीवन एक बहुत रिच जीवन होना चाहिए, आपकी क्वालिटीज रिच होनी चाहिए आप में।
2: हमारे अंदर ये समस्याएं जो आई हैं, उसका कारण है कि हमारा नैतिक पतन हुआ है, और नैतिक पतन के कारण हमारे अंदर ये समस्याएं आई हैं। लेकिन नैतिकता हम सीखे कहां से? नैतिकता ठीक है, किताबों में पढ़ाई जाती है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन नैतिकता का मैं सबसे बड़ा आधार जो समझता हूँ वो धार्मिक शिक्षाओं को मैं मानता हूँ, कि धार्मिक शिक्षाएं जो है वो हमें नैतिक रूप से बलवंत करती है। इसलिए हमारे जीवन का आधार जो है वो परमेश्वर तो होना ही चाहिए,
0: और हमें हर गलत काम को नो कहना चाहिए, नो। जवानों, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। अगर लोग आपके ऊपर मजाक उड़ाते, ओहो तुम तो हमारी ट्रेंड नहीं चल रहे हो, हम तो इंजॉय कर रहे हैं ओपनली, नो, से नो। अल्टीमेटली आप ही सक्सेसफुल होंगे, आप अपनी वाइफ के साथ या आने वाले हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ को बहुत सुनहरा बना सकते हैं बाय सेइंग नो, मेक इट अ चॉइस। जैसे कि एक स्लोगन है, से नो टू ड्रग्स, आई विल से नो टू प्री मैरिटल सेक्स, इसकी जरूरत नहीं है।
2: जी, बड़ी अच्छी बात है कि हर बात जो हमें नजर आती है, जो हम करना चाहते हैं उचित हो सकता है, हमारा विवेक क्या कहता है उसके मुताबिक शायद उचित हो सकता है, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए या हमारे लाभ के लिए शायद ना हो, तो नतीजा क्या निकल के आएगा हम उसको नहीं जानते। और आज के दिन यही स्थिति है हमारे जवानों के साथ, कि बहुत सारी चीजें उन्हें घेरे हुए हैं, अभिलाषाएं हैं, जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल इस तरह का है, फ्रस्ट्रेशन है बहुत सारे, इतना ज्यादा लोगों पे बोझ है इन दिनों, इतना ज्यादा लोग टेंशन में है, वो अपनी जिंदगी को किसी तरीके अपने दिमाग को डाइवर्ट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं वो किसी भी चीज से।
0: आपको एक बड़े अच्छे एग्जांपल एक जवान का देती हूँ, उससे लास्ट ईयर ये बात बोली जब हम एक कैंप में गए थे, और उसको मैं रिसोर्स पर्सन थी वहां की, उसने ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली, मैं अपना समय, अभी मैं 20 साल का हूं और मैं अभी अपना करियर बिल्ड कर रहा हूं और अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हूं, आई एम सेविंग माई सेल्फ फॉर माई वाइफ। आई वॉज शॉक्ड, आई सेड अरे आपके ये विचार है, कहते आई डोंट हैव द टाइम टू वेस्ट, इतनी टेंशन फ्री लाइफ है, मेरे सारे फ्रेंड्स की दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड्स है, वो यहां वहां लगे रहते हैं, उनकी जो टेंशन ना वो पढ़ पाते ना कुछ कर पाते, उनके दिमाग सारे वक्त उलझनों में घिरा रहता है, मेरी लाइफ तो टेंशन फ्री है। तो टेंशन फ्री फॉर्मूला, अनदर थिंग इज दिस, यंग पीपल, से नो टू दिस पर्टिकुलर थिंग, से नो टू प्री मैरिटल सेक्स एंड एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स।
2: और हम अंत में ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को, ठीक है हमें कोई समाज में नहीं देख रहा है, हमारे माँ बाप नहीं हमें, हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे माँ बाप नहीं देखते, हमारे भाई बहन नहीं देखते, समाज के हमारे लोग नहीं देखते, लेकिन जो हम अंधेरे में कर रहे हैं वो एक दिन उजाले में लाया जाएगा।
3: जी हाँ श्रोताओं, तो हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सब के लिए और खास करके हमारे नौजवानों के लिए लाभदायक रहा होगा। तो अब आप अपने प्रश्नों को या आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें बताना चाहते हैं, तो हमें जरूर फोन करें या फिर मिस कॉल दें, या फिर आप पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। और श्रोताओं, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। जी हाँ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 01।
4: तो श्रोताओं, अब मुझे एना कर्मा को
3: हाशिमा बत्रा जी को और

याद रहेंगे हमें हर एक मुलाकात के वो दौर, याद रहेंगे हमें हर एक मुलाकात के वो दौर, भुलाए नहीं जाते कभी मोहब्बत में कह गए बोल, आज भी महकती है सांसों में खुशबू तुम्हारी, तेरी मीठी यादों में ही करती है अब ये उम्र सारी।

अगला गीत फिल्म गीत गाता चल से, आवाज जसपाल सिंह की है, रचना रविंद्र जैन की, संगीत भी रविंद्र जैन का ही। मीठी बातों से तुम्हारी दिल को करार आ गया, लबों पे मुस्कान और आंखों में प्यार आ गया, यूं ही करते रहना बातें, यूं ही गुनगुनाते रहना, तुम्हारी हर एक बात पर हमें खुद पर एतबार हो गया।

0: और लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: इस गीत के साथ ही अपने दोस्त राजेंद्र को आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: दिस इज आकाशवाणी इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के। नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद डॉक्टर एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडियाज न्यू एंटी टेरर डॉक्ट्राइन। इंटरव्यूअर इज डॉक्टर श्रीराम चौलिया।
2: Namaskar and welcome. This is a special episode on completion of 12 years of Prime Minister Narendra Modi's momentous rule. Since 2014, we have seen incredible changes in this country and its role in the world.

0: में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां फलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर ये 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए
2: सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैंड ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
4: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
2: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
6: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
5: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail.

0: यकीनन पूरा किया जाएगा, और जोर देकर कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए जनाब मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम ने कांग्रेस की एतमाद शिकनी के बाद एनडीए सरकार में अपना एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क की आवाम ने देखा तो सरकार के इन 12 वर्षों के दौरान इजहार है कि एनडीए की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और उनकी सिमत सही है।
1: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि ये आवाम की पुख्तगी और शऊर का सबूत है कि उन्होंने मुझे इतने तवील अरसे तक अपनी खिदमत करने का मौका फराहम किया।
1: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे, इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
0: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी विकसित भारत का ख्वाब देख रहा है और ये ख्वाब अब किसी एक फर्द, हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत की इक्तसादी और ढांचा जाती इस्लाहात नजरियाती यकीन का नतीजा है, न कि सियासी मजबूरी का।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण।
0: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर मुसलसल खिदमात अंजाम देने का जश्न मनाने को ये एक तारीखी खराज तहसीन है। मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मोदी सरकार के विजन पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी काबीना ने उस करारदाद को मंजूरी दी है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगातार मुद्दत के लिए सबसे तवील अरसे तक फरायज अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर सताइश की गई है। बतौर वजीर आजम मजमुई तौर पर 4,399 दिन तक लगातार खिदमात अंजाम देते हुए जनाब मोदी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 4,398 दिन तक फराइज अंजाम दिए थे। काबिना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह करारदाद मुल्क के तहीं जनाब मोदी के लगातार खिदमत में तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है और कई अहद बस्तगियों और हसूलियाबियों को उजागर करती है। अवाम की भलाई के तहीं हुकूमत की तवज्जो को उजागर करते हुए यह करारदाद इस बात को भी उजागर करती है कि गरीब को हुक्मरानी में मरकजी हैसियत हासिल है और ये फराहम की गई खिदमात के गैर मुतवक्के पैमाने की भी अक्कासी करती है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस दौरान मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी देगी। इस प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन वाला 6

0: किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर का हो जाएगा, जिससे हवाई अड्डे के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और आवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
1: आज कैबिनेट में तीन फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और दो फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के दो बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क़यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंद डाल रहा है। इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के आवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। खुबरूस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगे मील से वजीर आजम मोदी की फर्ज शिनासी के साथ खिदमत और क्यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वजीर आजम मेड फ्रेडरिस्किन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बरसों से भारत की इक्तिसादी और तरक्याती पेशरफ की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी एबॉट ने कहा कि भारत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत वाली सरकार के तहत बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजली और सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी लाई है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारादिसानाई के, पपुआ न्यूगिनी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मरापे और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने भी वजीर आजम मोदी की बदलाव की हुक्मरानी, आलमी खिते जुनूब के लिए उनकी कोशिशों और सबकी शमूलियत और इकतसादी एतबार से गोनागोनियत वाले भारत के विजन को सराहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोबा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन
3: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर इस्लाहात अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारी अफराद ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज से फायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इनसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सके, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब फर की तफसील बताई।
2: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है वैसे पीएमईजीपी लोन भी है।

0: वही लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं, आपके में पोटेंशियल नो लिमिट्स फॉर यू।
1: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1,60,00,000 से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तकरुना में तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप्स कायम किए गए हैं। रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
2: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम पीएलआई के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरखास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमूई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर का अंदाजा है। मंजूरशुदा दरखास्त गुजार पीएलआई स्कीम के अहम शोबों से ताल्लुक रखते हैं जिनमें मैनमेड फाइबर, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मुकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमू तौर पर 770 करोड़ रुपए के कर्जेजात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निजाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन

0: सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता, बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
2: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत यूएन जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ये कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
0: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
3: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे, तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेट

0: कम्युनिकेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने, यहां आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व करते पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था, सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा, और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शेखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से, जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर

0: जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने एमएसपी को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह के आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है। उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी। मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं भी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेहड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक, वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है। यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है, आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज
1: जी
2: जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं

0: जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की। अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले 1 साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ एक ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार कर रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है। आपको लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारी चीजें देकर आज देखें यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे हैं, ये तो मार्केट में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, प्रैक्टिकल कदम लेकर किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई भी बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है के जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी ज्वाइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है, आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें

0: अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ, क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डी कॉलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहां, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है, हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे, जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है, हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है,
1: जी
2: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं,

0: और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम इस समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भाव, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। नाटकों के कार्यक्रम में श्रोताओं आज प्रस्तुत है नाटक पत्थर का टुकड़ा।

0: सवेरे सवेरे दिखाई पड़ी, कोई मूड बन गया है क्या?
1: अरे मूड मूड कुछ नहीं बना, सिर्फ तुमसे ही मिलने आ गई।
0: मिलने आना ही तो मूड है।
1: अच्छा जान दो, वो कल का तुम्हारा वाइवा कैसा रहा?
0: बहुत अच्छा, कहीं कोई बोरियत नहीं हुई, या यूं कहो गपशप ही हुई।
1: और विषय क्या था?
0: विषय था आदिवासी पढ़ा की भूमिका वर्तमान संदर्भ में।
1: अरे वाह, बहुत ही सुंदर टॉपिक था, काश इस विषय पर कुछ मुझे पूछा होता।
0: तुम्हारा क्या टॉपिक था?
1: टॉपिक तो अच्छा ही था और मैंने भी संतोषप्रद ही उत्तर दिए हैं। मुझसे आदिवासियों के बदलते जीवन स्तर पर कई तार्किक प्रश्न उन्होंने पूछे थे।
0: चलो अब एक परीक्षा का बोझ सर से उतर गया।
1: और हाँ चांदो, मुझे तुमसे एक

0: बेहद खुशी होगी। कम से कम एक दिन और हम लोग साथ बिता पाएंगे।
1: तो कल किस समय यहाँ से चला जाए? सुबह को ठीक नहीं होगा, मैं समझती हूँ।
0: तुम यदि चलो तो तुम्हारी सुविधा के अनुसार ही चला जाएगा। सुबह चले या शाम को, कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: और यदि हम लोग अपनी गाड़ी से जाए तो कितना समय लगेगा?
0: बस यही कोई एक डेढ़ घंटा।
1: तो ऐसा करते हैं, हम दोनों कल अपनी गाड़ी से शाम 4 बजे चलेंगे।
0: ठीक है, तुम भी देख लेना हमारा जीवन कैसा है। मैं तो कहूंगी एक बार फिर सोच लो, मुझे विश्वास है तुम यहाँ थोड़ी देर भी रुक न सकोगी।
1: देखो चांदो, मेरे बारे में तुम्हारी ये धारणा बिल्कुल सही नहीं है।
0: या तुमको गांव के जीवन का सही अंदाज नहीं है?
1: अरे छोड़ो भी इन बातों को, मेरा इरादा पक्का है, मैं जाऊंगी और अवश्य जाऊंगी। तो कल शाम 4 बजे तैयार रहना, ठीक है?
0: ठीक है।

0: चलो सब कुशल पहुंच गए, पंचायत की कृपा से ये रास्ता बना, वरना तुम्हें पैदल चलना पड़ता।
1: दादा सब सामान उतार दो और हाँ गाड़ी रास्ते से हटाकर तुम्हें लगा दो।
0: चलो अंदर, इसी कुटिया में रात काटनी है, ना बिजली है ना बत्ती है।
1: अरे तुम क्यों अनावश्यक परेशान हो रही हो, तुम समझो कि मैं अपने घर में आई हूँ।
0: ये कमरा मेरे भाई का है, पर यही एकमात्र कमरा है जहां हम किसी को बिठा सके।
1: कितना साफ सुथरा कमरा, चारपाई पर बिछी चादर कितनी साफ, इतनी सारी किताबें, अरे वाह बिरसा की तस्वीर और ये बांसुरी। चांदो ये कमरा तो बहुत ही अच्छा है।
0: हाँ भैया को पढ़ने और बांसुरी बजाने का बेहद शौक है, अब फुर्सत की घड़ी में यही इनके साथी हैं।
1: चलो अच्छा है, आज बांसुरी सुनने का मौका भी मिल जाएगा।
0: ये बाल्टी में पानी और लोटा पास रखा हुआ है, तुम हाथ धोकर चारपाई पर थोड़ा विश्राम करो, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छा।

0: अरे चांदो आ गई तुम।
1: माफ कीजिएगा, गलती हो गई।
2: अरे आप, प्रणाम। दरअसल मैं चांदो के साथ पढ़ती हूँ और मेरा नाम रानी है। क्षमा तो मैं चाहूंगी कि आपकी चारपाई पर ही सो गई।
1: जी कोई बात नहीं, मेरा नाम सूरज है। आप बैठिए ना, बैठिए, अब थक गई होंगी। मैं चांदो को भी भेजता हूँ। हाँ
3: दादा, हमारे साथ रानी, मेरी अंतरंग सहेली भी साथ आई है। तुम्हारे कमरे में बैठा आई हूँ, कोई एतराज तो नहीं है?
1: अरे इसमें एतराज की क्या बात है, वो हमारी आदरणीय मेहमान है और मेहमान का समुचित सम्मान करना हमारी संस्कृति है।
3: चलो मैं चाय लेकर आ रही हूँ, वही बातें होंगी। वो अकेली बैठी है।
1: चलो साथ ही चलते हैं।
3: रानी, तुमने हमारे भैया से परिचय कर लिया है ना? बड़ा संयोग किनसे भेंट हो गई, पर ना ये घर में बहुत कम रहा करते हैं।
2: सूरज बाबू, हमारे अचानक पहुंचने से आप लोगों को जो असुविधा हो रही है, इसके लिए क्षमा करेंगे?
1: कैसी बातें करती हैं आप, तकलीफ तो आपको हो रही है, इसका हमें गम है, क्योंकि यहाँ आपके लायक हम कोई साधन नहीं जुटा सकेंगे।
3: दादा अब आप लोग थोड़ी देर बातें करें, जरा मैं माँ को रसोई में हाथ बटाने जा रही हूँ।
1: रानी जी, आप यही सिर्फ घूमने के ख्याल से या रिसर्च करने आई हैं? क्योंकि आप तो मानव विज्ञान की छात्रा है ना?
2: समझ लीजिए दोनों ही मकसद है।
1: अच्छा है, आपने तो आदिवासियों के बारे पढ़ा सुना होगा, अब आंखों से देखिए, फिर वास्तविकता का पता चल जाएगा।
2: सूरज

0: अब तो गांव में भी काफी पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। अब इसी घर में देखिए, आप दोनों भाई बहन ने उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली है।
1: आपको कल ही पता चल जाएगा कि शिक्षित लोगों की संख्या गांव में कितनी है।
0: अच्छा सूरज बाबू, आपका विषय तो इतिहास है ना?
1: देखिए, मेरा कोई विषय नहीं है। हाँ, इस विषय में मेरी रुचि है।
0: तो फिर क्या कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप?
1: नहीं, फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।
0: बिना प्रतियोगिता परीक्षा के तो फिर अच्छी नौकरी आजकल पाना भी संभव नहीं है। अच्छा,
1: दरअसल नौकरी करने का ही विचार नहीं है।
0: तो फिर क्या विचार है?
1: नहीं देखिए, नौकरी तो जी हजूरी करने और पेट पालने के लिए होता है, और जहां तक पेट पालने की बात है तो बिना सलामी मारे ही चल रहे हैं।
0: अच्छा, तो आप घर पर ही खेती में अपने आप को संलग्न रखना चाहते हैं
1: यही समझे आप।
0: ही? ये तो सिर्फ गुजारे की बात हुई, आखिर आपका कोई उद्देश्य तो होगा।
1: क्या बताऊं रानी देवी जी, करना तो बहुत है, देखें क्या होता है।
0: मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ।
1: हमारे साथ हमारे असंख्य भाई बहनों की स्थिति अभी भी दयनीय है, उनके लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए ना।
0: चलिए, आपके इन बातों से मुझे बड़ा संतोष हुआ, और आप सचमुच लग रहा है कि मैं बंदारी गुरु अंचल में आ गई हूँ।
1: रानी देवी, आपसे एक बात मैं कहूं।
0: कहिए, और निसंकोच कहिए।
1: देखिए, आप इन बातों में ना पड़िए। आप घूमने सैर सपाटे के लिए आई हैं, जब तक हैं प्रकृति का आनंद उठाइए जो शहर में प्राप्त नहीं है।
0: सूरज बाबू, मैं बिल्कुल सैर सपाटे के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बंबारी पहाड़ की पुण्य भूमि के दर्शन के लिए आई हूँ।
1: ठीक है, तो कल चांदो के साथ जाकर देखाइए, पहाड़ अपनी असीम व्यथा से तड़प रहा है।
0: आपके जाने में हमारा साथ नहीं दे सकते हैं? बड़ी कृपा होती सूरज बाबू अगर आप साथ चलते।
2: खाना तैयार है, दोनों आ जाइए।
1: चलिए।
0: अच्छा।

0: चालो, सूरज बाबू अच्छा बांसुरी बजाते हैं, है ना?
1: इस इलाके में इनके जोर का कोई नहीं है।
2: क्या लंबी चौड़ी बातें करती हो चांदू तुम भी,
1: ये तो सुनने के बाद रानी को खुद पता चल जाएगा।
0: चाहे आप जैसा भी बजाते हैं, आज हमने भी सुनने का सुअवसर देंगे ना।
2: देखिए रानी देवी, मैं तो कोई कलाकार नहीं हूँ और कोई आमोद प्रमोद के लिए नहीं बजाता हूँ।
0: तो फिर किस लिए बजाते हैं?
2: जब मस्तिष्क तनाव से भर जाता है, मन बोझिल हो जाता है, तो थोड़ी राहत पाने के लिए बांसुरी का सहारा लेता हूँ।
1: किंतु आज तो आपको हमारे मेहमान के लिए बजाना ही होगा।
0: और देखिए, अब टाल मटोल मत कीजिएगा।
2: चलो कोशिश करते हैं।

0: चांदू ने ठीक ही कहा था, बांसुरी बजाने में आपका जोर नहीं है। मैं तो निहाल हो गई सूरज बाबू।
1: यदि हमारे मेहमान को अच्छा लगा तो हम भी निहाल हो गए, क्यों चांदू?
2: दादा आज की गोष्ठी यही समाप्त करें और रानी को थोड़ा आराम करने दें, कल सारा दिन पहाड़ पर्वत पर बिताना है।
1: ठीक।

0: कहिए रानी देवी, आज का पहाड़ घूमना कैसा रहा?
1: घूमना ना कहिए सूरज बाबू, पहाड़ का दर्शन कहिए।
0: तो फिर पहाड़ का दर्शन दुखदायी तो नहीं हुआ?
1: थोड़ा दुखदायी भी, इसलिए कि हमने सोच रखा था पहाड़ पर घना जंगल होगा जो अब भी उस जमाने का दृश्य उपस्थित करेगा।
0: पेड़ तो रानी देवी कटकर आपके शहरों में ही तो चले गए हैं।
1: वनों की दर्दनाक कटाई के जिम्मेदार तो शहरी लोग हैं ही, यह मैं भी मानती हूँ सूरज बाबू।
0: हाँ, स्थानीय लोग तो वृक्ष की पूजा करते हैं, वन ही हमारे जीवन का सहारा है, और वनों के कटने से हम लोग भी परकटे पक्षी हो गए हैं।
1: अरे आप भी यही बैठिए ना, खड़े खड़े क्यों बात कर रहे हैं?
0: नहीं ठीक है ठीक है, आप बैठिए ना, आप थक गई होंगी, बैठिए।
1: आप भी बैठिए ना, मैं एक चीज दिखलाती हूँ। समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत मिला था ना, हमें भी आज के मंथन से एक रत्न मिला है सूरज बाबू।
0: दिखलाए तो, तब तो आप निश्चय ही बड़ी भाग्यशाली हैं। अरे ये क्या, ये तो एक मामूली पत्थर का टुकड़ा है।
1: आप इसे गौर से देखें सूरज बाबू और ध्यान से सुने, इसमें महान शहीद के पश्चात सुनाई पड़ते हैं, असंख्य बच्चे महिलाओं की चीख पुकार तथा उनकी दर्द भरी गुहार, उनके बलिदान को सार्थक करने का।
0: आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ, किंतु आप इसको ड्राइंग रूम में रख देंगी यही ना?
1: नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ये रत्न हमारे साथ रहेगा, हमें प्रेरणा देगा और कुछ कर गुजरने की शक्ति भी देगा।
0: क्या कर गुजरने की शक्ति देगा? धनी लोगों के पास तो इतनी शक्ति है कि समाज को हिमालय पर भी चढ़ा दें और तंबू भी बना दें। आज का समाज धनियों के इशारे पर चल रहा है रानी देवी।
1: इसलिए ही तो हमने सुकुन गुरु में माथा टेका और प्रतिज्ञा की कि मैं इसी क्षेत्र में रहकर लोगों के सुख दुख में हाथ बटाऊंगी।
2: दादा उन्हीं बैठे रहोगे क्या?
0: आइए रानी देवी, चलिए अंदर चले।

0: सूरज बाबू, आपसे एक बात पूछूं?
1: पूछिए ना, इसमें संकोच क्या है?
0: आप मुझे महज एक धनी घर की लड़की, शान शौकत, आराम तलब तथा मतलब ही समझ रहे हैं ना?
1: सच कहूं, अब ये विचार बदल गया है और मैं आपको अपनों में से ही एक मान रहा हूं।
0: तो मेरी एक प्रार्थना आप स्वीकार करेंगे? मेरी लाश रखेंगे सूरज बाबू?
1: सच्चे दिल से प्रयत्न करूंगा, अब बोलिए ना।
0: मुझे आपके साथ समाज सेवा का भागीदार बना लीजिए, आपके जीवन साथी के रूप में।
1: ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्षणिक आवेश में पड़ गई हैं। आपको यहां सिर्फ कुछ दिन तक ही सब अच्छा लगेगा, फिर आप यहां का कष्ट सहन नहीं कर पाएंगी।
0: मैं नहीं मानती, जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो वो जरूर कर सकेगा सूरज बाबू।
1: देखिए रानी देवी, आपके परिवार वाले हमें बंदी बनाकर ले जाएंगे और फिर हमारा समाज, वो भी तो शादी के लिए राजी नहीं होगा ना।
0: उनको राजी करना होगा, समाज में कुछ परिवर्तन तो हमें लाना ही होगा, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा।
1: परिवर्तन तो लाना है, किंतु इस तरह संभव नहीं है। अगर आज हम ये रिश्ता स्वीकार कर लें तो लोगों की मुझ पर से आस्था खत्म हो जाएगी।
0: आप हमें डलावा देना चाहते हैं, यानी मैं आपके योग्य नहीं
1: हूं। नहीं नहीं रानी देवी, ऐसा ना कहें। आपका रूप, रंग, शिक्षा, शारीरिक गठन बहुत ही आकर्षक है और आपके मानवीय गुणों से तो मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ हूं, लेकिन लेकिन फिर भी मैं लाचार हूं।
2: अब घर का सारा काम समाप्त हो गया, रानी क्या आराम किया जाए?
0: ऐसा है, यदि सूरज बाबू को कष्ट ना हो तो बांसुरी पर एक फूंक रखते, इनकी तान ने तो हमें पागल बना दिया है।
1: देखिए अभी इच्छा नहीं हो रही है, आप भी थक गई हैं, आराम कीजिए, बांसुरी फिर कभी।
0: फिर कभी तो सदा अनिश्चित है सूरज बाबू।
2: दादा, अब लगता है रानी को गाना और नाच भी सिखाना होगा।
0: तुम यदि सिखा दोगी चांदो तो मैं नाच गान सीखने को भी तैयार हूँ।

0: सारे सामान अंदर हो रहे हैं, क्या आज नहीं रुकोगी?
1: आज तो जा रही हूँ चांदो, किंतु तुम यदि मेरी मदद करो तो मैं जल्दी आकर तुम्हारे परिवार की सदस्य बन जाऊंगी।
0: क्या तुमने ठंडे दिल से सोचकर फैसला किया है? यहाँ का कष्टमय जीवन झेल सकोगी?
1: जिसका दृढ़ निश्चय हो चांदो, आत्मबल हो, वो हर काम कर सकता है।
0: मैं भरसक भैया को मनाने की कोशिश करूंगी।
1: चाहे जो भी स्थिति हो, यदि वे मुझे स्वीकार ना भी करें तब भी मैं आकर यहीं रहूंगी और मेरा ये विचार कोई नहीं बदल सकता है।
0: और मैं बहुत कम समय में ही तुम्हें ग्रामीण गृहिणी बना दूंगी
1: और उसके बाद इस घर में शहनाई बजेगी और मैं तुमको विदा करूंगी।
0: मैं जल्दी नाश्ता तैयार करके दे रही हूँ। अरे भैया भी आ गए, तब तक तुम दोनों मिलकर सामान ठीक कर लो।
2: हाँ देखिए, कोई सामान छूट ना जाए।
1: सामान तो मुझे ले जाने की इच्छा ही नहीं है, किंतु आपके नहीं चाहने से ये सब हो रहा है।
2: आप प्रवाह में ना बहिए रानी देवी, आप एक सुसंपन्न परिवार की इकलौती बेटी हैं। आपके माता पिता हरगिज आपको ऐसा करने नहीं देंगे।
1: मुझे किसी की परवाह नहीं है सूरज बाबू, मैंने अपना रास्ता चुन लिया। मैं यही रहूंगी और आपके साथ रहूंगी।
2: देखा जाए आगे क्या होता है। कभी कभी आदमी परिस्थिति का गुलाम बन जाता है और उसकी एक नहीं चलती।
1: सूरज बाबू, मेरी एक छोटी निशानी क्या आप स्वीकार करेंगे?
2: इसमें ऐतराज क्या हो सकता है रानी देवी?
1: तो फिर आप अपना हाथ इधर दीजिए।
2: लीजिए। अरे ये आपने क्या किया? आपने तो अंगूठी मुझे पहना दी।
1: हाँ, खोलकर फेंक दीजिए। यदि
2: इतनी कीमती अंगूठी मेरे हाथ में क्या शोभा पाएगी रानी देवी?
1: सूरज बाबू, आप जैसे नेक इंसान का हाथ ही सही स्थान है। मैंने तो आपका वरण कर लिया, आप हमारे घर कब आवेंगे सिर्फ इसी का इंतजार रहेगा।

0: मुझे से अंधकार छा गया है और तुम निश्चित अपने फाइलों में डूबे हो।
1: क्या बात है, इस तरह रोने चिल्लाने की नौबत क्यों आ पड़ी?
0: सर तुम्हारी कारण हुआ है, तुमने अपनी लाडली को जो छूट दे रखी है ना, अब भूगो। मैं तो चली घर छोड़कर, ये लो चाबी का गुच्छा।
1: अरे चाबी फेंक दिया, घर छोड़कर जा रही हो?
0: तुम्हारी लाडली बेटी प्रेम भी कर रही है, सुना?
1: तो इसमें हर्ज क्या है?
0: अरे कोई अच्छा बन रहे, घर घर आना हो, आईएएस या आईपीएस हो तो बात बने, कि तो तुम्हारी बेटी शादी करेगी तो गवैये से।
1: तो ये बात है,
0: तुम कुछ उपाय करो, नहीं तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे।
1: क्या तुम ये सब बातें सुनी सुनाई हमें सुना रही हो क्या?
0: नहीं, मेरी रानी से बातें हुई हैं और उसने कहा है उसका ये इरादा बदल नहीं सकता।
1: तो मामला कुछ गंभीर है।
0: मुझे तो लगता है उस छोकरे की नजर हमारी संपत्ति पर पड़ गई है।
1: तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, हम उसे मालामाल कर देंगे और शादी भी नहीं होगी।
0: चाहे जैसे भी हो, आप ये शादी अवश्य रुकिए, वरना हमें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।
1: अच्छा लड़का करता क्या है, तुम कुछ जानती हो?
0: नाम है सूरज, पढ़ लिख कर बेकार है, इधर उधर घूमता है और हाँ बांसुरी बजाता है।
1: ठीक है, उसको अपने हाल लाकर कारोबार का सारा काम उसे सौंप कर उसे

0: सेक्रेटरी बना लूंगा।
1: क्या? यहाँ यहाँ रहने से तो वे दोनों रोज मिलेंगे और बात और बिगड़ जाएगी।
0: ऐसा नहीं होगा, उसको यहाँ आने तो दो, फिर तो वो हमारे इशारे पर चलेगा।
1: और यदि ऐसा करने में हम असफल हुए
0: तो एक दिन सूरज ऐसा अस्त हो जाएगा कि अगली सुबह दिखाई ही नहीं देगा।
1: तो जल्दी उसको बुलाने का इंतजाम कीजिएगा।

0: ये है सूरज बाबू, हमारे मेहमान।
1: आइए आइए सूरज बाबू, आइए। आप मेहमान नहीं, अपने घर में आइए। आइए आइए, यहाँ बैठिए।
0: बेटा, चांदो को भी तो साथ लाने के लिए लिखा था रानी ने।
2: अभी हाँ, लिखने तो यहाँ से गई है ना, और घर पर भी माँ को सहायता करनी पड़ती है। चांदो के बेहद दबाव के कारण ही मुझे आज ही आना पड़ा।
0: तो तुम्हारा परिवार सिर्फ 4 सदस्य, यानी माँ, पिता और भाई बहन का है?
2: जी हाँ,
1: परिवार के तथा गांव के सब लोग ठीक ठाक है ना?
2: ठीक ठाक है, बस समझिए चल रहा है।
0: बेटा, तुम बांसुरी लाए हो ना? रानी ने बताया है कि तुम उस क्षेत्र के बहुत अच्छे बांसुरी वादक हो।
2: ऐसी कोई बात नहीं है, और आज तो मुझे तुरंत लौटना है ना।
0: आज तो हम तुम्हें किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे।
1: बेटे, काम धाम तो चलता ही रहता है। अच्छा ये बताओ, खेती से तुम्हारा साल भर का खर्च चल जाता है?
2: चलाना ही पड़ता है।
1: अब तो गांव में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, तो स्थिति पहले की अपेक्षा अब जरूर अच्छी होगी।
2: विकास की जानकारी आप लोगों को तो सिर्फ प्रचार माध्यम से मिलती है ना, वास्तविकता का पता तो किसी को नहीं है।
1: अब तो तुम्हारे बीच से मंत्री, MLA, MP तथा बड़े बड़े पदाधिकारी हो गए हैं।
2: वे भी अब आप लोगों के साथ ही शहरों में रहते हैं और शहरों में ही उलझ गए हैं।
1: देखो सूरज, ये अच्छी बात है कि तुम और रानी एक दूसरे को चाहते हो, इसीलिए मेरा एक सुझाव है। अभी कुछ दिनों तक तुम हमारा सारा कारोबार संभालो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और तुम दोनों एक दूसरे को समझ सकोगे।
2: यहाँ रहना मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं है, और फिर आपके व्यवसाय में मेरी रुचि नहीं है।
0: तो तुमको कुछ करना थोड़े ही है, सिर्फ देखभाल, लोगों से मिलना जुलना।
2: माफ कीजिएगा, हम गांव छोड़कर कहीं नहीं रह सकते।
1: देखो बेटे, जीवन को सुखी बनाने, माता पिता को बुढ़ापे में आराम पहुंचाने और चांदो की शादी के लिए तुम्हें पैसा चाहिए।
2: इन बातों की चिंता किसी को नहीं करनी है, मैं सब कर लूंगा।
0: सूरज, तुम तो जानते हो हमारा तो कोई लड़का नहीं है, ये सारा कारोबार रानी और तुम मिलकर संभालो, और माँ पिता तथा बहन को भी यही देते हो।
2: क्या झोपड़ी में माँ पिता को रखना तथा खुद भी रहना गुनाह है? और यदि है तो मैं कितनों को मुंह में लाऊं, पूरा गांव ही तो मेरा परिवार है।
1: तो क्या शादी के बाद भी अपनी गृहस्थी इसी आय में चला पाओगे?
2: जब शादी होगी तो फिर सोचा जाएगा। तो आज इजाजत दीजिए, बहुत जरूरी काम से जाना है।
1: क्या रुकना संभव नहीं है? अभी बातें भी पूरी नहीं हुई।
2: फिर कभी आने का मौका मिला तो पूरी बातें होंगी।
1: उस बार कुछ अधिक समय हाथ में लेकर आना, और हाँ, बांसुरी अवश्य लाना।

0: सब कुछ खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया।
1: क्या हो गया?
0: हम लोग लूट गए।
1: क्या हुआ?
0: रानी घर छोड़कर चली गई।
1: क्या?
0: हाँ।
1: रानी घर छोड़कर चली गई।
0: हाँ।

पत्थर का टुकड़ा। अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। ये नाटक आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में राग रामदासी मल्हार में एक रचना प्रस्तुत है। कलाकार हैं उस्ताद अली अकबर खान।

राग रामदासी मल्हार में एक रचना अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे उस्ताद अली अकबर खां। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।

0: दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इजराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right."
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport.